954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की छठी तिथि, तदनुसार 28 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:58 और 36 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ

0: 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 26 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर से कहते हैं कि आप बोलिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेंगयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, कार्यक्रम वंदना में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हमारा सुप्रभात। श्रोताओं, जब दिन निकलता है तो हम उस ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हे ईश्वर, तूने आज हमें नया सवेरा दिखाया है। जी हाँ श्रोताओं, ये जो संसार है और ये हमारा जीवन है, ये सब उस ईश्वर की देन है। राम नाम से ही हमारा जीवन सुखमय होता है और राम नाम के अलावा

जा भी कहां सकते हैं, क्योंकि ये मानव रचना जो है ये ईश्वर की ही सबसे सुंदर कृति है। तो हमें करोड़ों बार उस ईश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए और उसका नाम जपते रहना चाहिए।

उषा सेठ की आवाज में अभी आप ये भजन सुन रहे थे। श्रोताओं, राम नाम, राम नाम इस भव सागर से तार करने वाला एकमात्र ऐसा साधन है जिससे मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर इस भव सागर से तर जाता है। श्रोताओं, ये नाम ऐसा चमत्कारी नाम है, केवल अपनी जिह्वा से इस नाम का सुमिरन करने से ही सारे समस्त पाप और बुराइयां दूर हो जाती है।

जय रघुनंदन, जय सिया राम। अभी आप ये प्यारा सा भजन सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर में। श्रोताओ, हम इस संसार में रहते हैं और ये संसार उस ईश्वर के हाथों चलता है। उस ईश्वर को कोई राम कहकर पुकारता है, कोई रहीम कहता है, कोई उसे कहता है ईसा मसीह, तो कोई उसे वाहेगुरु कहकर अपनी अरदास लगाता है। तो श्रोताओ, आइए हम भी चलते हैं उस वाहेगुरु के दर पर और अरदास लगाते हैं।

मन्ना डे के स्वर में अभी आप ये शब्द सुन रहे थे और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं अजीज नजा की आवाज में ये नात। श्रोताओं, ये संसार एक भवसागर तो है ही और एक इंसान मिट्टी का पुतला है जो गलतियां करता रहता है और क्षमा मांगता रहता है, लेकिन वो परवरदिगार जो ऊपर बैठा है और हमारा निगहबान है, हम पर हर नज़र रखता है, वो हमेशा हमें माफ़ करता रहता है। ये उसकी कृतज्ञता है कि हम पर उपकार करना उस मालिक की देन है। और श्रोताओं, हमें भी उस मालिक को सबसे बड़ा मानकर अच्छे कर्म करने चाहिए।

श्रोताओ, उस रहमत करने वाले निगहबान का दर ऐसा है जहां पर खाली झोलियां भर जाती हैं, बड़े से बड़ा पाप धुल जाता है और मन निर्मल हो जाता है। अभी आप ये नात सुन रहे थे अजीज नजा की आवाज में। श्रोताओ, आज मंगलवार है और मंगलवार होता है हनुमान जी का प्रिय दिन, हनुमान राम जी के प्रिय और सच्चे सेवक हैं। हमेशा श्री राम का नाम जपते हैं और इस संसार में जितने भी भक्त श्री राम के हैं वो सब हनुमान जी को प्रिय होते हैं, क्योंकि आज मंगलवार है और हनुमान जी का दिन है। तो आइए हम सब हनुमान जी की आरती में शामिल होते हैं और धर्म लाभ उठाते हैं। आइए सुनते हैं अनुराधा पोडवाल और साथियों के स्वर में ये हनुमान जी की आरती।

अनुराधा पोडवाला और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये हनुमान आरती। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्री राम को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए भरत समेत चित्रकूट आए सभी लोग चिंतित और व्याकुल हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपनी सहमति तो दे दी, किंतु उनका ये भी मत है कि इस दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाएं, उसमें श्री राम की रुचि तथा उनकी आज्ञा का ध्यान रखना श्रेयस्कर और मंगलकारी होगा। कुलगुरु के विचारों के प्रति सबके मन में आदर है, किंतु किसी को कोई युक्ति नहीं सूझती। स्वयं भरत, जिन्हें कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उनसे उपाय पूछा जा रहा है। इस प्रसंग में भरत के वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। वे सकुचाते हुए बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख आधा छोड़ दिया करते हैं, अतः उचित ये होगा कि भरत और शत्रुघ्न वन प्रवास करें और श्री राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा ले जाया जाए। मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न आनंद विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, उन्हें तो जीवन भर वन में रहने से अधिक और कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

0: सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: अनुशासन का अर्थ है अपने आप को नियंत्रित करना। यह अपने मस्तिष्क और शरीर का एक ऐसा प्रशिक्षण है जिसमें नियमों का पालन तथा उत्तम कार्य व्यवहार सुनिश्चित किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से उन दूषित प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना है जिनसे स्वयं को अथवा दूसरों को हानि पहुंचने की संभावना हो। ये आत्मनियंत्रण मनुष्य की आत्मा से संबंधित होता है और शुद्ध आत्मा मानव को अनुचित कार्य करने के लिए कभी भी प्रोत्साहित नहीं करती। अतः मानव जीवन में सर्वप्रथम आत्मानुशासन आवश्यक है। अपनी कमजोरियों को दूर करने का इससे उत्तम साधन कोई नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज की सहायता के बिना मानव जीवन लगभग असंभव सा है। सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों के बिना सामाजिक जीवन भी असंभव सा है। घर में, विद्यालय में, खेल में, कामकाज में, आपसदारी में, व्यक्तिगत दिनचर्या आदि सभी में नियम आवश्यक है। यहाँ तक कि प्रकृति भी स्वयं कुछ नियमों का पालन करती है। अतः मनुष्य के लिए ये संभव नहीं कि वो बिना नियम के रह सके। जो व्यक्ति नियमों का जितना अधिक पालन करता है वो व्यक्ति उतना ही अधिक अनुशासित कहा जाता है। अपने दैनिक क्रियाकलापों को एक निश्चित पद्धति में समयबद्ध तरीके से अंजाम देना अनुशासन का प्रमुख अंग है। उदाहरण के लिए रोज सुबह सूर्योदय से पूर्व एक निश्चित समय पर उठ जाना, स्नान आदि नित्यक्रम करना, व्यायाम करना, सैर करना, भोजन करना, दवा लेना, समय पर कार्यस्थल पर पहुंचना, उचित वेशभूषा धारण करना, सभ्य तरीके से बात करना, कामकाज को सर्वोत्तम ढंग से करने का प्रयास करना, सही समय पर सो जाना इत्यादि सभी कुछ अनुशासन के दायरे में आता है। यह अनुशासन सबसे पहले व्यक्ति के अपने परिवार से आरंभ होता है। एक सभ्य, सुशिक्षित, शुद्ध आचरण वाले परिवार के बालक को स्वाभाविक रूप से नेक चाल चलन और अच्छे आचरण का अभ्यास हो जाता है। अनुशासन का पहला पाठ आज्ञा पालन होता है। अपने माता पिता तथा अन्य बड़ों की आज्ञा पालन करके बालक अनुशासन का पहला पाठ अपने घर से ही पढ़ता है। इस प्रकार के वातावरण में पला बड़ा बालक जब विद्यालय में जाता है तो गुरुओं की आज्ञा पालन करके अनुशासित आचरण सीखता है। अनुशासन से दैनिक अभ्यास और कार्य के प्रति एकाग्रता उत्पन्न होती है। ऐसे में बालक के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का संतुलित विकास होता है। विद्यालय जीवन के उपरांत जब वो सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है तो उसे पग पग पर अनुशासित व्यवहार की आवश्यकता होती है। अनुशासनहीन व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज व देश के लिए घातक सिद्ध होता है। जिस प्रकार बेतरकीब झाड़ झंखाड़ उपवन की शोभा खराब कर देते हैं उसी प्रकार अनुशासनहीन व्यक्ति समाज को आभाहीन कर देता है। जिस व्यक्ति के पास अनुशासन नहीं है वो तो पशुतुल्य ही है। उसका जीवन लक्ष्य रहित हो जाता है। फलतः वह ऐसे कार्यों में दिलचस्पी लेने लगता है जो नियम संगत नहीं होते और गैर कानूनी काम करते करते वो अनैतिक आचरण वाला बन जाता है। आजकल बढ़ते अपराध, हिंसा, अत्याचार, व्यभिचार इत्यादि इसी अनुशासनहीनता का परिणाम है। इसका प्रमुख कारण है

0: कि हमारे समाज में बालक को विद्यार्थी जीवन तक अनुशासित रखने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है, जबकि विद्यार्थी तो समाज की एक नव मुखरित कली है। इन कलियों में यदि किसी कारण कमी आती है तो वे मुरझा जाएंगी और बजाय फूल बनने के वे कांटों में बदल जाएंगी। अंततः अनुशासनहीन व्यक्ति का जीवन अकुशलता, बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी की ओर ही जाता है। हम देखते हैं कि जीवन में ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करने वाले हर एक व्यक्ति ने अनुशासन का पालन किया है। अनुशासन संस्कारों को जन्म देता है जिससे व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। इससे व्यक्ति में दृढ़ता तथा आत्मविश्वास का संचार होता है। परस्पर स्नेह तथा सहयोग की भावनाओं का विकास होता है। संस्कार व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाने में मदद करते हैं। इस प्रकार अनुशासन से जीने का सही तरीका आ जाता है, जो कि स्वतः ऊंचे लक्ष्यों की ओर ले जाता है।
1: अनुशासन, अभी आप ये चिंतन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं दीपिका माहेश्वरी का काव्य पाठ।

जब जब देखा तुमको अजी जी भर कर सनम।

0: पदकं त्रीणि रजत पदकानि एकं कांस्य पदकं च एवम् आहत्य पञ्च पदकानि सन्ति इति वार्ताः। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। उधर असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस की हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इस बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मौसम विभाग ने केरलम के उत्तरी जिलों में तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। केरलम के 6 जिलों एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा जिसमें आज का विषय है बरसात में होने वाले रोग और सावधानियां।
3: गर्मी के मौसम के बाद वर्षा का आगमन सुहाना लगता है। मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी गर्मी के प्रकोप से राहत की सांस लेते हैं। पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ खुशहाली का वातावरण छा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यही वर्षा अनेक बीमारियों का कारण भी है, क्योंकि इस मौसम की आर्द्रता और तापमान जीवाणुओं और कीटाणुओं

0: को पनपने में सहायक होते हैं। यही कारण है कि बरसात में खांसी, जुकाम, आंख आना आदि बीमारियां अधिक होती हैं। यदि इस ऋतु में खान पान पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्वास्थ्य बिगड़ते देर नहीं लगती, क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी गंदा होने के कारण कीटाणु अधिक होते हैं, जो तरह तरह के रोगों के उत्पादक होते हैं। गंदे पानी के कारण खाद्य पदार्थों में अम्लता बढ़ जाती है और शरीर का पित्त दूषित हो जाता है। भारी पानी और गंदगी के कारण कफ भी दूषित हो जाता है। इस प्रकार बरसात में वात, पित्त, कफ तीनों के दूषित होने के कारण रस, रक्तादि धातुओं में विकार उत्पन्न होने लगता है। वर्षा ऋतु में हल्के सादे आहार पदार्थों का सेवन करना उत्तम होता है। यदि संभव हो तो वर्षा ऋतु के 4 महीने एक ही बार भोजन करना चाहिए। यदि सुबह का भोजन ना पचा हो तो दोबारा ना खाएं। इसी प्रकार यदि रात का किया भोजन भली भांति ना पचा हो और प्रातःकाल भोजन या नाश्ता किया जाए तो इससे मंदाग्नि और अधिक मंद हो जाती है। वर्षा ऋतु में पहले किया हुआ भोजन भली भांति पचने पर ही दोबारा भोजन करें। वर्षा ऋतु में वायु प्रबल और कुपित होता है। इसके शमन के लिए मधुर रसों वाले पदार्थों का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। जठराग्नि की रक्षा बरसात में हल्के और पुराने अन्न से होती है, इसलिए इस ऋतु में पुराना जौ, गेहूं, साठी चावल का सेवन विशेष लाभप्रद है। साठी चावल की ये विशेषता है कि इसमें स्निग्ध तत्व बहुत कम होते हैं। वर्षा में मंदाग्नि के कारण भी ये आहार आसानी से पच जाता है, लेकिन पॉलिश किए हुए चावलों का सेवन यथासंभव कम से कम करें। हाथ से कुटे चावल उनकी अपेक्षा विशेष उपयोगी होते हैं। इस ऋतु में चावल का चिवड़ा वायुनाशक होने के कारण सेवनीय है। दालों में छिलके वाली दाल, विशेषकर मूंग की दाल का सेवन उत्तम होता है। वर्षा ऋतु में भोजन बनाते समय आहार में थोड़ा सा मधु मिला देना चाहिए, क्योंकि शहद भूख बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त अजीर्ण, थकान, वायु विकारों से भी बचाव होता है। इस ऋतु में भोजन के बाद छाछ का सेवन अत्यंत हितकारी होता है। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि छाछ का सेवन विशेषकर वर्षा ऋतु में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन इस ऋतु में दही खाना हानिकारक है, विशेषकर सावन भादो के महीने में। इस ऋतु में तेल और मसालों का सेवन कम से कम करें। वर्षा ऋतु में फल और सब्जी हमेशा धोकर खाएं, क्योंकि इनमें मिट्टी, कीड़े आदि मिलते हैं। सब्जियों में भिंडी, परवल, बैंगन, कुमड़ा, लौकी, तोरई, चिचिंडा, पालक आदि का सेवन करना चाहिए। इसमें सर्वश्रेष्ठ परवल है। करेले का सेवन भी लाभप्रद है, लेकिन कुवार महीने में ये नहीं खाना चाहिए। ये सब्जियां पचने में हल्की होती हैं, साथ ही वात आदि तीनों दोषों को संतुलित भी रखती हैं। इस ऋतु में पानी को उबालकर और छानकर पिएं। इन दिनों पसीने के कारण त्वचा रोग, घमौरियां, खाज, खुजली तथा अन्य व्याधियां हो जाती हैं। शरीर को स्वच्छ और सूखा रखें। रसायन के रूप में वर्षा ऋतु में बराबर मात्रा में शक्कर और हरड़ चूर्ण मिलाकर सेवन करना चाहिए। इस प्रकार जो लोग वर्षा ऋतु में उचित आहार विहार के नियमों का पालन करते हैं, वे इस ऋतु में विकारों से बचे रहते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें हमारा आज का विषय था बरसात में होने वाले रोग और सावधानियां। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:10 हुए हैं। अब हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत। और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है पशुओं में परजीवियों की समस्या और समाधान। तो भैया हम जानते हैं कि जो हमारे पशु होते हैं उसमें परजीवियों की समस्या हमें दिखाई देती है। जब पशु छोटा होता है, यानी कि जन्म से लेकर कम से कम 1 से 2 महीने का जो हमारा पशु का बच्चा होता है, चाहे वो बछिया हो, बछड़ा हो, कटिया हो या कटरा हो, तो भाई जो दूध पीने वाले पशु की यदि हम छोटे पशु की बात करें तो ऐसे पशुओं के पेट में एस्केरिस या जोन जिसको कहते हैं गांव की भाषा में, तो जून नामक जो एक कीड़ा होता है, एक परजीवी होता है, वो आंतों में पैदा हो जाता है और ऐसे छोटे पशु का जो गोबर है वो अवरुद्ध हो जाता है। पशु जो है अपना सही प्रकार से अपनी क्रिया करना छोड़ देता है और इसकी पहचान तब होती है कि पैर फैलाकर ऐसा पशुओं का बच्चा लेट जाता है, सीधे पैर फैलाता है और कान ढलकाए रहता है और सुस्ती में रहता है। तो ऐसे छोटे पशु को हम समय समय पर यानी कि 15 दिन के अंतराल पर पिपराजिन की या एल्बेंडाजोल की जो दवाई है लिक्विड के रूप में वो हम पिला सकते हैं। तो पिलाने के चौथे या पांचवें दिन ये जो परजीवी पेट में होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और हमारे पशु का बच्चा बड़ी ही राहत महसूस करता है और उसको भूख भी लगती है और चंचल हो जाता है। अब बात आती है बड़े पशु की। तो भैया बड़े पशुओं को हम यदि बाह्य परजीवियों की बात करें तो बाह्य परजीवी जैसे चींचड़ी, माइट, कलीली जो होती हैं, चिचड़ी होती हैं, इनसे अपने पशुओं की रक्षा करने के लिए हम बुटोक्स नामक दवाई को 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर अपने पशु के शरीर पर मल दें तो इससे हमें निजात मिल जाती है जो बाह्य पशु के जो बाह्य परजीवी होते हैं। और किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि हमारा जो पशु है वो अपने शरीर को अपनी जीभ से या मुंह से चाटे ना, वरना नुकसान भी हो सकता है क्योंकि ये दवाई जहरीली होती है। तो जहरीली दवाई का प्रयोग करते समय किसान भाई अपने पशु को मुचका लगा सकते। और भैया रही आंतरिक परजीवी की बात, तो हर 6 महीने बाद हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपने बड़े पशुओं को एल्बेंडाजोल की जो पेट के कीड़े मारने की दवाई है वो हर 6 महीने बाद अवश्य दें। और ध्यान रहे कि भैया जो हमारे मादा पशु होते हैं उनको ये वाली दवाई नहीं देनी चाहिए क्योंकि कभी कभी इन दवाइयों से हमारी जो मादा पशु है चाहे वो गाय हो या भैंस हो उसका गर्भपात होने का खतरा रहता है। तो भैया एक दवाई होती है आइवरमेक्टिन, वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के जो परजीवी होते हैं हमारे पशुओं में उनकी रोकथाम के लिए होती है। और आइवरमेक्टिन नामक दवाई जो हम पशुओं को दे देते हैं तो हमारे आंतरिक जो पेट में कीड़े होते हैं पशुओं के वो भी साफ हो जाते हैं और जो बाह्य परजीवी होते हैं, पिस्सू होते हैं, चिचड़ी, कलीली और माइट्स होते हैं, वे सारे जो परजीवी होते हैं हमारे पशु उससे बच जाते हैं और ये सब परजीवी मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो किसान भाई ध्यान रखें कि अपने पशुओं को आंतरिक और बाह्य परजीवियों से बिल्कुल भी बचाव रखें। और भैया इस प्रकार का क्रम बना कर रखें, अपने पशुशाला की साफ सफाई रखें, पशुशाला में पशुओं का बिछावन जल्दी जल्दी बदलते रहें, ज्यादा गोबर इकट्ठा नहीं होने दें और पुराना जो चारा होता है जो उनकी चूरों में रहता है उसको भी रोज 24 घंटे में एक बार यदि साफ किया जाए तो इनमें परजीवियों के पनपने की समस्या नहीं रहती। तो अपने पशुशाला की नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए। रोगाणु नाशन आप उसके लिए समय समय पर छिड़काव कर सकते हैं, फिनाइल का छिड़काव कर सकते हैं। और भाई इस प्रकार से जो परजीवी कीट हैं उनकी सफाई हो जाएगी, उनका विनाश हो जाएगा। तो अपनी पशुशाला में समय समय पर आप स्प्रे भी कर सकते हैं और स्प्रे इस प्रकार का करें कि हमारे पशुओं को कोई हानि न हो, यानी कि कोई तेज कीटनाशक आपको प्रयोग नहीं करना, फिनाइल या क्विनाइन का आपका प्रयोग करना है। और जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनकी सलाह यदि आप ले लें तो अच्छा रहता है। तो किसान भाइयों आज के कार्यक्रम में हम अपनी जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं और कल खेती की बातें कार्यक्रम में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। किसान भाइयों राम राम।
1: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी। आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा और रात्रि 10 बजे सुनिएगा संसद में हुई प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। स्कूलों में अखबार पढ़ने की अनिवार्यता, इस विषय पर पूर्व प्रसारित विशेष परिचर्चा सुनिएगा आज रात्रि 9:30 पर। इस परिचर्चा में प्रतिभागी होंगे श्री एजाज अहमद, श्री अंशुल सैनी, श्री सुनील कुमार और डॉक्टर निधि भारद्वाज। इस परिचर्चा का संचालन करेंगे श्री अंकित सैनी। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज संध्या 7:32 पर आप सुनेंगे सोनाली जलोटा की आवाज में चंद गजलें।

आज संध्या 6:45 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम विविधा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे प्रकृति संरक्षण से सिद्ध होता मानव जीवन। इस विषय पर शहजाद नोमानी की पूर्व प्रसारित हिंदी वार्ता। महिला सशक्तिकरण के लिए मातृशक्ति वंदन अधिनियम के विषय में जानकारी सुनिएगा कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में आज संध्या 5:00। सत्यवीरा हांडा के गाए रुहेलखंडी लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम धरती गाती है में आज प्रातः 9:25 पर। श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे, इस कार्यक्रम का समय रहेगा आज प्रातः 10:00। कार्यक्रम सैनिकों के लिए प्रसारित किया जाएगा आज दिन में 12:05 पर। आज दिन में 1:45 पर लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में सुनिएगा विविध कलाकारों के गाए हरियाणवी लोकगीत। आज दिन में 2:30 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार में हमारे मेहमान कलाकार होंगे मशहूर फिल्म अभिनेता संजय दत्त। महिला जगत कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं आज दिन में 1:15 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे आधी आबादी से, साथ ही नारी शिक्षा एवं सशक्तिकरण बदलते भारत की नई तस्वीर, इस विषय पर एक परिचर्चा भी हम आपको सुनवाएंगे जिसमें प्रतिभागी होंगे डॉक्टर अंजू बंशल, डॉक्टर शारदा द्विवेदी और श्रीमती अनीता। इस परिचर्चा का संचालन करेंगी भावना अरोड़ा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:18 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी लखनऊ से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में पेश हुआ लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का है प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा में गबन मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल वाराणसी से करेंगे देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सामाजिक समरसता अभियान का शुभारंभ। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने आज भी कहीं कहीं भारी बारिश की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
3: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की वजह से दिन भर के लिए स्थगित किए जाने के कारण इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी।
4: मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना है। एक रिपोर्ट।
5: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा में गबन के मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इससे पहले प्रदेश सरकार ने कल सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में श्रीराम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय SIT का गठन किया है। इस बीच इस मामले में अयोध्या में कल एंटी करप्शन कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने जेल में बंद सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल वाराणसी से देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सामाजिक समरसता अभियान का शुभारंभ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित यह अभियान 20 फरवरी 2027 तक चलाया जाएगा। गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हमारे गोरखपुर प्रतिनिधि ने बताया कि इस अवसर

0: हर्ष योगी गोरक्षपीठ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिष्य और गुरु दोनों भूमिकाओं में दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगी की पाती साझा करते हुए कल मनाए जाने वाले गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने का अवसर है।
1: अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मनीषा एवं सनातन संस्कृति में गुरु को साक्षात परम ब्रह्म माना गया है। श्री योगी ने कहा कि गुरु शिक्षा ही नहीं देते, जीवन को दिशा भी देते हैं। गुरु स्वयं ज्ञान का आलोक हैं, जो शिष्य को अज्ञान रूपी तम से निकालकर सत्य, संस्कार और प्रकाश के पथ पर अग्रसर करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि अपने गुरुजनों का सदैव स्मरण रखें, उनके दिए आदर्शों को जीवन में उतारें। श्री योगी ने कहा कि इससे लोगों का विकास निश्चित होगा तथा विकसित प्रदेश का मार्ग भी तभी प्रशस्त होगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से देश के नागरिकों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह गर्व के साथ अपने घरों पर तिरंगा फहराएं।
2: हम प्रधानमंत्री जी ने लगातार तिरंगा का अभियान चलवाकर पूरे देशवासियों को राष्ट्रभक्ति के प्रति, खासतौर से हर नागरिक का को कर्तव्य बोध कराया है और ये निश्चित रूप से अपने झंडे के प्रति पूर्ण सम्मान होना चाहिए और सभी देशवासियों का ये कर्तव्य है कि वो अपने फ्लैग के प्रति पूरा समर्पण भाव से सम्मान करें और आदर पूर्वक इसको अपने घर में स्थापित करें।
0: प्रधानमंत्री ने बीते रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने की अपील की। अगले माह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के लिए नागरिकों से न्यू इंडिया के निर्माण से जुड़े अपने विचार, सुझाव और विजन साझा करने का आग्रह किया गया है। इनमें से चुने गए सुझावों को प्रधानमंत्री के संबोधन में शामिल किया जाएगा। लोग अपने विचार और सुझाव MyGOV प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। बलरामपुर जिले की सदर सीट से पूर्व विधायक और कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हनुमंत सिंह का कल लखनऊ में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मंत्री हनुमंत सिंह के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि कैबिनेट मंत्री के रूप में हनुमंत सिंह ने अपनी सेवा भावना एवं संवेदनशीलता से भारतीय जनता पार्टी परिवार की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए प्रदेश एवं समाज की असीम सेवा की। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, श्रावस्ती, अमरोहा और आसपास के क्षेत्रों में कल हल्की से लेकर मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने राज्य में आज भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी तथा बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। वहीं नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बस्ती में घाघरा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में पेश हुआ लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का है प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा में गबन मामले की जांच के लिए गठित SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल वाराणसी से करेंगे देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सामाजिक समरसता अभियान का शुभारंभ। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का

0: फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल वाराणसी से करेंगे देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सामाजिक समरसता अभियान का शुभारंभ। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का
1: अब्दुल कलाम। यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
2: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:31 हो चुके हैं। प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

ओस की बूंदें फूलों को भिगा रही हैं, ठंडी हवाएं एक ताजगी सी जगा रही है। आइए और हो जाइए आप भी इनमें शामिल, ये प्यारी सी सुबह आपको बुला रही है, ये प्यारी सी सुबह आपको बुला रही है। जी हाँ श्रोताओ, और इस प्यारी सी सुबह में कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को रविकांत वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ, आज है 28 जुलाई और आज का ये दिन खास है और समर्पित है हमारी प्रकृति, इस सुंदर पर्यावरण को, क्योंकि श्रोताओं प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रोताओं प्रकृति इस पूरे विश्व के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रकृति के बिना मानव जीवन संभव ही नहीं है। श्रोताओं प्रकृति में हमारे वातावरण की हर वो चीज शामिल है जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन श्रोताओं आप देख रहे हैं कि आज हमारी प्रकृति का संतुलन बिगड़ सा गया है। पेड़ों का कटान, वन्य जीवों का लुप्त हो जाना, पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन, ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हमारी प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचता है। इन सभी समस्याओं से प्रदूषण की समस्या भयावह रूप लेकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है और इस भारी हानि का प्रभाव सीधे मानव जीवन पर ही पड़ता है। बाढ़, सूखा, भूकंप, भयानक बीमारियां प्रकृति के असंतुलन के कारण ही उत्पन्न होती है। श्रोताओं, आज का ये दिवस यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, जैव विविधता बचाना और पर्यावरण संतुलन के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति यदि पर्यावरण की रक्षा करेगा, इसकी देखभाल करेगा, तो हमारी प्रकृति सदा हरी भरी और संतुलित रहेगी, जिससे असमय प्रकार प्राकृतिक आपदाएं कम होती जाएंगी और मानव जीवन भी सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। क्योंकि श्रोताओं, हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इनका विवेकपूर्ण उपयोग प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। इसलिए श्रोताओं, हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करना अपना प्रथम कर्तव्य समझना चाहिए और पेड़ पौधों, जल, वन्य जीव जंतुओं की देखभाल, उनका पूर्ण संरक्षण करना चाहिए, ताकि ये आने वाली पीढ़ी को भी मिल सकें। इसके लिए श्रोताओं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जल का दुरुपयोग ना करें, प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े और कागज के बने उत्पादों का ही उपयोग करें, क्योंकि प्लास्टिक हमारी प्रकृति के लिए बहुत हानिकारक होती है। और श्रोताओं, यदि हम अपने पर्यावरण की, अपनी प्रकृति की रक्षा और देखभाल करेंगे, तभी सच्चे अर्थों में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाना सार्थक।

0: संपर्क करें 8700001-4242 पर,
1: 8700001-4242।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, गीत संगीत और जरूरी संदेशों के बाद कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं इतिहास के उन पन्नों की ओर, जहां दर्ज है आज के दिन की खासियत कि क्यों है आज का दिन कुछ खास। श्रोताओं, बात करें 28 जुलाई सन 1914 की, तो इसी तिथि को इस दिन ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा सर्बिया पर युद्ध की घोषणा के साथ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। आज ही की तिथि यानी 28 जुलाई सन 1958 को अमेरिकी कांग्रेस ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट पारित किया था, जिसे नासा की नींव पड़ी थी। 28 जुलाई सन 2005 को ही सौरमंडल के 10वें ग्रह की खोज करने का दावा किया गया था, जिसे बाद में एरिस नाम दिया गया था। शुरुआती अनुमानों में इसे प्लूटो से बड़ा माना गया था, जिस कारण इसे 10वें ग्रह के रूप में प्रस्तुत किया गया था। श्रोताओं, बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिन्होंने आज ही की तिथि को जन्म लेकर बनाया इस दिन को और भी खास। श्रोताओं, आज ही की तिथि यानी 28 जुलाई सन 1909 को जन्म हुआ था कासु ब्रह्मानंद रेड्डी का, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। 28 जुलाई सन 1933 को जन्म हुआ था तरलोचन सिंह का, जो दुनिया भर में सिख समुदाय के हक और बेहतरी के लिए जाने जाते हैं। अनिल जनविजय, जो जाने माने हिंदी के कवि, लेखक और रूसी तथा अंग्रेजी भाषाओं के साहित्य अनुवादक भी थे। इनका जन्म भी 28 जुलाई सन 1957 को बरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 28 जुलाई सन 1983 को जन्म लिया था भारतीय कलाकार, चित्रकार और उद्यमी सुविज्ञ शर्मा ने, जो भारत गौरव सम्मान 2012 से भी सम्मानित है। श्रोताओं, आपको बताते हैं कि किन किन व्यक्तियों ने आज ही की तिथि यानी 28 जुलाई को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। श्रोताओं, भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता जगदीश राज का निधन भी 28 जुलाई सन 2013 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके नाम 144 अलग अलग फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर बनने का रिकॉर्ड है। इनका नाम भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इंद्र कुमार, जो कि भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध सहायक अभिनेताओं में से एक थे, इनका निधन भी 28 जुलाई सन 2017 को मुंबई में हुआ था। और 28 जुलाई सन 2019 को निधन हुआ था मेघालय के भूतपूर्व 10वें मुख्यमंत्री डॉन कूपर रॉय का। ये 19 मार्च 2008 से 18 मार्च 2009 तक मेघालय के मुख्यमंत्री रहे थे। श्रोताओं, जानकारी क्रम में अब आपको बताते हैं कि आज ही के दिन यानी 28 जुलाई को एक महत्वपूर्ण दिवस और भी मनाया जाता है, जिसे विश्व हिपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लीवर यानी यकृत की सूजन, वायरल हेपेटाइटिस के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और इसकी रोकथाम, जांच और इलाज को बढ़ावा देना है। श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमर्ग के जन्मदिन के यानी 28 जुलाई की याद में मनाया जाता है। ये वही वैज्ञानिक डॉक्टर थे जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और इनका पहला टीका यानी वैक्सीन भी विकसित की थी। श्रोताओं, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य साल 2030 तक वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे के रूप में हेपेटाइटिस को पूर्ण रूप से खत्म करना है। आपको बता दें कि हेपेटाइटिस आमतौर पर दूषित या गंदे पानी अथवा गंदा भोजन खाने से हमारे लीवर को संक्रमित कर देता है। ऐसे ही हेपेटाइटिस बी, सी और डी संक्रमित रक्त, असुरक्षित यौन संबंध,

0: या प्रसव के दौरान माँ से बच्चे में और दूषित सुई या इंजेक्शन से फैलता है। ये बीमारी गंभीर यकृत रोग और कैंसर का कारण भी बन सकती है। श्रोताओं, इस दिन हेपेटाइटिस के विषय में लोगों में जागरूकता और कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है ताकि इस बीमारी के और इससे गंभीर संक्रमण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, ताकि इस बीमारी के बेहतर इलाज, इसकी रोकथाम और निदान में तेजी लाई सके। श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 2008 से की गई थी, जो निरंतर अपने शून्य हेपेटाइटिस संक्रमण के लक्ष्य की ओर अग्रसर है।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी में।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन

0: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: श्रोताओं, अब समय आ गया है और घड़ी भी हमें इशारा कर रही है कि अब आपको आज के चंद अखबारात की अहम सुर्खियों से रूबरू करवा दिया जाए। श्रोताओं, बात करें अमर उजाला अखबार की तो अमर उजाला अखबार और अन्य प्रमुख अखबारों ने इस खबर को अहम सुर्खी बनाया है कि संसद में टूटा गतिरोध, परीक्षा में सुधारों से जुड़े विधेयक पर चर्चा आज, वोटिंग संभव, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया बिल, फोरेंसिक ऑडिटर करेगा राम मंदिर ट्रस्ट के लेन देन की जांच, सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला, आज रात 12 बजे से लागू होगा ट्रैफिक डाइवर्जन, 12 अगस्त तक रहेगा पहले चरण का डाइवर्जन, श्रावण मास हेतु वाहनों की आवाजाही के लिए तय किए गए मार्ग, दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली लोगों को राहत। विश्व जूनियर स्क्वैश के प्री क्वार्टर में भारतीय टीम, भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी ने रजत पदक और बिंदिया ने कांस्य पदक किया अपने नाम, भारत के नाम अब तक 6 पदक। बात करते हैं दैनिक जागरण अखबार की। श्रोताओं, दैनिक जागरण अखबार की सुर्खी है कि किरण एस को मिली SIT की कमान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोरेंसिक विशेषज्ञ भी हो शामिल, उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के लिए बनाई 4 सदस्यीय टीम, जौहर विश्वविद्यालय के 38 अवैध भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक, RDA के 15 जुलाई के आदेश के विरुद्ध विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 20 को कमिश्नर कोर्ट में की थी अपील, उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों में जलभराव से निपटने के लिए 1,284 करोड़ की 24 ड्रेनेज परियोजनाओं को दी स्वीकृति, कनाडा में 9.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य की ड्रग्स के साथ 19 गिरफ्तार। बात करते हैं हिंदुस्तान अखबार की। यूपी में 67,867 शिक्षकों की नौकरी पर आंच बिल्कुल नहीं, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया शपथ पत्र, पहले से नियुक्त शिक्षक नहीं होंगे प्रभावित, दिल्ली देहरादून हाईवे पर कल से भारी वाहन बंद, महंगे AI से तंग कंपनियों ने फिर बढ़ी भर्ती की योजना बनाई, नए युवकों को मिलेंगे नए रोजगार के अवसर, भारतीय रेसर आदित्य पटनायक ने सेयांग इंटरनेशनल सर्किट पर गोल्ड वियोस चैंपियनशिप के राउंड 3 में पहली इंटरनेशनल रेस जीती, कई राज्यों में बारिश और भूस्खलन से मचाई तबाही, और देश में धीरे धीरे कम हो रहा हेपेटाइटिस का डर, भारत ने 2030 तक इस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा। श्रोताओं, फिल्म अभिनेत्री आयशा जुल्का को कौन नहीं जानता, इनका जन्म भी आज ही की तिथि यानी 28 जुलाई सन 1972 को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था। आयशा जुल्का ने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, कन्नड़, तेलुगु आदि फिल्मों में भी अपना बेहतरीन अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। तीन दशकों के अधिक से कैरियर में इन्होंने 60 से अधिक हिंदी फिल्मों में अहम भूमिका निभाई। इनके पिता विंग कमांडर इंदर कुमार जुल्का एक सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी है और इनकी माता स्नेह जुल्का एक कॉस्ट्यूमर डिजाइनर है। आयशा जुल्का ने वर्ष 1983 की फिल्म कैसे कैसे लोग में बाल कलाकार के रूप में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया था। आयशा जुल्का को फिल्म कुर्बान, जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी मेहरबान, दलाल, बलमा, वक्त हमारा है, रंग, संग्राम, जय किशन, मासूम जैसी सफल फिल्मों में अभिनय के लिए जाना जाता है और फिल्म होते होते प्यार हो गया, खिलाड़ी, जो जीता वही सिकंदर के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन भी प्राप्त है। कुछ अंतराल के बाद फिल्म सोचा ना था, जो कि 2005 में आई थी, जीनियस 2018 जैसी फिल्मों में काम करने के बाद आयशा जुल्का ने वर्ष 2022 में फिल्म हश हश से वेब डेब्यू किया और तब से ये वर्ष 2023 की फिल्म हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई में दिखाई दी थी। तो आयशा जी को हमारी ओर से भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और श्रोताओं, चलते चलते सुनते हैं फिल्म अभिनेत्री आयशा जुल्का जी पर फिल्माया ये प्यारा सा गीत जो हमने लिया है फिल्म बलमा से।

0: अभी आप सुन रहे थे ज्ञान और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को हैं, अब से कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले

0: यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉर्ट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
2: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
1: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
3: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं।

0: श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्लेबुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
4: हम बहुत खुश है, हमारे देश के लिए मेडल लाके हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाऊंगे।
1: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem, meets Skyroot Aerospace founders after Vikram 1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those arrested under various charges. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in women's shotput event at the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi interacted with Pavan Chandna and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in the discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about the journey and insights into the future plans. He said the energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot aerospace team. In his Mann Ki Baat program also, Prime Minister praised the success of Vikram 1.
7: पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
6: बिहार एंड असम गवर्नमेंट्स हैव डिसाइडेड टू विथड्रॉ केसेस एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट ओवर नीट एग्जामिनेशन। Bihar's Home Department assured that it will immediately initiate the legal process to withdraw all FIRs, criminal complaints and show cause notices against agitators registered before 6 p.m. on the 26th of July. We have more from a correspondent.
8: According to a public notice issued by the Home Department, no punitive, retaliatory or adverse legal action will be taken against any person who participated in the protest held anywhere in the state to 6 p.m. on 26 July. The legal process to withdraw all first information reports, complaints and show cause notices registered during this period will be initiated immediately. The government has also announced that all persons arrested or detained in connection with these cases will be released at the earliest. It has further clarified that no direct or indirect action will be taken against the individuals named in these cases in future. Savita Parikh, Akashvani Samachar, Patna.
6: Assam government has decided to withdraw all criminal cases registered in connection with NEET protests. Authorities have also been instructed to review all arrests and detentions made in connection with these cases and expedite the release of the arrested persons. After reviewing the circumstances surrounding the protest and taking into account the need to strengthen accountability and undertake systemic reforms in the examination and higher education ecosystem, the state government decided not to pursue further legal action against those involved. According to the order, no adverse legal action will be initiated by any police authority in Assam against persons who participated in the protests. The government also directed that the process for withdrawing all the registered cases, irrespective of the stage of legal proceedings, should be initiated promptly in accordance with the law. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on the 21st of this month when Prime Minister Narendra Modi had called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. The Prime Minister has also reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in recent NEET examination paper leaks and safeguarding the interests of the country's youth. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalists, Citizens Party of India, NCPI, have also been invited to attend the alliance meeting. The Minister of Tourism signed a Memorandum of Understanding, MOU, with Air India to promote India as a preferred global tourism destination under the iconic Incredible India brand. The agreement was signed in New Delhi in the presence of Union Tourism and Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat. The collaboration aims to leverage Air India's extensive domestic and international network along with the ministry's destination promotion initiatives to enhance India's global tourism visibility. Under the MOU, the ministry and Air India will undertake joint promotional campaigns, co-branded destination marketing and tourism storytelling across digital and offline platforms. In a social media post, Mr. Shekhawat said the partnership will leverage Air India's extensive global network and India's diverse tourism offerings to strengthen the country's presence in key international markets. He said that the collaboration will include joint destination campaigns, promotion of stopover tourism and exploration of initiatives such as a Visit India Pass. The government has announced the setting up of a task force to support the toy sector and help India achieve a 5% share in the global toy market by 2032. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal made the announcement while addressing a stakeholder meeting on the toy sector organized by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT, in New Delhi. The Ministry of Commerce and Industry said that the task force will focus on integrating the country's toy industry with global value chains, strengthening manufacturing capabilities and improving ease of doing business. On the occasion, Mr. Goyal said the growth of India's toy industry reflects the country's progress towards the goal of Viksit Bharat. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India and China have reaffirmed the importance of maintaining peace and tranquility along border during Foreign Secretary Vikram Misri's meeting with Hua Chunying, Vice Minister of Foreign Affairs of China, in Beijing yesterday. The discussions between them focused on strengthening bilateral ties, expanding exchanges, and advancing cooperation in trade, culture, and people-to-people relations. They reviewed the entire gamut of bilateral relations. They discussed ways to advance the vision of the two leaders that India and China are partners in development. Early in the day, Mr. Misri discussed ways to enhance bilateral exchanges between India and China at the political and people-to-people levels during the meeting with Hong Liang, Deputy Secretary General of the 14th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, CPPCC. Mr. Misri began his official visit to China on Monday with a meeting with Sun Haiyan, Vice Minister of the International Department of the Central Committee of the Communist Party of China. In Uttarakhand, the Meteorological Department has issued a warning of heavy to very heavy rainfall in different parts of the state today. Our correspondent reports that continuous rainfall since last night has led to road blockages at several locations across the state.
3: Intermittent rain has continued across Dehradun and many other parts of Uttarakhand since last night. The Met Department has forecasted heavy to very heavy rainfall accompanied by thunderstorms and lightning at isolated places in the districts of Uttarkashi, Dehradun, Tehri, Rudraprayag, Chamoli, Udham Singh Nagar, Bageshwar, Pithoragarh and Nainital. Heavy rainfall with thunderstorm is also likely at isolated places in the remaining districts of the state. In view of weather warning, all schools and Anganwadi centers in Dehradun, Pauri, Rudraprayag, Pithoragarh, Chamoli and Bageshwar have been declared closed for today. Continuous rainfall has raised the water levels of rivers and mountain streams in the hilly areas. Nearly 50 rural roads remain blocked and restoration work is underway. However, the Chardham Yatra routes are currently open and the administration is closely monitoring the situation. Sakshi Singh, Akashvani News, Dehradun.
6: The deep depression of the Bay of Bengal is poised to cross the North Odisha coast this morning, heralding another spell of intense rainfall across the state. The Indian Meteorological Department has sounded a red alert for Mayurbhanj, Sundargarh and Keonjhar districts and an orange alert for 22 others of Odisha till 8:30 this morning. The Odisha government has stepped up preparedness with schools in Bhadrak remaining closed for today as a precaution. The disaster response teams on standby and citizens have been advised to strictly follow official advisories. In Kerala, rain is likely to intensify across the northern districts with the Weather Department issuing yellow alert for 6 districts. Yellow alert, indicating isolated heavy rainfall, is in effect in Ernakulam, Thrissur, Mallappuram, Kozhikode, Kannur and Kasaragod districts. Wayanad and Kottayam districts, which were under yellow alert last night, are not under rain warning today. According to the India Meteorological Department, isolated heavy rain will continue over northern parts of the state until Friday. Yellow alert has been issued for 6 districts for tomorrow also. India's para-athlete Sharmila Dhankar has won the gold medal in women's shot put event at the Commonwealth Games in Glasgow last night. We have more from a correspondent.

0: खारजा ने एक तिजारती जहाज एमवी ओमोरफी पर हमले के बाद कल भारत में यूक्रेन के सफीर डॉक्टर ओलेक्जेंडर पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हो गया। इस वाकये पर उन्हें अपनी शदीद तशवीश से आगाह करते हुए वजारत ने तिजारती जहाजों पर इस तरह के हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो में 9.81 मीटर की सीजन की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ खवातीन शॉर्ट पुटर F57 मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इस कामयाबी के साथ ही शर्मिला दौलत मुश्तरका खेलों में सोने का तमगा हासिल करने वाली पहली पैरा एथलीट बन गई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दौलत मुश्तरका खेलों के दौरान शर्मिला धनखड़ के सोने का तमगा जीतने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की तरफ से पैरा एथलीट्स में पहली बार सोने का तमगा हासिल करके शर्मिला ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। नौजवानों के उम्र और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शर्मिला धनखड़ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनके जज्बे ने आलमी सतह पर पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। स्कॉटस्टोन स्टेडियम में भारतीय हाई जंपर सर्वेश कुशारे ने भी मर्दों के हाई जंप मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। सदर जमहूरिया ने मर्दों के हाई जंप मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल करने पर सर्वेश कुशारे को भी मुबारकबाद पेश की है। खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सर्वेश को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी शानदार कारकर्दगी ने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। इसके अलावा वेट लिफ्टर वलूरिया अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी का एक एक तमगा जीता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मर्दों के वेट लिफ्टिंग में 79 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा हासिल करने पर वलूरी अजय बाबू के तहत नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। खवातीन के शॉर्टपुट F57 मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने पर शिल्पा के शैला को मुबारकबाद पेश करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि उनका अज्म और मुसलसल कोशिश करते रहने का जज्बा सभी को तरगीब देता है। मर्दों की 16वीं हॉकी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2026 आज सुबह तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में शुरू हो रही है। इस टूर्नामेंट में मुल्क की मर्दों की बेहतरीन हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी जो 12 दिन यानी 8 अगस्त तक मुकाबला करेंगे जिसमें कौमी चैंपियन का फैसला होगा। टूर्नामेंट का इफ्तिताह डिवीजन सी के पूल ए मैच में आसाम और मिजोरम के दरमियान मुकाबले से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया गोनेन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इंकलाब की 6 सुर्खी है, पेपर लीक के खिलाफ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। अखबार प्रताप लिखता है, इंजीनियरिंग मसनूआत की बरामदात में 21% इजाफा, 5 गुना से ज्यादा की छलांग। अखबार ने तजारती जहाज पर हमले में एक भारतीय मल्लाह की मौत के वाकये पर एहतजाज दर्ज कराने के लिए यूक्रेन के सफीर को तलब किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने वजीर आला रेखा गुप्ता के हाथों त्यागराज स्टेडियम में 22वीं दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप का इफ्तिताह किए जाने की खबर को भी नुमाया किया है। अखबार इनकलाब ने ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामेनाई के इस बयान को अहमियत दी है कि अमन मुआहदा लबनान पर इसराइली हमलों के खात्मे से मशरूत। अखबारात की दीगर अहम बैन अल-अक़वामी खबरें इस तरह है, गिरफ्तारी के वारंट के बावजूद नेतन्याहू अमरीका रवाना।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इको निजाम की सताइश की है। वजीर आजम ने विक्रम वन की कामयाबी के तनाजुर में स्काई रूट एरो स्पेस के बानी अहलकारों से मुलाकात की। बिहार और आसाम की सरकारों ने नीट मामले पर एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ केस वापस लेने और मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा करने का ऐलान किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी आज नई दिल्ली में अपनी हफ्तेवार मंगल मिलन मीटिंग का एहतमाम करेगी। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन ने सरहद पर अमनो इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत का इरादा किया है और दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने खवातीन के शॉटपुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। कार्यक्रम गोल्डन हिट्स सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को रविकांत वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में आपका हार्दिक स्वागत है।

रोटी कपड़ा और मकान। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर को। शब्द रचना संतोष आनंद की थी और इस गीत के लिए संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब आपको सुनवाते हैं, साधना सरगम और अभिजीत के स्वर में। फिल्म का नाम है मासूम। गीत और संगीत दिया है आनंद राज आनंद ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत जो आप सुनने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म मेरा गांव मेरा देश से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में फिल्म मेरा गांव मेरा देश का ये प्यारा सा गीत।

कुछ कहता है ये सावन। जी हाँ श्रोताओं, ये सावन बहुत कुछ कह रहा है और झमाझम बारिश से मन को भी शांति और राहत मिल रही है। अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में फिल्म मेरा गांव मेरा देश का ये प्यारा सा गीत। और श्रोताओं, सावन के झमझम बरसने से बागों में भी बहार आ जाती है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गोल्डन हिट्स का ये अगला गीत, आनंद बख्शी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया। शब्द रचना भी आनंद बख्शी की है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जी हाँ श्रोताओं, जब बागों में बहार आ जाती है तो मन भी मचलने लगता है और मन करता है कि किसी अपने के पास जाया जाए या किसी अपने को अपने पास बुलाया जाए। जी हाँ श्रोताओं, आनंद बख्शी और लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म मोम की गुड़िया का ये प्यारा सा गीत। और श्रोताओं, चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म जीने की राह फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत के लिए संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जीने की राह का ये प्यारा सा गीत। और श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 9:15 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी लखनऊ से आप सुनेंगे जिले की हलचल।
1: थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
2: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संभल और मिर्जापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संभल जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अरुण कुमार का।
3: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पिछले दिनों वाराणसी में आयोजित मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ पर हुए समारोह का कलेक्ट्रेट सभागार भैजू में सजीव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह एवं जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल द्वारा जनपद के माध्यमिक शिक्षा विभाग के 5 तथा बेसिक शिक्षा विभाग के 10 शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं रसोइयों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा अनुमन्य किए जाने संबंधी प्रतीकात्मक प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही योजना के अंतर्गत शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को 5,00,000 रुपए तक की कैशलेस सुविधा के संबंध में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षक राष्ट्र के भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं, इसलिए राज्य सरकार उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सम्मान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना से लाखों शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, विशेष शिक्षक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षक, विद्यालयों में कार्यरत रसोइये तथा उनके आश्रित गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश एवं प्रदेश के लिए विकास का स्वर्णिम काल है। प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने शिक्षकों को आह्वान किया कि वे समय से विद्यालय पहुंचें, विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण, तकनीकी संपन्न, संस्कारयुक्त एवं राष्ट्र भावना से उत्प्रोत शिक्षा प्रदान करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संभल में संभव अभियान 6 के अंतर्गत जुलाई से सितंबर 2026 तक संचालित होने वाले 3 माह के विशेष अभियान के तहत जनपद संभल में जून 2026 के वजन एवं लंबाई मापन के आधार पर चिन्हित 172 अति गंभीर कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने हेतु जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल द्वारा सभी चिन्हित बच्चों को विभागीय एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को गोद सौंपा गया। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए अभियान के प्रभारी संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी प्रतिमाह कम से कम 2 बार अपने आवंटित SAM बच्चे के घर भ्रमण करेंगे तथा परिवार को कुपोषण, वृद्धि रुकावट, संतुलित एवं पौष्टिक आहार, खानपान की आदतों में सुधार, बच्चों की विशेष देखभाल तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य सामग्री से पौष्टिक व्यंजन तैयार करने के संबंध में जागरूक करेंगे। बच्चों का नियमित वृद्धि मापन कराया जाए, शासन द्वारा संचालित पोषण संबंधी योजनाओं एवं सुविधाओं का 100% लाभ दिलाया जाए तथा आवश्यकता अनुसार बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने की कार्रवाई प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा जॉब कार्ड एवं राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं ताकि परिवारों की आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ हो सके। अभियान के अंतर्गत जिन सेम बच्चों के परिवार मछली का सेवन करते हैं उन्हें 0.2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले तालाबों से उपलब्ध मछली का लाभ दिलाया जाएगा जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन उपलब्ध हो सके। वहीं जिन परिवारों में मछली का सेवन नहीं किया जाता उन्हें पोषण पोटली उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जुलाई से सितंबर 2026 तक संचालित संभव अभियान 6 के दौरान प्रत्येक स्थिति में सभी 172 अति गंभीर कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। साथ ही उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को अभियान की नियमित समीक्षा एवं प्रभारी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी दिए। आगामी श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के बैठकों का आयोजन किया गया। भैजोई कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन जिला अधिकारी अंकित खंडेलवाल एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई की अध्यक्षता में किया गया जिसमें सभी धर्म के धर्म गुरुओं एवं मंदिर के पुजारियों तथा सम्मानित व्यक्तियों को बुलाकर वार्ता की गई। कांवड़ यात्रा के दौरान जनपद के प्रमुख मंदिरों को लेकर चर्चा की गई। मंदिरों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पेयजल की व्यवस्था, हैंडपंप में पीने के पानी की स्थिति, मंदिरों एवं मंदिरों को आने वाले मार्गों तथा प्रमुख मार्गों पर साफ सफाई की स्थिति को लेकर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि हैंडपंप के पास जलभराव ना हो, सोकपिट की व्यवस्था की जाए तथा मंदिरों के पास प्रकाश की समुचित व्यवस्था रहे। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने कांवड़ यात्रा की तैयारी के बारे में बताते हुए कहा कि
4: पेयजल को लेकर के, सड़क मरम्मत को लेकर के, मोबाइल टॉयलेट जहाँ जहाँ आवश्यकता है वो लगाने को लेकर के, कांवड़ शिविरों को लेकर के इसी प्रकार की मीटिंगें थाना सर्कल तहसील स्तर पे भी संचालित की जा रही है। अधिकांश मीटिंगें हो चुकी है। जो भी समुचित व्यवस्थाएं पिछले साल प्रबंध कराए गए थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए इन सभी प्रबंधों को कराया जा रहा है।
2: संभल जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है SM सभा का।
5: उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति लखनऊ के निर्देश में जनपद मिर्जापुर में युवाओं को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए आगामी 30 जुलाई को 5 किलोमीटर की एक रेड एंड मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जो कि PFE गेट बनौंधा से शुरू होकर RTO ऑफिस होते हुए जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय परिसर के फुटबॉल स्टेडियम में 2 बार चक्कर लगाने के पश्चात समाप्त होगी। विजेताओं को नगद धनराशि के साथ साथ स्टेट तथा नेशनल लेवल रेड एंड मैराथन में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त होगा। सभी 17 वर्ष से 25 वर्ष के युवाओं से दिए गए ऑनलाइन लिंक पर रजिस्ट्रेशन करके 30 जुलाई 2026 को प्रातः 7 बजे से प्रतियोगिता में भाग लिया जा सकता है। मिर्जापुर में किसानों की आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं और अनुदान का लाभ उठाकर मिर्जापुर के किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली इस फसल ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिला उद्यान अधिकारी मेवाराम ने बताया कि जनपद मिर्जापुर में वर्तमान समय में 190 किसान 100 एकड़ से अधिक भूमि पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। वर्ष 2026-27 में स्ट्रॉबेरी की खेती का रकबा बढ़ाकर 150 एकड़ करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि किसानों को इस फसल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर 90,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसानों पर शुरुआती लागत का बोझ कम हो रहा है और अधिक से अधिक किसान बागवानी फसलों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती करने के वाले किसान एक फसल के प्रति एकड़ 12 से 14 लाख की आय अर्जित कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती से न केवल किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं। फसल की तुलाई, पैकिंग और विपणन कार्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल स्थित माँ विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ पर्यटकों और दर्शनार्थियों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। धाम में बढ़ती सुविधाओं के साथ त्रिकोण पथ पर स्थित प्रमुख मंदिरों के विकास की रूपरेखा बन रही है। गत दिवस केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी जिले में पहुंचे। उन्होंने मोदी सरकार के कार्यों को गिनाया और कहा कि आज जहां मिडिल ईस्ट के देश युद्ध के चपेट में है, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। देश के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सरकार योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। और बता रहे हैं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी।
6: देश के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, जिसका नतीजा है किसानों की आमदनी बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना, निवेश को नई ऊंचाई पर ले जाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है।
5: मिर्जापुर में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देशन और अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व के विनोद कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद की बाढ़ से प्रति संवेदनशील तहसील सदर एवं चुनार में क्रमशः SDRF एवं PFE की तैनाती कराई गई है। विगत वर्षों में बाढ़ के आंकड़े के अनुसार जनपद में कुल 404 ग्राम, सदर के 220 ग्राम और चुनार के 184 ग्राम बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। जनपद की तहसील चुनार में तैनात PFE के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गत दिनों तहसील प्रशासन एवं उप जिलाधिकारी चुनार की उपस्थिति में बालूघाट चुनार पर राहत एवं बचाव के दृष्टिगत मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें उन्होंने उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग परीक्षण किया और रेस्क्यू के तकनीकी पर अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल में जनपद के आपदा मित्रों ने भी प्रतिभाग किया और पूर्ण रूप से मॉक एक्सरसाइज को सफल बनाने में हर संभव सहयोग किया। जनपद न्यायालय मिर्जापुर में आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मिर्जापुर के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर मिर्जापुर, बाह्य न्यायालय चुनार, ग्राम न्यायालय मढ़ियान एवं राजस्व विभाग में संबंधित 12 सितंबर को पूर्वाहन 10 बजे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सत्यवीरा हांडा की आवाज़ में रुहेलखंडी लोकगीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये पहला रुहेलखंडी लोकगीत सत्यवीरा हांडा के स्वर में।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं सत्यवीरा हांडा की आवाज में रुहेलखंडी लोकगीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं सत्यवीरा हांडा की आवाज में रुहेलखंडी लोकगीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम की ये अगली पेशकश।

श्रोताओ, कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं सत्यवीरा हांडा की आवाज में रुहेलखंडी लोकगीत। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम का ये अंतिम रुहेलखंडी लोकगीत।

0: सत्यवीरा हांडा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये रोहिलखंडी लोकगीत। अशोताओ, इसी के साथ ही कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। उस पार ही सही एक किनारा तो है, उस पार ही सही एक किनारा तो है, टिमटिमाता ही सही एक सितारा तो है। हो जाती है आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज से तसल्ली हमें, हो जाती है आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज से तसल्ली हमें, दूर ही सही यहाँ कोई हमारा तो है। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हूँ मैं आपके साथ रविकांत वर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं
1: श्रोताओं, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त हुमा परवीन। हम दोनों का आप सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार।
0: क्यों ना हुमा, कार्यक्रम शुरू करते हैं, है ना?
1: बिल्कुल रवि।
0: लेकिन सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को, जो हमसे नए श्रोता जुड़ना चाहते हैं, उन्हें हम अपना व्हाट्सएप नंबर बताना चाहेंगे।
1: श्रोताओं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। जी हाँ श्रोताओं, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपना नाम और पता लिखकर, अपनी फरमाइश लिखकर भेज सकते हैं।
0: हाँ श्रोताओं, और फिर हम आपको सुनाएंगे आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को और देखते हैं कि हमारे ये पहले श्रोता कौन है जो अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं।
1: ये मैसेज हमें मिला है जलालाबाद वेस्ट से। लिखने वाले हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा।
0: और ये मैसेज हमारे पास आया है मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से। लिखने वाले हैं मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का।
1: ये मैसेज हमें मिला है रिंगनी छत्तीसगढ़ से और फरमाइश करता है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा।
0: ये मैसेज हमारे पास आया है पटेल नगर मलोट पंजाब से। लिखने वाले हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू का।
1: ये मैसेज हमें मिला है गांव जेवरा हिसार से और लिखने वाले हैं वीरेंद्र भयान, शमशेर भयान, सुरेंद्र भयान, मनोज भयान
0: और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं। और ये अगला मैसेज हमारे पास कहाँ,
1: ये मैसेज हमें मिला है रविकांत रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से और फरमाइश करता है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और इनका समस्त डागला परिवार।
0: और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है जो हमें मिला है मोहल्ला अफगानान शेरकोट से। लिखने वाले हैं हमारे नियमित श्रोता नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत का। और इसी गीत को सुनना चाहा है,
1: इसी गीत को सुनना चाहा है कोल सिटी बरका काना से और सुनने वाले हैं मोहम्मद अफजल मलिक, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कौर और अफजाल ताज।
0: इसी गीत को सुनने के लिए हमारा ये मैसेज मिला है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से। पप्पू राजा दिलखुश, संगीता रानी दिलखुश, पप्पू महक दिलखुश, सुनीता रानी, आरजू, पप्पू दिलखुश, हर्ष मुखलाल, बुलबुल, संजीव, बंटी और इनका जिंदल का पूरा परिवार। इसी गीत को सुनने के लिए ये एक मैसेज हमारे पास और आया है।
1: जी, ये मैसेज हमें मिला है, इन्होंने अपना एड्रेस नहीं लिखा है, वंडिंग खेड़ा पंजाब से और लिखने वाले हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा।
0: हाँ तो हुमा, आप बताओ ये सभी हमारे श्रोता कौन सा गीत सुनना चाहते हैं जो हमारे कार्यक्रम का पहला गीत होगा।
1: हमारे सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में फिल्म आया सावन झूमके का ये गीत, जिसके लिखने वाले हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: और हुमा कार्यक्रम चल रहा है गीत तुम्हारे। और देखो हुमा, सावन तो झूम के आ ही गया है और लगातार रिमझिम झिमझिम फुहारे भी हमारे मन को शांत और शीतलता दे रही है ना?
2: बिल्कुल रविकांत।
1: और इनके साथ साथ लगातार हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं, है ना?
2: और हमारे श्रोता हमारे प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे, है ना? तो देखते हैं अब अगला मैसेज हमें किसने लिख भेजा है, किसने अपनी फरमाइश की है। ये मैसेज हमें मिला है जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। फरमाइश करता है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून।
1: और ये कुछ पत्र भी मेरे पास है, ये भी हम पढ़ देते हैं ना। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरिंगी से हमारे पास मैसेज आया है और पत्र भी लिखा है इन्होंने। लिखने वाले हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, ज्ञावेंद्र कुमार वर्मा, ग्राम जुझैला, थाना शिवाला कला बिजनौर से ये हमें पत्र लिखा है। लिखने वाले हैं राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशा तायशा, आलिया, शायना, महवेश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर। और एक बार फिर से आते हैं व्हाट्सएप मैसेज की तरफ।
2: ये मैसेज हमें मिला है पटियाली रोड गंज डुडवारा से और लिखने वाले हैं आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: ये मैसेज हमारे पास आया है अहमदपुर खैगांव खंडवा से। लिखने वाले हैं कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वैदिका फूलमाली। इसी के साथ ये अगला मैसेज हमारे पास आया है।
2: ये मैसेज हमें मिला है जलगांव जंक्शन से और लिखने वाले हैं दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर और प्रोफेसर वसुधा ब्रजसेन।
1: और ये मैसेज कहाँ से आया है?
2: ये मैसेज हमें मिला है जेल रोड नजीबाबाद से। लिखने वाले हैं राधिका जाटव और प्रभा रानी जटोलिया और शहर दिल्ली से भी हमें मैसेज मिला है। इसके फरमाइश करता है मनमोहन चुग, मीठी चुग और खट्टी चुग। डुमराओं से मैसेज लिखने वाले हैं वली उल्ला अंसारी, राज अंसारी और फातिमा नाज अंसारी।
1: ये हमें मैसेज किया है मजनू का टीला से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने।
2: गनगोला दातागंज जिला बदायूं से मैसेज भेजने वाले हैं इशरत खान, सायरा बेगम, रहूफ खान, साबरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान और ईशान खान।
1: इसी गीत के लिए फरमाइश करता है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य।
2: ये मैसेज हमें मिला है रामगढ़ कैंट से और लिखने वाले हैं महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब।
1: ये मैसेज हमारे पास आया है फरुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से। लिखने वाले हैं सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सलोनी चौरसिया, लल्ला चौरसिया और पवन गौड़। तो श्रोताओं, आइए इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर के युगल स्वर में फिल्म मिलन का ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: पवन करे शोर।
1: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म मिलन का ये गीत। और बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर और देखते हैं हमारे अगले गीत की फरमाइश हमें किन्होंने भेजी है।
1: ये मैसेज हमें मिला है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, और फरमाइश करता है आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। रविकांत, मैं देख रही हूँ कि आपके हाथ में कुछ पत्र भी हैं।
0: बिल्कुल, पत्र भी मैंने ले रखे हैं क्योंकि हमारा कार्यक्रम ही है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित।
1: तो फिर जल्दी से पढ़ो ना ये पत्र।
0: हाँ बिल्कुल, ये पत्र हमारे पास आया है तेलीपुरा रवाना शिकारपुर बिजनौर से। लिखने वाले हैं मोहम्मद यूनुस अंसारी, मुरसलीन अंसारी, अताउर रहमान अंसारी, निरंजन सिंह सैनी, अब्दुल अजीज उर्फ जिजवा का। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेटी गव्या और भाई सुच्चा पाठक का। और मैसेज की ओर बढ़ते हैं अब।
1: ये मैसेज हमें मिला है शेरकोट बिजनौर से, और लिखने वाले हैं निजामुद्दीन, रऊफ अहमद, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद हन्नान, महक और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: और ये पत्र हमारे पास आया है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से। लिखने वाले हैं कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका, गणेश दादा, कार्तिक भाई, परी, संजना, मालती, स्वाति और ललिता नारायण खर्चे का।
1: और ये मैसेज हमें मिला है खमरिया छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार।
0: ये मैसेज हमारे पास आया है यादव मोहल्ला सनावत।

0: मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीत मालाकार और मुस्कान मालाकार का। शाही मार्केट सिहोरा जिला बिजनौर से ये मैसेज करते हैं आसिफ चौधरी, अराफा चौधरी, आदिब चौधरी और कादिर चौधरी। इन्हीं के साथ इस गीत को सुनना चाहते हैं रेहाना चौधरी जी।
1: और ये मैसेज हमें मिला है जेल रोड रायगढ़ से, लिखने वाले हैं नरेंद्र कुमार जाटव। छत्तीसगढ़ से भी हमें मैसेज मिला है प्रभा जयपुरिया का। गौरैया जालंधर से भी हमें मैसेज लिखा है अशोक जाटव ने। और उमर खेड़ से हमें फरमाइश भेजने वाले हैं भाई रजाक खान, शबाना बेगम और जावेद खान।
0: इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास भेजी है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने।
1: ये मैसेज हमें मिला है दतरेंगी से, लिखने वाले हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा।
0: ये मैसेज हमारे पास आया है और लिखने वाले हैं बस स्टैंड बड़ा चौक छतरपुर बुंदेलखंड से बहादुर चक्रवर्ती, नंद किशोर चक्रवर्ती, भरत, बड़े भैया हरिराम, दशरथ और भारती, गोलू, नीरज, शीला, यशोदा और बाबू, समस्त बुंदेलखंड परिवार। इसी गीत को हमारे पास सुनने के लिए मैसेज भेजा है
1: फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, और लिखने वाले हैं नासिर शेख, नाजियानसीर और साजिद शाहिद। गोविंदपुरा अहमदनगर से हमें मैसेज लिखा है जुनेद मुजावर, साहिबा मुजावर और मिखाइल जैनब मुजावर ने।
0: इसी गीत को सुनना चाहे रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने। और ये मैसेज हमारे पास आया है
1: पाकुड़ झारखंड से, लिखने वाले हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। और बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से हमें मैसेज भेजा है मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है बिहार रेडियो लिसनर क्लब से सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, सोनाली शर्मा और अनामिका शर्मा ने। शिव मंदिर दाल मंडी से राजू बनारसी और राजेश कुमार यादव भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
1: इन सभी साथियों ने हमें फरमाइश लिख भेजी है दीवाना फिल्म के गीत की, तो हम सुनवाते हैं आपको दीवाना फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

0: और श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमारे पास मैसेज आया है चौक बाजार नजीबाबाद से विष्णु अग्रवाल, रानी अग्रवाल। चौक बाजार नजीबाबाद से ही राजेंद्र कुमार, सौरभ कुमार, अनिमेश कुमार और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य।
1: और नगीना से हमें मैसेज लिख भेजा है अनिल विनोचा, शमी विनोचा, अक्षय विनोचा, कनिका अरोड़ा, सहेज अरोड़ा ने।
0: और ये अगला मैसेज आया है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी का।
1: ये मैसेज हमें मिला है छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से। फरमाइश करता है सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश प्रांजलि, सोहम, सदानंद।

0: विराज, अंशुमन और ओवी।
1: ये मैसेज हमारे पास आया है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीतू मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य।
0: ये मैसेज हमें मिला है गांधी बाग अकोला से। लिखने वाले हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और धनजय कटनकर।
1: व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
0: फूलगांव निजामाबाद तेलंगाना से मैसेज लिखने वाले हैं वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फासी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नौमान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फाजिल।
1: इसी गीत को चुनना चाहा है मोहल्ला बारादरी से महमूद खान रामपुर से। लिखने वाले हैं भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा, मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी ने।
0: हमें अगला मैसेज मिला है जसपुर उत्तराखंड से। फरमाइश करता है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर।
1: इसी गीत को सुनना चाहा है और हमें मैसेज किया है नाला सोपारा मुंबई से मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा शेख, माहिरा शेख, नौमान सुलेमान शेख, मोहम्मद कलीम और बेबी मरियम।
0: इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी और हर्षिता ने।
1: चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
0: चंडीगढ़ से हमें मैसेज लिख भेजा है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने।
1: एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। तो श्रोताओ आइए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म हीर रांझा का ये प्यारा सा गीत। गीत लिखा है कैफी आजमी ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है मदन मोहन ने।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म हीर रांझा का ये गीत, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और कार्यक्रम के अगले गीत की हमारे पास फरमाइश आई है।
1: रविकांत, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैसेज पढ़ने से पहले एक बार हम अपने श्रोताओं को नंबर बता दें, ताकि
0: हाँ, बिल्कुल,
1: और भी
0: बिल्कुल,
1: श्रोता
0: बिल्कुल,
1: हमारे
0: बिल्कुल।
1: जुड़ सकें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। जी हाँ श्रोताओं, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अपने नाम और एड्रेस के साथ, और अपना फरमाइश का गीत लिख सकते हैं और हम आपको सुनवाएंगे आपका फरमाइशी गीत।
0: और देखिए हुमा, लगातार हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं।
1: तो ये मैसेज हमें मिला है करणवीर हाउस भुचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से, और लिखने वाले हैं प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू, एकम दमन और अभिजोत।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से। लिखने वाले हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी। इसी गीत के लिए हमारे पास मैसेज आया है।
1: मोताला महाराष्ट्र से लिखने वाले हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और आरती कुमारिका।
0: लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से लिखने वाले हैं हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा, मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी।
1: ये मैसेज हमें मिला है निजामाबाद से पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से, लिखने वाले हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है और लिखने वाले हैं कच्छ गुजरात से। गंगा वणकर, गोविंद, प्रीति, गीता, विशाल, विराट, महेश और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य।
1: ये मैसेज हमें मिला है अजीत कसाना का, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना से, कसाना का, कांट रोड लदावली से।
0: और ये मैसेज हमें भेजा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने।
1: इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है मोहल्ला धर्मदास नजीबाबाद से, गुलाम

0: लिखने वाले हैं लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोत्रा गुरशवद।
1: इस गीत को सुनना चाहा है फाइव स्टार रेडियो श्रोता संघ जिला कासमगढ़ यूपी से, कासगंज यूपी से। लिखने वाले हैं योगेंद्र नायक, श्रीमती गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और दोस्त सुरेश चौरसिया।
0: इसी गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नाजमा बेगम और नाज सरिता गौतम ने।
1: और हुमा एक बात देख रहे हैं आप, हमारे जो श्रोता के नाम पढ़े जा रहे हैं वो हमें थैंक यू का मैसेज भी भेज रहे हैं। तो हमारा उनसे निवेदन है कि कृपया, कार्यक्रम चल रहा है, आपके ही समय की इसमें नुकसान हो सकता है ना, क्योंकि हम थैंक यू का मैसेज खोलेंगे तो हमारा समय भी खराब होगा और नए श्रोता जो मैसेज कर रहे हैं उनका मैसेज भी रह सकता है ना। मारहरा दरवाजा एटा से ये हमें मैसेज किया है नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अशफ अब्बासी और रसीद पारसी। जो श्रोता हमें धन्यवाद का मैसेज कह रहे हैं, हमें भी आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैसेज कहाँ से आया है?
0: ये मैसेज हमें मिला है रविकांत, नगर पंचायत बढ़ापुर बृजनौर उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं मोहम्मद ताहिर और इद्रीस हिलाल जैन, प्लॉट देहरादून से भी हमें मैसेज भेजा है।
1: और ये लिखने वाले हैं कासगंज से मास्टर राधे श्याम शाकरिया और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य, पुराने बस स्टैंड नगर पंचायत बढ़ापुर जिला बिजनौर से एम ताहिर और इनके बहुत सारे परिवार के सदस्य भी।
0: आकोट विनायक बैंडे, श्रीमती मंगला बैंडे, विजय, शुभम बैंडे, पवन जरिए और संजीव डाबेराव ने मैसेज लिखा है
1: आकोट से।
0: आकोट से हाँ।
1: और ये मैसेज हमारे पास आया है रहटगांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय, रुद्र, रुचिका और रामेकर परिवार।
0: ये मैसेज हमें मिला है जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान।
1: तो चलिए हुमा जी सुनवाते हैं इनको इनकी पसंद का ये कौन सा गीत और ये कौन सी फिल्म की।
0: इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश लिख भेजी है आराधना फिल्म के गीत की, तो सुनवाते हैं आप सभी को आराधना फिल्म का ये गीत किशोर कुमार के स्वर में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है एस टी परमन ने।

0: किशोर कुमार के स्वर में अभी आपने सुना आराधना फिल्म का ये गीत। और रविकांत, अब देखते हैं हमें अगली फरमाइश किन श्रोताओं ने लिख भेजी है।
1: हाँ, ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब, बाजार रोड, मुंगीसापुर से। लिखने वाले हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी ने।
0: मेरठ कैंट से मैसेज लिखने वाले हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। ये मैसेज हमें मिला है मोताला बाजार से। लिखने वाले हैं बबलू ठेकेदार, शेख शागिर, शेख वजीर और सोहिल शेख।
1: दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और इनके परिवार के सभी सदस्य भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। मोहल्ला सिटी कासगंज से अरुण कुमार, मुकेश कुमार, अदब भाई, अवनी, आरुषि, नीतू कुमारी और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
0: टैगोर गार्डन नई दिल्ली से फरमाइश लिख भेजी है रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ने। ये मैसेज हमें मिला है सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग का। और इन सभी की पसंद पर हम सुनवाते हैं ये गीत आशा भोसले की स्वर में। फिल्म का नाम है दो बदन। इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने और धुन तैयार की है रवि ने।

0: और श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले को फिल्म दो बदन में। और कार्यक्रम के अंतिम गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है मुंदीचक भागलपुर बिहार से, दिलीप कुमार सोनी और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों की।
1: ये मैसेज हमें लिख भेजा है गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से। लिखने वाले हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम और सद्दाम।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है श्रोता रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू ने।
1: ये मैसेज हमें मिला है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से। फरमाइश करता है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय और हिमांश।
0: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से लिखने वाले हैं संतोष खड़के और विनोद खड़के। इसी गीत के लिए हमारे पास मैसेज आया है सब्जी मंडी बुल्लाना से, शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मज्जू बाबा, आयजा, अनम, मुदस्सिर हुसैन।
1: डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से फरमाइश लिख भेजी है मास्टर ब्रजेश कुमार ने। और
0: इसी गीत के लिए ये फरमाइश हमारे पास आई है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, यशमीत, यशु, निरंजन, सौम्या सिंह और अविरल सिंह की।
1: उत्तम कुमार, भगत कुमार, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद ने फरमाइश लिख भेजी है पाकुड़ झारखंड से।
0: तो चलिए श्रोताओं, इन सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में, और फिल्म का नाम है
1: चोरी चोरी चुपके चुपके।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की स्वर में। फिल्म का नाम है जब तक है जान। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है AR रहमान ने।

अभी आपने सुना श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम था जब तक है जान। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है बागी, स्वर मोनाली ठाकुर का, गीत राकेश कुमार का और संगीत मीत।

0: मोनाली ठाकुर को अभी आपने सुना फिल्म बागी में। अब सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है ऐतराज। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। शब्द रचना समीर की है और संगीत हिमेश रेशमिया का।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में अभी आपने सुना ऐतराज फिल्म का ये गीत। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है बेताब। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी परमन ने।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे बेताब फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आरजी परमन ने। कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जावेद अली, इरशाद अशरफ और शादाब की आवाजों में। फिल्म का नाम है तुम मिले। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, जिसके प्रायोजक हैं NCERT।

0: बदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
2: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
0: और राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
0: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया गीत। गांव की धरती में आपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
2: सुंदर प्यारा गीत टिम टिम तारा जादुई पिटारा हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
0: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं, जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
2: जी।
0: इस क्रम में श्रोताओं, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग, जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
2: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे
0: जी। उन्हें पसंद करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
2: बिल्कुल।
0: एक बार की बात है, किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
2: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
0: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है, तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं
2: जी।
0: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
2: श्रोताओं, इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
0: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं, कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मितव्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है
2: जी। श्रोताओं, एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
0: आज के युग में श्रोताओं, सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है
2: जी।
0: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
2: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मितव्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं
0: जी। श्रोताओं, मितव्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना, और अनावश्यक खर्च से बचना ही मितव्ययिता कहलाती है।
2: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना
0: जी। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
0: और यदि NCERT की पाठ्य पुस्तकों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT Books PDF। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
2: एनसीईआरटी की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

0: आज श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया

0: हाँ तो बच्चों बताओ, सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता, तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता, तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
3: दीदी, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
2: दीदी, ये तो एकदम बुद्धू है।
4: दीदी दीदी, ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है।
0: चुप चुप हो जाओ तुम सब, मैं लता से पूछ रही हूँ, लता ही जवाब देगी। हाँ लता, बताओ बेटा, तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता क्या?
3: दीदी वो।
0: हाँ बोलो।
3: दीदी।
0: बोलो लता, क्या बात है?
5: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती? उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।

0: नमस्ते दीदी, नमस्ते बेटी, नमस्ते दीदी, नमस्ते
1: नमस्ते बहन जी।
2: नमस्ते शिखा।
3: अरे दीदी जी आप आइए आइए।
4: नमस्ते बहन जी।
3: नमस्ते, यहाँ बैठिए
4: जी,
3: यहाँ। आज कैसे गरीबों के घर आपने।
4: अरे बहन जी कैसी बात कहती हैं आप, मैं तो कई दिन से सोच रही थी, आज निकाल पाई समय।
3: ठीक कहती हैं आप, काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
4: हाँ ये तो है।
3: अरे लो, लता के बापू भी आ गए।
4: राम राम दादा।
5: हाँ,
4: कैसे हैं आप।
5: राम राम। अरे आप यहाँ। लता, ओ लता, बहन जी के लिए शरबत तो ला। इतनी बड़ी ढींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
4: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
5: अरे बहन जी, ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
4: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
5: अच्छी, और ये छोरी, मुँह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
4: अरे लता, आओ बेटा, आओ आओ, आओ बैठो, यहाँ यहाँ बैठो मेरे पास।
1: जी दीदी।
5: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूं। हा?
4: जी।
6: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी माँ भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
4: अच्छा बच्चों, ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है।
0: दीदी लता, दीदी लता।
4: लता
7: जी। दीदी।
4: क्या ये लता।
0: जी दीदी।
4: अरे नहीं।
7: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
4: अच्छा।
7: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था।
4: हुँ?
7: हम सब उसे पकड़ने दौड़े पर बछड़ा दौड़ता गया दौड़ता गया।
4: हुँ?
7: सारे थक गए पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
4: अच्छा
7: जी दीदी।
4: लता ये सच है क्या। अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भरी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वाह रे पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने।
2: बापू मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो, मैं पगली नहीं हूँ।
1: देखा इनाम पाकर कैसी जबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है ठीक।
3: नमस्ते दादा।
1: नमस्ते नमस्ते।
3: क्या बातें हो रही हैं बेटी से।
1: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाए।
3: हाँ दादा, और खास कर लता।
1: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
3: और दादा आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
1: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं, इसमें हमने क्या ध्यान देना है। आपने ध्यान देना है वो आप दे ही रही हैं।
3: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं।
1: हाँ बिल्कुल।
3: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और, चाहे मैं क्यों ना हूँ, कर सकता है भला।
1: नहीं जी नहीं।
3: तो दादा, अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
1: पर बहन जी मैं क्या करूं, देखो इसकी किताबें वर्दी।
3: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
1: वो तो बहन जी।
3: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा।
1: वो
3: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
1: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है
3: दादा। कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
1: है?
3: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती।
1: हो
3: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
1: बहन जी मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
3: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा।
1: जी
3: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
1: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े हूँ, बाप हूँ बाप।
3: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।
0: उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी न रखें।
2: पता है मेरे मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
4: अच्छा,
2: उसके सचमुच के बाल हैं।
4: ओहो,
2: और एक कंघी भी है।
4: अरे सच, फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
2: ठीक है।
5: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूँ।
4: ठीक है आ जाना।
5: अच्छा,
4: मैं भी आ जाऊँ लता।
2: हाँ हाँ,
5: मैं भी आ जाऊँ लता।
4: हाँ हाँ, तुम भी आ जाना।
0: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:59 और 10 सेकंड्स हो रहे हैं। श्रोताओं, अब जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की।

अब से थोड़ी ही देर में 12:05 पर सैनिक भाई सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। मिड डे मेलोडी कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 12:30 पर। संसद समीक्षा कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात्रि 8 बजे और संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे आज रात्रि 10 बजे। श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज रात्रि 9:30 पर पूर्व प्रसारित परिचर्चा का विषय रहेगा स्कूलों में अखबार पढ़ने की अनिवार्यता। प्रतिभागी रहेंगे श्री एजाज अहमद, श्री अंशुल सैनी, श्री सुनील कुमार और डॉक्टर निधि भारद्वाज। संचालन करता होंगे श्री अंकित सैनी।

सुगम संगीत कार्यक्रम पेश किया जाएगा आज शाम 7:32 पर। कार्यक्रम में आज सोनाली जलोटा की चंद गजलें सुनवाई जाएगी। आज संध्या 6:45 पर विविधा कार्यक्रम में शहजाद नोमानी की पूर्व प्रसारित वार्ता का विषय रहेगा प्रकृति संरक्षण से सिद्ध होता मानव जीवन। किसान भाई अपना कार्यक्रम कृषि जगत सुनेंगे आज शाम 6:05 पर। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। साथ ही बात की जाएगी विश्व हेपेटाइटिस दिवस और बरसात में फसलों की देखभाल विषय पर।

छाया गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे आज शाम 6:55 पर। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात्रि 8:30 पर। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी पेश किया जाएगा आज शाम 5:15 पर। क्रम होंगे बूझो तो जाने कुछ खास है आज, दिल से दिल तक कहानी के उस पार, बूस्टर्स और साथ ही साथ रहेगा गीत संगीत भी।

मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में आज शाम 5 बजे महिला सशक्तिकरण के लिए बात की जाएगी मातृ शक्ति वंदना वंदन अधिनियम की। एक ही कलाकार कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दिन में 2:30 पर। आज के कलाकार होंगे अभिनेता संजय दत्त,

लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा आप सुनेंगे दोपहर 1:45 पर। कार्यक्रम में आज विविध कलाकारों के गाए हरियाणवी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। बहने अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेगी आज दोपहर 1:15 पर। आज रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत संध्या।

श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सैनिक भाइयों,

सैनिक भाइयों जय हिंद कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म का नाम है सोल्जर। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में अभी आपने सुना सोल्जर फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म परदेश से। आवाज़ें हैं हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति और आदित्य नारायण की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

अभी आपने सुना परदेस फिल्म का ये गीत हरिहरन कविता कृष्णमूर्ति और आदित्य नारायण की आवाज़ों में। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है बॉर्डर। आवाज़ें हैं सोनू निगम, रूप कुमार राठौर और साथियों की। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अभी सैनिक भाई सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है गुलाम। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक को अभी आपने सुना फिल्म गुलाम में। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है वादा, आवाजें हैं बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की, शब्द रचना है समीर की और संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: अभी आपने सुना वादा फिल्म का ये गीत बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में। अब सुनते हैं ये संदेश।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: कार्यक्रम मीडियम मेलोडी आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 956 किलो हर्ट्ज पर। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है सनम रे, स्वर अरिजीत सिंह का, शब्द रचना और संगीत मिथुन का।

अरिजीत सिंह को अभी आपने सुना फिल्म सनम रे में। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है मोहरा। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है विजू शाह का।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में अभी आपने सुना मोहरा फिल्म का ये गीत। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म मोहब्बतें से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है जतिन ललित ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। दिन के 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने सुरक्षा की भी कामना की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान 20 लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की खबर है। खबरों के अनुसार कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। JAAC ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है और आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और अत्यधिक बल का प्रयोग किया। भारत की पहला खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over alleged police action during a student protest over the NEET issue. When the Lok Sabha began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated Indian athletes who won medals at the Commonwealth Games, including para-athlete Sharmila Dhankar on winning the gold. He also applauded Anahat Singh on winning the World Junior Squash Championship. Later, when Mr. Birla tried to take up the question hour, the opposition members started sloganeering over the alleged police action against students during the protest. The speaker said the House should function smoothly, engage in meaningful dialogue and deliberate on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill.
2: I appeal that no matter how much deadlock there may be or how big the issue is, I request the honourable members that there should be no disruption during question hour. A positive message should go out across the entire country that discussions and dialogue take place in the parliament.
1: As the uproar continued, the speaker adjourned the house till 2 p.m. The Rajya Sabha was also adjourned till 2 p.m. over the same issue. When the House assembled at 11 a.m., several union ministers laid the papers on the table of the House. The report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution was also presented. The government has approved the Reserve Bank of India, RBI's proposal to introduce polymer banknotes in the denominations of 10 and 20 rupees. In a written reply in the Lok Sabha, Minister of State for Finance, Pankaj Chaudhary, informed that RBI had sent a proposal to the government for the introduction of 1 billion pieces each of 10 and 20 rupees polymer banknotes for field trials. He said regular issuance of polymer banknotes in these two denominations will be done after successful completion of field trials. The National Democratic Alliance, NDA, Parliamentary Party's weekly strategy meeting known as Mangal Milan was held today at Parliament House. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and other leaders were present at the meeting. MPs from Trinmool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India and CPI, also attended the alliance meeting. In Assam, the flood situation has shown further improvement, with the number of affected districts coming down to 6. According to the latest official report, Shivasagar, Golaghat, Charaideo,

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दोपहर के 1:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है बहनों का कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम सुन रही हमारी सभी बहनों को आपकी बहन आपकी सखी सुनीति आर्य का प्यार भरा नमस्कार। बहनों कैसी हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगी और कार्यक्रमों का आनंद ले रही होंगी। तो बहनों आज कार्यक्रम में बहुत कुछ लेकर आए हैं, लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहनों, हर सफल महिला की कहानी हमें ये सिखाती है कि चुनौतियां रास्ता रोकने नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती हैं। संघर्ष जितना बड़ा होता है, सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। हर बेटी, बहन और हर महिला के भीतर असीम संभावनाएं हैं। जरूरत है केवल अपने सपनों पर विश्वास करने की। बहनों, इसी क्रम में आज चलिए आधी आबादी क्रम में सुनते हैं मीनाक्षी भाटिया की सक्सेस स्टोरी। बहनों, आधी आबादी क्रम में आज हम बात करेंगे डिप्टी कलेक्टर मीनाक्षी भाटिया की। बहनों, ये उत्तराखंड के ऋषिकेश की रहने वाली हैं। इनकी कहानी संघर्ष और दृढ़ संकल्प की एक प्रेरणादायक मिसाल है। जब वो सिर्फ मात्र 1.5 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया। उनकी माँ ने घर चलाने के लिए टिफिन सर्विस शुरू की। मीनाक्षी भी अपनी माँ के साथ इस काम में हाथ बटाती थी और घरों और विभिन्न कार्यालयों में टिफिन पहुँचाने लगी। इसी दौरान उन्हें कई सरकारी कार्यालयों में जाने का अवसर मिला। वहाँ उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का समाधान करते और जनहित में कार्य करते देखा। अधिकारियों की कार्यशैली और समाज के प्रति उनकी भूमिका ने मीनाक्षी को गहराई से प्रभावित किया। तभी उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का लक्ष्य तय कर लिया।
1: सर्वप्रथम मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इस मुकाम तक उन्होंने मुझे पहुँचाया। पिताजी की जो देहांत है हो गया था मेरी कम आयु में ही। उसके बाद से अभी तक जो हमारा संघर्ष और जो हमारा सफर चला है वो मम्मी के द्वारा एक टिफिन सर्विस बिजनेस शुरू किया गया, जिसमें मैंने और मेरी दीदी ने उनका पूरा सहयोग किया और उसको आगे बढ़ाया। धीरे धीरे ऐसे करते हुए हमने देखा कि इससे नहीं हो पाएगा, तो हमने ट्यूशंस पढ़ाने स्टार्ट किए। मैंने और दीदी ने ट्यूशंस पढ़ाए।
0: मैंने लक्ष्य निर्धारित करने के बाद मीनाक्षी ने पूरी लगन और अनुशासन के साथ तैयारी शुरू की। वो लगभग 10 घंटे पढ़ाई करती थी। सोशल मीडिया और अन्य अनावश्यक गतिविधियों से दूरी बनाकर उन्होंने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित किया। मैंने मीनाक्षी शुरू से ही एक मेधावी छात्रा थी। उन्होंने 10वीं और 12वीं की कक्षा में ऋषिकेश सिटी टॉपर बनने का गौरव भी हासिल किया था।
1: मेरी सारी पढ़ाई ऋषिकेश में उत्तराखंड में रहकर ही हुई है। मैंने अपने क्लास 10th यहीं से ऋषिकेश से साईं बाबा इंटरनेशनल स्कूल से करी है 10 CGPA के साथ। उसके बाद मैंने अपनी क्लास 12th भी ऋषिकेश से की है 96.4% के साथ।
0: उनकी बहन भी अधिकारी हैं और उन्होंने उत्तराखंड PCS में सफलता हासिल की। उनकी माँ ने भी उनकी पढ़ाई के लिए उनका साथ हमेशा दिया। काम के साथ साथ पढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया और हार नहीं मानी। 2023 में मीनाक्षी ने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। इसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी में पहला स्थान हासिल किया और उन्हें राज्यपाल के हाथों गोल्ड मेडल से भी

0: सम्मानित किया गया।
1: मैंने अपना बीकॉम ऋषिकेश गवर्नमेंट कॉलेज से किया है और इसके पश्चात मैंने अपना एमकॉम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से किया है जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही।
0: बहनों, अधिकारियों के काम करने के तरीके ने और उनकी बड़ी बहन की सफलता ने मीनाक्षी को प्रभावित किया। इसके बाद उन्होंने भी अफसर बनने का सपना देखा। सिविल सर्विस में जाने का लक्ष्य तय करके उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्हें राज्य की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सीमावर्ती क्षेत्रों की जानकारी पर उन्होंने मजबूत पकड़ बनाई। इसके बाद राइटिंग और टेस्ट सीरीज पर फोकस किया। साल 2024 में मीनाक्षी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली और बहनों 2025 में उन्होंने मुख्य परीक्षा और 2026 में इंटरव्यू में शानदार प्रदर्शन करते हुए रैंक 5 हासिल की। आज वो उसी जगह यानी कि ऋषिकेश में ही डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं जहां कभी वो टिफिन पहुंचाने जाती थी।
1: केवल दो चीज याद रखिए, एक आप वहां से आए हैं और दूसरी आपको कहां जाना है। आप जहां से आए हैं वहां से किसी ने आपको बड़े विश्वास के साथ भेजा है, वहां पे कोई बड़ा इंतजार कर रहा है आपका कि आप वापस लौटेंगे उस वादे को पूरा करते हुए जो आप करके घर से निकले थे। देश आपका इंतजार कर रहा है, देश का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिन्हें हमसे उम्मीद है कि नई पीढ़ी आएगी और ये रंगत निखार देगी। तो मुझे लगता है कि जब आपको ये दोनों चीजें याद रहेंगी कि किस बैकग्राउंड से आप आए हैं और आपको ये याद रहेगा कि किस लैंडस्केप को, किस इमेज को आपने बदलना है, तो मोटिवेशन की आवश्यकता आपको ज्यादा नहीं पड़ेगी। आप यकीन मानिए अपने आप ही पढ़ेंगे। तो इन दोनों पड़ाव को याद रखते हुए आगे बढ़िए। मोटिवेशन तो ठीक है लेकिन डिसिप्लिन, अनुशासन सबसे ज्यादा आवश्यक है। मोटिवेशन नहीं होता रोज, पर डिसिप्लिन ही है जो आपकी मैया को पार लगाएगा और सौभाग्य इन सब दिन होता है। देखें आगे क्या होता है। एक मूवी है दंगल, उसका एक फेवरेट कोटेशन है मेरे, तो उसमें ये बोला जाता है कि आखिरी दांव मुश्किल है पर लगाया जा सकता है। तो चलिए उठिए, लगाइए अपना अपना आखिरी दांव।
0: इस तरह मैंने मेहनत करके दोनों बेटियों ने माँ का संघर्ष देखकर अधिकारी बनने का संकल्प लिया। आज ये कहानी हजारों लोगों को कठिन से कठिन हालातों में आगे बढ़ने की राह दिखाती है। तो इसी तरह की कहानियों से प्रेरित होकर हमें भी आगे बढ़ते रहना है और अपना जीवन सार्थक बनाना है। बहनों, अभी हम सुन रहे थे आधी आबादी क्रम में मीनाक्षी भाटिया की सक्सेस स्टोरी। और बहनों, अब समय है आज की परिचर्चा का। तो सबसे पहले उसका विषय बता देते हैं। तो बहनों, उसका विषय है नारी शिक्षा और सशक्तिकरण, बदलते भारत की नई तस्वीर। प्रतिभागी कलाकार हैं डॉक्टर अंजू बंसल, जो कि वर्धमान कॉलेज बिजनौर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर शारदा द्विवेदी, जो रानी भाग्यवती डिग्री कॉलेज बिजनौर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ही कार्यरत हैं, और श्रीमती अनीता जी, जो कि एक गृहिणी हैं। और इस परिचर्चा का संचालन कर रही हैं हमारी बहन भावना अरोड़ा। बहनों, आज हम लेकर आए हैं एक विशेष परिचर्चा जहां हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसने भारत की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है, शिक्षित और सशक्त नारी। एक समय था जब बेटियों के सपनों पर सीमाओं की रेखाएं खींच दी जाती थीं, लेकिन आज वही बेटियां शिक्षा के बल पर नए आकाश को छू रही हैं। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ही विषय पर जो केवल महिलाओं का ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के विकास का आधार भी है, नारी शिक्षा और सशक्तिकरण, बदलते भारत की नई तस्वीर। और इस परिचर्चा में मैं आपकी बहन भावना अरोड़ा संचालक के रूप में, और आज की जो हमारी खास मेहमान है वो शिक्षित भी हैं और सशक्त भी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय।
2: नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर शारदा द्विवेदी है। मैं RVD महिला महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पिछले 7 वर्षों से कार्यरत हूँ और महिलाओं की शिक्षा के लिए समर्पित हमारा संस्थान है।
3: तो बहुत अच्छा लगा शारदा जी आपसे मिलकर और हमारे बीच उपस्थित हैं।
4: मेरा नाम डॉक्टर अंजू बंसल, मैं बिजनौर में वर्धमान कॉलेज में पिछले 12 वर्षों से पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा भी मैं लगभग 16-17 साल से शिक्षा का कार्य कर रही हूँ और एक बहुत ही सुखद मुझे ये लग रहा है आज ये बताते हुए कि मैं ग्रामीण अंचल से ही आई हूँ और मतलब आज जिस पद पर हूँ तो उसमें मुझे गर्व भी फील होता है और ऐसा लगता है कि सभी बच्चियों को इस तरीके से ये शिक्षा प्राप्त हो कि गांव में रहकर भी बच्चियां पीछे ना रह जाएं।
3: और हमारे साथ एक और खास मेहमान है, आइए जानते हैं उनका भी परिचय।
5: नमस्कार बहनों, मेरा नाम है नीता शर्मा, मैं एक कुशल गृहिणी हूँ। समय समय पर मैं इस तरह की परिचर्चाओं में पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। आज का जो हमारा चर्चा का विषय बहुत ही अच्छा है।
3: अनीता जी, आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। तो चलिए परिचर्चा को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा आज का जो विषय है वो है महिला शिक्षा और सशक्तिकरण। तो सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा डॉक्टर अंजू बंसल जी से कि मैम, क्या नारी शिक्षा वास्तव में महिला सशक्तिकरण की सबसे मजबूत कड़ी है?
4: बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने मुझसे किया भावना जी।
3: जी,
4: और बात करें अगर नारी शिक्षा की, इसमें शब्द है सशक्तिकरण और नींव। तो देखिए, सबसे पहले आपने सभी ने सुना होगा कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो शिक्षा कोई अक्षर ज्ञान बिल्कुल नहीं है। शिक्षा का मतलब है आत्मविश्वास, विवेक, आत्मनिर्भरता और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता। ये सब मिलता है हमें शिक्षा से। तो शिक्षा नींव ही नहीं, आधारशिला है महिलाओं के लिए, नारियों के लिए, बच्चियों के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपका जो प्रश्न है, मेरे मतलब सारे ही उसमें जवाब है कि नारी शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। और शिक्षा की वजह से ही आज नारी पुरुष के साथ भी खड़ी है और हर जगह वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। शिक्षा की लौ जब नारी के अंदर में जलती है, हर बेड़ी टूटती है, हर बाधा पिघलती है। ये सब मैंने होते हुए देखा है, ये बिल्कुल मैंने परिवारों में सब होते हुए देखा है। तो नारी शिक्षा में महिला सशक्तिकरण की केवल नींव ही नहीं है, उसको मजबूत बनाती है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि उसके भविष्य को आलोकित करती है। शिक्षा नारी को पराधीनता से स्वाधीनता दिलाती है, मौन से अभिव्यक्ति की ओर ले जाती है और आश्रय से आत्मनिर्भरता की ओर।
3: बहुत सुंदर आपने इस विषय पर अपने विचार रखे। और वास्तव में शिक्षा ही वह माध्यम है जो एक नारी को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा आधार है। और चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अनीता जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारा भारत दिन प्रतिदिन महिलाओं की शिक्षाओं में निरंतर तरक्की कर रहा है और नए नए मुकाम को हासिल कर रहा है, ऐसे में बदलते भारत में महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से सकारात्मक बदलाव आपको लगता है जो देखने को मिलते हैं?
5: देखो बहन, आज के वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के सकारात्मक सोच से बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। जैसे हर क्षेत्र में लड़कियों का अग्रसर होना।
3: बिल्कुल,
5: पहले कुछ ही चुनिंदा क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ने का अवसर दिया जाता था।
3: जी,
5: घर से ऐसी मानसिकता होती थी कि नहीं नहीं, लड़की का वहाँ फॉर्म नहीं भरा जाएगा या हमारी लड़की वहाँ पर जॉब नहीं कर सकती उस क्षेत्र में।
3: जी,
5: और वहाँ पे ये होता था कि बॉयज ज्यादा होंगे, एक मानसिकता घर से ही होती थी।
3: जी,
5: आजकल पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हो गए हैं और वो कहते हैं कि इसमें लड़कियां फॉर्म हर जगह भरेंगी। सरकार ने इसे भी इस चीज को बहुत बढ़ावा दे रही है और लड़कियों की सोच भी बचपन से ऐसी बना दी जाती है कि आप हर क्षेत्र के लिए तैयार रहें।
3: बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आज की जो हमारी नारी है वो एक दायरे में सिमटी भी नहीं है, बल्कि खुला आकाश उसके सामने है, सिर्फ उसको एक पंख देने की जरूरत है। तो ये तो बात हुई शिक्षा और सशक्तिकरण की। डॉक्टर शारदा द्विवेदी जी, मैम, क्या केवल उच्च शिक्षा ही सशक्तिकरण की गारंटी है या कौशल शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उच्च शिक्षा?
2: हाँ, ये सही है मैडम, आपका प्रश्न बहुत प्रासंगिक है। दरअसल उच्च शिक्षा, मैं सबसे पहले शिक्षा के बारे में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के एक विचार व्यक्त करना चाहूंगी। उनका कहना था कि शिक्षा शेरनी का दूध है और जो पिएगा वो दहाड़ेगा।
3: बिल्कुल,
2: तो शिक्षा मात्र व्यक्ति को जागरूक बनाती है और विवेक देती है। और जहां तक उच्च शिक्षा की बात है, उच्च शिक्षा से व्यक्ति में तार्किकता आती है, विशेषज्ञता आती है, आलोचनात्मक प्रतिभा आती है और सही और गलत का विवेक जागृत होता है
3: जी,
2: किसी भी फील्ड में।
3: जी,
2: लेकिन जैसा कि मैडम ने कहा कि तकनीकी शिक्षा, जाहिर सी बात है क्योंकि समाज में सभी लोगों का रुचि अलग है और अपनी अपनी रुचियां, तो रुचियों के अकॉर्डिंग तकनीकी शिक्षा हमें रोजगार उपलब्ध कराने में तुरंत सहायक होती है।
3: खासतौर से अगर कहें तो आत्मनिर्भर बनाने में,
2: उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा, जैसे नई शिक्षा नीति में भी ओकेशनल कोर्सेज इसीलिए शुरू किए गए हैं कि ताकि वो व्यक्ति जल्दी आत्मनिर्भर बने, जल्दी रोजगार शुरू कर सके अपना।
3: बिल्कुल, मतलब कहें तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
2: जी,
3: उच्च शिक्षा आपको एक तार्किक सोच देती है और कौशल शिक्षा आपको आत्मनिर्भर बनाने में सहायता देती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। मेरा एक और खास प्रश्न है, आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर अंजू बंसल जी, कि क्या वास्तव में सिर्फ शिक्षा से ही हम सशक्तिकरण को प्राप्त कर सकते हैं या उन महिलाओं का क्या जो शिक्षित नहीं है, तो क्या वो सशक्त होने के लिए अग्रसर नहीं है या नहीं हो पाएंगी?
4: नहीं, निश्चित रूप से जो शिक्षित नहीं है, लेकिन शिक्षा एक माध्यम है
3: जी।
4: देखिए शिक्षा से मुझे, मैंने जैसा कहा अभी अपने प्रश्न के पहले उत्तर में भी, कि मतलब शिक्षा मनुष्य में विवेक और आत्मविश्वास जगाती है। आपने मुझसे प्रश्न किया कि क्या शिक्षा के बिना वो सशक्त हो सकती है, तो देखिए मैं इस प्रश्न पे बड़ा मौन हो जाऊंगी, क्योंकि शिक्षा तो बहुत आवश्यक अंग है। और शिक्षा जब महिलाओं के पास नहीं थी तो वो पर्दे में रहती थी, पुरुषों से पिटा करती थी, कितना उनके ऊपर आरोप होते थे। आज भी मेरी जो काम वाली होती है, जब वो मुझे कितनी बार आके ये बताती है कि मेरे पति ने राज शराब से आकर के मुझे पीटा, और वो क्यों पीटा उसने, क्योंकि उसने आकर उसे पैसे नहीं दिए, तो क्यों कर पीट रही है वो, क्योंकि वो एक्चुअली अशिक्षित है। हमें ये बात जरूर समझ जानी चाहिए कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। तो शिक्षा के बिना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि शिक्षा के बिना आपने घर में ही, आप पढ़ने तो नहीं गए लेकिन आपने कुछ और सीख लिया, किसी आपने डांस बहुत अच्छा सीख लिया, नृत्य, कहीं कहीं और ऊंचाइयों पर।
3: मेरा इशारा उसी तरफ था कि अगर आप किसी वजह से शिक्षित नहीं हो पाई हैं और आपके अंदर कोई टैलेंट है ना, तो क्या आप अपने स्वरोजगार के द्वारा या अपने उस टैलेंट के द्वारा,
4: बिल्कुल,
3: तो उस तरह से भी आप सशक्त हो सकती हैं।
4: बिल्कुल, बहुत
3: तो
4: अच्छी
3: ऐसी
4: बात,
3: महिलाएं निराश ना हो कि जो किसी वजह से अपने समय में शिक्षित नहीं हो पाई हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी छुपी हुई प्रतिभा है, तो वो निश्चित तौर पर समाज में अपना नाम कमा सकती हैं। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं एक छोटे से ग्राम उद्योग के जरिए अचार पापड़ या और भी बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिसके द्वारा महिलाएं सशक्त हो सकती हैं।
4: बहुत सुंदर बात आपने भावना जी कही है, और निश्चित रूप से हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। आज घरेलू महिलाएं, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है,
3: बिल्कुल,
4: तो हम घर पर रहकर भी इतना कुछ कर सकते हैं
3: जी।
4: लेकिन उस सब में भी आपको अपने विवेक को जगाना होगा, आत्मविश्वास अगर आप में होगा तो निश्चित रूप से आप कुछ कर पाएंगी।
3: बिल्कुल, तो ये तो बात थी शिक्षा और सशक्तिकरण की, लेकिन आज भी लड़कियों को शिक्षा के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना आज भी हमारी लड़कियां कर रही हैं।
5: बहन आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और आज के वर्तमान समय में ये प्रश्न बहुत ज्वलंत है, क्योंकि आजकल की लड़कियों की शिक्षा, सबसे बड़ी चुनौती ये है शिक्षा में कि जब लड़की 12वीं पास कर लेती है तो उसे बाहर जाकर उच्च शिक्षा के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है
3: जी।
5: पेरेंट्स सोचते हैं कहाँ डालें, कैसे हमारी बच्ची रहेगी, एटमॉस्फेयर कैसा होगा,
3: बिल्कुल,
5: उसको ससंगति कैसी मिलेगी, पहला तो प्रश्न हो जाता है। उसके बाद होता है कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो
3: जी,
5: हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो कि उनको संस्थान से परीक्षा पास करा के आगे के लिए सोचें,
3: बिल्कुल,
5: ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। फिर जैसे उच्च संस्थान है हमारे IIT हो गए, नीट की तैयारी के लिए बच्चियां बाहर जा रही हैं, कोचिंग सेंटर में जाकर स्टडी कर रही हैं। उसके बाद चुनौतियां होती है एग्जाम में पास ना हो पाना, वो पेरेंट्स के लिए बहुत ज्वलंत मुद्दा हो जाता है
3: जी।
5: आर्थिक रूप से धनाढ्य वर्ग के तो बच्चियां आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन मध्य वर्गीय परिवार के बच्चे योग्य होते हुए भी स्वयं को सिद्ध नहीं कर पाते
3: जी।
5: ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है।
3: तो इसके लिए क्या आपको लगता है कि किस तरह के समाधान होने चाहिए?
5: इसमें समाधान ये होने चाहिए कि छोटे छोटे जो शहर हैं उसमें भी अच्छे संस्थानों का उनको मुहैया कराया जाए, बच्चों के लिए सुविधाएं कराई जाएं,
3: बिल्कुल,
5: और उनको प्रोटेक्शन दिया जाए बच्चियों को, कि हमारी बच्ची सही समय से आ सकें, जा सकें और सही शिक्षा प्रदान कर सकें।
3: तो ये बात बहुत सही है कि कई बार बहुत सारे ऐसी चुनौतियां होती हैं जिसके कारण लड़कियां आगे शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती हैं। उसमें एक सबसे बड़ा मुझे आजकल लगता है जो हमारा आजकल का जो एक एनवायरमेंट हो गया, माहौल हो गया, तो जो पेरेंट्स हैं वो भी डरते हैं कि हम अपनी बेटी को कहाँ भेजें जहाँ वो सुरक्षित रहे। इस समय सबसे ज्यादा जो मुद्दा मुझे लगता है लड़कियों की सुरक्षा को लेकर है
4: जी।
3: पेरेंट्स है चाहते तो हैं उनको पढ़ाना, लेकिन उनकी सुरक्षा
5: जी है, सुरक्षा को लेकर बहुत डरे भी होते हैं कि बस यहीं स्टॉप कर दो बेटी की पढ़ाई को
3: जी।
5: और
3: खासतौर से जो बच्चियां ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं उनके लिए तो मुझे लगता है बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता होगा। ये
5: माँ बाप इंतजार करते हैं कि मेरा बच्चा सुबह का निकला हुआ है और इस समय तक घर क्यों नहीं पहुंचा, उसी से घबराए डराए रहते हैं।
3: बिल्कुल,
5: इन सबको देखते हुए ये तो ज्वलंत मुद्दा बन गया है कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम बस अपने पास ही कोई ऐसा मुहैया संस्थान करा दें, संस्थान मुहैया करा दें कि हमारे बच्चे टाइमली हमारे सामने आते जाते रहें।
3: तो बिल्कुल सही बात है। और शारदा जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अभी अनीता जी ने कहा कि घर की बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिसकी वजह से बच्चियां आगे नहीं पढ़ पाती, तो ऐसे में महिलाओं की शिक्षा में माता पिता और विद्यालय या समाज, इनकी क्या भूमिका होती है?
2: मैडम आपने बहुत अच्छी बात की कि जाहिर सी बात है एक व्यक्तित्व का निर्माण में सबसे बड़ा रोल परिवार का होता है
3: जी।
2: और परिवार के बाद दूसरा विद्यालय और फिर बच्चा समाज में आता है,
3: बिल्कुल,
2: जब वो ट्रेंड होके आता है
3: जी।
2: परिवार का सबसे, क्योंकि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है
3: जी।
2: परिवार में ही बच्चा जब बचपन से ही शिशु रूप में चाहे वो लैंगिक समानता देखता है तो उसके अंदर एक अलग आत्मविश्वास आता है कि लड़का लड़की के न खान पान में भेदभाव है, न पढ़ाई लिखाई में भेदभाव है, न अवसरों में भेदभाव है, तो बच्चा वहीं से आत्मविश्वास में आता है। फिर बाहरी परिस्थितियां उसके लिए बाधक नहीं बनती हैं, तो वो जो लैंगिक समानता होती है उसके बीज चाहे वो बालिका हो चाहे वो बालक हो वो अपने घर से शुरू करता है। और फिर जब उसको संस्थान एक सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराता है कि वहां पर उसको तमाम अवसर शिक्षा से संबंधित तमाम अवसर और तमाम ज्ञान विज्ञान दिया जाता है, तो बच्चा वहां आगे बढ़ता है, तरह तरह की चुनौतियों का सामना करता है। एक स्कूल में भी स्वस्थ वातावरण मिलता है जिसमें लैंगिक असमानता नहीं है, जातिगत और धार्मिक भेदभाव नहीं है, तो ये वो आगे के समाज के लिए बच्चा ट्रेंड हो रहा होता है, तैयार हो रहा होता है। तो परिवार की और समाज की तो सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि वही बच्चे का नींव तैयार हो रही है, और अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो निसंदेह व्यक्तित्व रूपी इमारत श्रेष्ठ बनेगी।
3: बिल्कुल। और ऐसे में मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है माता पिता का,
2: निसंदेह
3: जी, क्योंकि माता पिता ही सबसे पहले जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो परिवार में माता पिता के द्वारा ही होता है। माए कई बार मैंने देखा है लड़कियों को कहेंगी तुम घर का काम करो और लड़कों को कहेंगी कि तुम पढ़ाई करो, या तो ये लैंगिक असमानता नहीं होनी चाहिए। शुरुआत से ही लड़कों को भी ये सिखाएं कि आप घर का काम भी करें, और लड़कियों को भी ये सिखाएं कि आप घर का काम और बाहर का काम दोनों काम आप कर सकती हैं।
2: जी जी बिल्कुल मैम
3: जी। अंजू जी, जैसा कि आपने अभी बताया था कि आप स्वयं भी ग्रामीण अंचल से आती हैं, तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा की अभी वर्तमान में क्या स्थिति है या क्या अंतर पाया जाता है?
4: बहुत ही सुखद मुझे लगेगा इसका उत्तर देना। देखिए, मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से थी, और आपको सुनकर शायद आश्चर्य हो कि मैं वो पहली लड़की हूँ अपने परिवेश की जिसने रेगुलर ग्रेजुएशन किया। एक्चुअली क्या होता था कि वहां पर कोई डिग्री कॉलेज था ही नहीं, और हॉस्टल में पढ़ाना एक मुश्किल कार्य था, तो इसीलिए सब लोग 12th तक तो सब लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर लेती थी, और बीए में उनको प्राइवेट पढ़ाया जाता था, और जैसे ही वो घर में रहकर काम सीखना और घर पर रहना शुरू कर देती थी तो बीए करते करते उनकी शादी हो जाया करती थी। लेकिन न जाने कैसे ये भी मेरे टीचर्स का साथ रहा कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स से सबसे कहा कि आप अपनी बच्ची को पढ़ाइए, बाहर भेजिए, रेगुलर कराइए। तो देखिए, मैंने वो सब झेला है, उस दंश को झेलना इतना आसान नहीं था हर लड़की के लिए। लेकिन ये भी बात सच है कि मैं इसका निष्कर्ष में कि अगर जुनून है तो ईश्वर भी, परिवार भी, माँ बाप भी, सब आपका साथ देते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स को गाँव में रह करके इतनी दूर मुझे पढ़ने के लिए भेजना, हॉस्टल में एडमिशन कराना, और ऐसी माहौल में जहां पर हम देखते हैं कि लक्ष्मण की रेखा खुद लक्ष्मण मिटाता है, खुशी खुशी सीता संग रावण मुस्कुराता है, मतलब यही नहीं पता कि कौन अपना है और कौन पराया, मतलब लक्ष्मण ही लक्ष्मण के साथ, मतलब स्थिति आजकल की वर्तमान में ये है। तो माँ बाप, वो भी मेरे ग्रामीण परिवेश के मेरे सीधे साधे माँ बाप, उनके लिए कितना मुश्किल था। मुझे आज भी याद है वो दिन की उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे जब वो मुझे छोड़कर आए। तो देखिए, आसान नहीं है, ग्रामीण लड़कियों को ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ती है, तो निश्चित रूप से। और आज चीजें देखिए गाँवों तक भी पहुंच रही है, तो बहुत निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, चीजें पहुंच रही है धीरे धीरे, और गाँव की लड़कियां ही और ज्यादा आगे आ रही है।
3: बिल्कुल सही बात आपने कही कि दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, कुछ कर गुजरने की चाहत,
4: जुनून, हाँ, बिल्कुल।
3: तो अगर आप में ये चीजें हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोकेगी। चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और मैं जानना चाहती हूँ शारदा जी आपसे, मतलब शिक्षित नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग होती है, क्या आज की जो हमारी शिक्षित नारी है वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक है?
2: बिल्कुल सही आपने प्रश्न पूछा मैडम, बिल्कुल जागरूक है
3: जी।
2: क्योंकि शिक्षा एक तो उनमें आर्थिक आत्मनिर्भरता लाती है, स्वावलंबन लाती है, और दूसरा संवैधानिक जागरूकता। मैं आज आपने ये मंच दिया है, मैं इसके माध्यम से कहना चाहूंगी कि हमें सारा भले सारे धार्मिक ग्रंथों में, हर समाज के धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारी स्त्रियों के लिए महिमामयी शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन वस्तुतः हमें सारा अधिकार हमारे संविधान ने दिया है।
3: बिल्कुल।
2: और उस संविधान ने हमें बराबरी के मंच पर लाके खड़ा कर दिया, जहां जन्म, जाति एवं लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। और ये बात भी तभी हम जानेंगे जब हम शिक्षित होंगे, और शिक्षा ने हमें वो अधिकार मुहैया कराया, वो जानकारी मुहैया कराई, वो एक दृष्टि दी है, वो हमारे चक्षु खोले हैं, और वो चक्षु एक ज्ञान का चक्षु होता है कि नहीं हम कहां हमारा शोषण हो रहा है हम जाने, और उस शोषण के लिए हम बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं ये हम जाने, हमारे क्या क्या अधिकार हैं हम जाने। और जैसे संविधान में हमारे अधिकार उल्लिखित हैं, वैसे ही हमारे कर्तव्य भी उल्लिखित है
3: जी।
2: दूसरी चीज अभी ये जो आया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें सरकार आरक्षण, जाहिर सी बात है आरक्षण हमें दे रही है महिलाओं को, क्यों दे रही है? क्योंकि सदियों से हम स्त्रियां दबी कुचली रही हैं, निसंदेह सदियों से हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो जब हम संविधान में जान रहे अरे हमारे पास तो ये भी अधिकार है, अरे हम अपने आत्मरक्षा के लिए चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे जातिगत हिंसा हो, चाहे यौनिक हिंसा हो, किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए हम, और बल्कि सबसे अच्छी चीज है कि कानून ने हमें ये सारी चीजें गोपनीय रखी हैं कि अगर आप जागरूक हैं, आप अवेयर हैं, तो आप अपना बचाव कर सकते हैं, आप मदद ले सकते हैं। संविधान के ने हमें प्रदान
5: किया, हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल रखे हैं
3: जी,
5: बस हम जागरूक होने चाहिए।
3: बिल्कुल, कि वास्तव में नारी का महिमा गान तो शुरू से सभी धर्मों ने किया है, लेकिन वास्तव में उनको अधिकार

0: सिर्फ संविधान ने दिए हैं, समान वेतन का अधिकार, लैंगिक समानता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, तो ये सब अधिकार हमें हमारे संविधान ने ही दिए हैं। तो वास्तव में शिक्षा के द्वारा ही हम अपने इन अधिकारों को जान पाए हैं। तो आज की परिचर्चा में बहुत सारी हम लोगों ने बातें की कि किस तरह से महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, क्या क्या उनके सामने चुनौतियां हैं, कौन कौन से अधिकार उन्हें प्राप्त हैं और किस तरह से देश के विकास में वो सहयोग कर रही हैं। तो अंत में मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि आप हमारी जो समाज की नारी है, जो शिक्षित महिला है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले जानते हैं अंजू जी से।
1: देखिए, मैं अगर आप मुझसे एक मैसेज संदेश चाहती हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि महिला होना जितना आप समझते हैं महिला होना उतना भी आसान नहीं है
0: जी।
1: थोड़ा सा उसके उस दूसरे पहलू को भी देख लीजिए कि जो उसका सशक्त वाला भी नहीं है। बहुत सारी महिलाएं जो गिनी चुनी महिलाएं जो सशक्त हैं, लेकिन आप उनको भी देखिए जो अभी सशक्तिकरण के लिए लड़ रही हैं। रोज क्या करती हूँ मैं सांसों की तुरपाई, रोज न जाने कितनी बार उधड़ती भी हूँ मैं, न जाने कितनी बार टूटती है एक महिला, कितनी बार वो टूटती है। और जो मैं उनकी भी बात कर रही हूँ जो बहुत सशक्त भी हैं, उन्हें भी न जाने अपने परिवार से और समाज से सबसे लड़ करके आगे आना पड़ता है। तो देखिए, मैं अगर संदेश की बात करूं तो मैं गंभीरता से एक महिलाओं से सिर्फ इतना सा गुजारिश करना चाहूंगी कि आज जरूरत है एक लड़के को शिक्षित करने की। जब स्कूल से आकर के एक लड़की उसको खाना लगाती है, दोनों बच्चे, तो आप देखिए बहन ही भाई का लगाती है, भाई को भी ये सिखाइए। मतलब मैं एक बीइंग ए मदर होने के नाते ये बताना चाहती कि हम लड़के और लड़की में जो अभी लैंगिक समलैंगिकता की भी बात हो रही थी, तो हम अपने लड़कों की परवरिश पर ध्यान दें। और लड़कों की परवरिश अगर अच्छी होगी तो बाहर महिलाएं सुरक्षित भी मिलेंगी आपको, शिक्षित भी मिलेंगी, और ना माँ बाप डरेंगे कहीं भेजने में उन्हें, और आराम से एक सुखद समाज जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं उसका निर्माण हो जाएगा।
0: तो इस विषय पर अनिता जी आपसे जानना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं और क्या संदेश आप देना चाहेंगी।
2: हमारे शास्त्रों में भी नारी को नारायणी का ही रूप दिया गया है
0: जी।
2: और वो नारायणी शिक्षित होगी, बच्चों को शिक्षित करेगी, समाज को शिक्षित करेगी। तो आज की 21वीं शताब्दी में महिलाओं का तेज सर्वांगीण विकास सशक्तिकरण होगा केवल शिक्षा के माध्यम से।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर संदेश अनिता जी के माध्यम से।

0: तलवार लेके नहीं लड़ना है, अपने परिवार में समायोजन करते हुए, लेकिन हाँ अपनी सही बात हमेशा रखनी है,
1: रखनी है
0: अगर प्रेम से रखनी है, कहीं थोड़ी और दृढ़ता से रखनी है, लेकिन रखनी जरूर है,
1: जी।
0: आपका बच्चा देख रहा है घर। जी
1: बहुत सुंदर और प्रेरणादायक संदेश हमें आपसे प्राप्त हुआ। बदलते भारत की जो सबसे सुंदर तस्वीर है वह है जहाँ बेटी केवल अपने सपने नहीं देखती बल्कि उन्हें पूरा भी करती और इन सपनों को पंख देती है शिक्षा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी इस परिचर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद,
2: आपका भी
0: बहुत
2: बहुत धन्यवाद।
3: अभी हम सुन रहे थे ये महत्वपूर्ण परिचर्चा जिसका विषय था नारी शिक्षा एवं सशक्तिकरण, बदलते भारत की नई तस्वीर। इस परिचर्चा का संचालन कर रही थी बहन भावना अरोड़ा। प्रतिभागी कलाकार थे डॉक्टर अंजू बंसल, डॉक्टर शारदा द्विवेदी और श्रीमती अनीता जी। और बहनों अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, फिर मिलेंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए मुझे यानी कि सुनीति आर्या को कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:45 हुए हैं। पेश है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे विविध कलाकारों के गाए हरियाणवी लोकगीत। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला लोकगीत।

कार्यक्रम लोकधारा में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के गाए हरियाणवी लोकगीत। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

लोकधारा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के गाए हरियाणवी लोकगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
1: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
2: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक हुए हैं और चीटिंग स्कैम हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
0: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
3: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्स करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
4: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
5: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहाँ से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के

0: माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
1: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
2: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष इसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 1 रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रुपए का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंद्र और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण सियासी इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यासुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशू रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशू शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉर्टपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 2:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार। एक ही कलाकार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त हुमा परवीन का नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त। जी हां श्रोताओं, कार्यक्रम में आज बात होगी अभिनेता संजय दत्त की। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई सन 1959 को मुंबई में हुआ। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त एक मशहूर अभिनेता और माता नरगिस दत्त अपने दौर की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही। संजय दत्त का पूरा नाम संजय बलराज दत्त है। वो एक प्रसिद्ध अभिनेता होने के साथ साथ फिल्म निर्माता भी है। वैसे तो वे मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं, लेकिन कुछ तेलुगु, तमिल, मराठी, कन्नड़ और पंजाबी फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया है। श्रोताओं, बातें संजय दत्त की अभी और भी करेंगे। पहले सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है सड़क। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, बात करें संजय दत्त की पढ़ाई की, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई से की। संजय दत्त को संजू और बाबा के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही लोग उन्हें मुन्ना भाई के नाम से भी बखूबी पुकारते हैं। बात करें संजय दत्त के करियर की, तो उनका करियर बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा। बाल कलाकार के रूप में संजय पहली बार फिल्म रेशमा और शेरा में दिखाई दिए, लेकिन मुख्य अभिनेता के तौर पर उन्होंने सन 1981 में आई रॉकी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जो उस समय की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। श्रोताओ, सुनते हैं रॉकी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार के स्वर में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अभी आपने सुना संजय दत्त पर फिल्म आया रॉकी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार के स्वर में। अब सुनते हैं ये संदेश।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।

0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashvaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम एक ही कलाकार आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता संजय दत्त की। श्रोताओं, रॉकी फिल्म की सफलता के बाद संजय दत्त ने हसीना मान जाएगी, नाम, साजन, मेरा हक, जीवा, ताकतवर, सड़क, कानून, अपना अपना जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में दी और हर अच्छे अभिनेता के साथ उन्होंने काम किया। इसके बाद साल 1993 में रिलीज खलनायक फिल्म संजय दत्त के करियर की सबसे ज्यादा यादगार फिल्म है। इस फिल्म में संजय ने बल्लू का जो किरदार निभाया वो लोगों के जहन में आज भी ताज़ा हैं। इसके लिए संजय के अभिनय की जमकर सराहना की गई और खलनायक फिल्म में शानदार अभिनय के लिए संजय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म का शीर्षक गीत लोगों की जुबान पर छा गया। तो श्रोताओ, सुनते हैं खलनायक फिल्म का ये शीर्षक गीत। स्वर कविता कृष्णमूर्ति का है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत आरडी परमन का।

अभी आपने सुना खलनायक फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, संजय दत्त अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज करते रहे। साल 1999 में उन्होंने वास्तव द रियलिटी फिल्म में काम किया, जो कि एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। सन 2000 में मिशन कश्मीर, सन 2003 में मुन्ना भाई एमबीबीएस और साल 2006 में लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म में आई। मुन्ना भाई एमबीबीएस और लगे रहो मुन्ना भाई, इन दोनों कॉमेडी ड्रामा फिल्मों ने संजय को लोकप्रिय बना दिया और तभी से लोग उन्हें मुन्ना भाई कहकर पुकारने लगे। साल 2012 में उन्होंने अग्निपथ और साल 2022 में केजीएफ चैप्टर 2 जैसी सफल फिल्में की। श्रोताओं, उन्होंने लगभग हर शैली की फिल्मों में काम किया, चाहे वो एक्शन फिल्म हो या कॉमेडी या फिर कोई रोमांटिक फिल्म हो, वे हर किरदार को निभाने में सफल रहे। श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस का ये गीत श्रेया घोषाल और विनोद राठौर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है राहत इंदौरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार थे अभिनेता संजय दत्त। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी इस सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, हमारी संध्याकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत सुनने वाले सभी श्रोताओं को फैजुर रहमान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं विभिन्न जानकारियां, और आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है महिला सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम। श्रोताओं, जैसे कि हम जानते हैं, हमारे देश में, भारत में महिलाओं का जो लिंग अनुपात है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, जबकि इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा में, शिक्षा और पंचायती राज में भागीदारी बढ़ी है, लेकिन कार्यबल में भागीदारी और संसद में प्रतिनिधित्व अभी कम है। श्रोताओं, अगर हम बात करें शिक्षा पर, तो महिलाओं की जो शिक्षा की दर है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, और अभी भी अगर एक थोड़ा सा अंतर हमें मिल जाता है, और कार्यबल की अगर स्थिति हम देखें तो कुल श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी इस वक्त लगभग 37% है, जिसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम श्रोताओं पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करें तो लगभग 46% ये बढ़कर हो गया है, लेकिन अभी संसद में और विधानसभा में जो महिलाओं की स्थिति है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, और उसमें जो है भागीदारी बहुत कम है, यानी कि 14% है। ऐसे में सवाल उठता है श्रोताओं के, क्या ये भागीदारी को आगे बढ़ाया जाएगा और आने वाले वक्त में क्या होगा? इसी संदर्भ में आज हम आपके लिए जो जानकारी लेकर आए हैं उसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसे आम भाषा में विमेंस रिजर्वेशन बिल भी कहते हैं, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक कानून है श्रोताओं, जिसके तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित की जा रही हैं। श्रोताओं, इसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है और देश के फैसलों में महिलाओं की आवाज़ को मजबूत करना है। श्रोताओं, 19 सितंबर वर्ष 2023 को लोकसभा में और 21 सितंबर वर्ष 2023 को ही राज्यसभा में यह बिल पास हुआ। श्रोताओं, 28 सितंबर सन 2023 को राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने इस अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए। श्रोताओं, ये कानून पास तो हो गया है, लेकिन ये वर्ष 2029 में आम चुनाव में लागू होगा। श्रोताओं, पहले जनगणना 2027 और इसके बाद सीटों का परिसीमन होना ज़रूरी है, इसके बाद ही आरक्षित सीटें जो हैं वो तय हो सकेंगी। और श्रोताओं, अगर हम बात करें इस अधिनियम की विशेषताओं की, तो ये लगभग 33% आरक्षण है। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व है, एससी एसटी के लिए भी, और जो है ये सीटें आरक्षित होंगी और महिलाओं के लिए ये अलग से आरक्षित होंगी। श्रोताओं, ये आरक्षण 15 साल तक रहेगा, बाद में संसद चाहे तो इसे बढ़ा सकती है। श्रोताओं, आरक्षित सीटें हर चुनाव के बाद बदलती रहेंगी, यानी एक सीट पर हर बार महिला के लिए आरक्षण नहीं होगा। राज्यसभा और विधानसभा में, परिषद में भी यही कानून रहेगा, और विधान परिषद और स्थानीय निकाय, पंचायत, नगर निगम पर फिलहाल इसे लागू नहीं किया गया है।
पंचायत में अगर हम इसे देखें तो ये 50% आरक्षण पहले से ही मौजूद है। श्रोताओं, ये आरक्षण क्यों जरूरी था, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। श्रोताओं, अभी 17वीं लोकसभा में सिर्फ 15% महिलाएं सांसद हैं।

दुनिया में इस मामले में भारत 143वें नंबर पर है। इस कानून से 543 में से लगभग 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। सीधे शब्दों में 2029 के बाद जब भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होगा, हर 3 सीट में से 1 सीट पर महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगी। तो बहुत ही अच्छा कानून है ताकि महिलाओं को भागीदारी आगे मिल सके और महिलाएं भी जो है पुरुषों के साथ समान सम्मान के साथ आगे आ सके। तो कार्यक्रम में ये रही जानकारी और इसके बाद अब सुन लेते हैं ये गीत।

इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए अब आपको हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज के आकर्षण होंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, दिल से दिल तक और कहानी के उस पार, और साथ ही होगा बूस्टर और फिल्मी संगीत। किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा हमारे केंद्र से आज शाम 6:05 पर। कार्यक्रम में किसान साथी सुनेंगे बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला का भाग 3। ये फोन इन कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। किसान भाई इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नेत्रपाल शर्मा। साथ ही कार्यक्रम में चर्चा होगी, विषय होगा विश्व हेपेटाइटिस दिवस और बरसात में फसलों की देखभाल। हमारे केंद्र से आज शाम 6:45 पर कार्यक्रम होगा विविधा, जिसमें भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। भेंट वार्ता का विषय होगा ITR कब, क्यों और कैसे। इस विषय में CA आशुतोष सिंह से बातचीत करेंगे चरणजीत सिंह। सुगम संगीत होगा हमारे केंद्र से आज शाम 7:32 पर। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता आनंद ले सकेंगे गजलों का। कलाकार होंगी सोनाली जलोटा। हमारे दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे आज शाम 8:00 संसद समीक्षा और 8:15 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। आज रात्रि 9:30 पर हमारे केंद्र से परिचर्चा प्रसारित होगी। विषय होगा स्कूलों में अखबार पढ़ने की अनिवार्यता। इस परिचर्चा में प्रतिभाग करेंगे एजाज अहमद, अंशुल सैनी, सुनील कुमार और डॉक्टर निधि भारद्वाज। इस परिचर्चा का संचालन करेंगे अंकित सैनी। हमारे लखनऊ केंद्र से आज रात्रि 10:00 राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण रिले किया जाएगा और हमारे केंद्र से आज रात्रि 10:30 पर श्रोताओं के व्हाट्सएप और पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा हमारे केंद्र से कल 6:05 पर। श्री रामचरित मानस गान का समय रहेगा कल 6:30 पर। 6:40 पर होगा कार्यक्रम चिंतन। काव्यधारा में गुरु पूर्णिमा पर विशेष काव्य पाठ होगा कल 6:45 पर। स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी का विषय होगा काला मोतियाबिंद। ये कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होगा कल 7:05 पर। खेती की बातें, ये कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होगा कल 7:10 पर। कार्यक्रम में होगी जानकारी, विषय होगा नकली उर्वरकों की पहचान कैसे करें।
इन्फोटेनमेंट आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का प्रसारण समय रहेगा हमारे केंद्र से कल सुबह 7:31 पर। कार्यक्रम में होंगी तिथि विशेष जानकारी विश्व बाघ दिवस पर और जानकारी होगी विषय नासा पर, और फिल्मी सफर में जान पाएंगे जानी वॉकर से जुड़ी कुछ खास बातें। ये थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: कहते हैं कुछ शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और ऐसा ही एक शब्द है याद।
1: याद जो बिना दस्तक दिए दिल में उतर आती है, कभी किसी की हंसी बनकर तो कभी आंखों की नमी बनकर।
0: यादें कभी पुरानी नहीं होती, बस उन्हें महसूस करने के बहाने बदल जाते हैं। हेलो हेलो हेलो दोस्तों, विश्वा वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, जिसमें आज आपके साथ हूँ मैं आपके अपने दोस्त और होस्ट अक्षी त्यागी।
1: गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, अक्षी के साथ मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो पार्टनर राशि त्यागी।
0: और आज है हमारे सेगमेंट दिल से दिल के अंतर्गत शब्द याद।
1: दोस्तों कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है कि लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हर दिन हमारे दिल में चलती हैं।
0: यादें हमें ये एहसास दिलाती हैं दोस्तों कि हमारे जिंदगी में कुछ लोग कितने खास हैं।
1: इसलिए आज अगर किसी की याद आपके मन में ये सब सुनकर आ रही हो तो अहंकार नहीं प्यार चुनिए और हमें संदेश भेज दीजिए हमारे फोन नंबर 9457078288 पर।
0: जब तक आप हमें संदेश भेजते हैं दोस्तों, तब तक नोट कर लीजिए हमारे सेगमेंट बूझो तो जाने के अंतर्गत का सवाल।
1: तो दोस्तों आज का हमारा सवाल है, 2026 एथलीट्स फाउंडेशन कप में 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा।
0: जिसका जवाब आपको पता ही है कि कहां लिख के भेजना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूं कि आपको इसका जवाब लिखकर भेजना है हमारे फेसबुक अकाउंट आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में।
1: तो दोस्तों तब तक एंजॉय कर लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
1: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
1: जी हाँ, मजा आ गया
3: यार। आजकल तो देखिए मंदिर जाना भी बड़ा दुश्वार सा हो गया।
4: क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई तेरे साथ?
3: अरे यार, कल शाम के टाइम में मंदिर को गया, मैंने बड़े हाथ जोड़ के प्रार्थना करी भगवान से, कुछ मांगा।
4: क्या मांग लिया, हमें भी बता दे भाई।
3: हाँ यार, जब इतनी बात बता रही हूँ तो यो भी पूछ ही ले। मैंने मांगा कि जल्दी से मेरी शादी हो जावे।
4: है सच्ची? अबे तू शादी के लिए दुआ मांग रहा था?
3: हाँ हाँ, लेकिन भगवान ने तो ज्यादा ही सुन ली कुछ। जैसे ही बाहर निकला तो भैया जूते चुराई की रस्म भी हो गई थी।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
5: तो राशि, हमारे जो मैसेजेस का था सिलसिला वो भी शुरू हो चुका है। हमारी एक दोस्त है जिन्होंने हमें मैसेज करके बताया है कि यादें कभी सिर्फ बीते हुए लम्हे नहीं होती, वो हमारे दिल का वो हिस्सा होती है जो समय के साथ और भी अनमोल हो जाती हैं। कुछ लोग जिंदगी से दूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी बातें और उनके साथ बिताए हर पल हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और ये हमें लिख भेजा है नगीना से रीमा चौधरी ने।
6: बिल्कुल। तो दोस्तों, इसी तरह से आप मैसेज हमें भेजते रहिए। जो आप जानते हैं कि आज हमारी थीम है याद, लेकिन याद से एक बात और याद आ रही है कि हमारा एक खास सेगमेंट जो कि जाता है, तो चलिए उसकी ओर चलते हैं। क्या अक्षी, क्या कहती हो?
4: हाँ बिल्कुल चलते हैं।
6: तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेगमेंट कुछ खास है आज के पिटारे में, जिसमें आज हम जानेंगे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में।
5: कहते हैं प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है, ये हमें बिना कुछ मांगे जीवन देती है, शुद्ध हवा देती है, स्वच्छ जल देती है, खाने के लिए हमें भोजन देती है, यहाँ तक कि हमारी बीमारियों के लिए वो औषधियां देती है और एक सुंदर सा संसार वो हमें देती है।
6: लेकिन अक्षय, दुख तो इस बात का है कि इंसान अपनी सुविधाओं के लिए जंगल काट रहा है, नदियों को प्रदूषित कर रहा है और प्लास्टिक से धरती को नुकसान भी पहुंचा रहा है।
5: राशि, इसका असर आज जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमारे सामने है।
6: दोस्तों, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हमें यही संदेश देता है कि अभी भी समय है, अगर हम आज जागरूक हो जाएं तो आने वाली पीढ़ियों को एक हरा भरा सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं।
5: वैसे राशि, हम प्रकृति के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते? हर साल कम से कम एक पौधा तो लगा ही सकते हैं, पानी और लाइट की सेविंग्स भी कर सकते हैं।
6: बिल्कुल दोस्तों, और कूड़े को इधर उधर ना फेंक कर आप डस्टबिन में डाल सकते हैं, पेड़ पौधे और वन्य जीवों की रक्षा भी आप कर सकते हैं।
5: जी हाँ दोस्तों, याद रखिए धरती केवल हमारी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भी धरोहर है।
6: दोस्तों कहते हैं ना, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, धरती माँ का मान बढ़ाओ, हरियाली जब साथ रहेगी खुशियों की बरसात रहेगी।
5: आइए दोस्तों, आज इस अवसर पर हम सभी छोटा सा संकल्प लें,
6: हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, जल और ऊर्जा की बचत करेंगे, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देंगे। दोस्तों, प्रकृति की रक्षा करना केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। हमारा एक छोटा कदम धरती के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है।
5: प्रकृति से प्रेम करें, क्योंकि यदि प्रकृति सुरक्षित है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित ही रहेगा। दोस्तों,
6: तो दोस्तों कुछ खास बातें हमने आपसे की हैं, आप चलते हैं आगे एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर, और इसी तरह जल्दी जल्दी आप मैसेज भेजते रहिए हमारी थीम याद पर।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
4: अबे ओ चंगू, इसे प्लम्बर को कहा को साथ लेकर घूम रिया? वैसे पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं ये।
5: अरे यार कुछ नहीं, बस साथ में मैंने सोचा आज प्लम्बर को लेकर चलता हूँ।
4: क्यों क्यों भाई, क्यों लेकर जा रहा है इसे तू?
5: अरे यार मुझे खबर मिली थी कि पेपर लीक हो गया।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
4: दोस्तों, बहुत से हमारे जो दोस्त हैं वो हमारी थीम याद के ऊपर हमें मैसेज भेज रहे हैं। तो हमें मैसेज है और वो कह रहे हैं कि इंसान चला जाता है लेकिन उसकी यादें कभी नहीं जाती। जब भी जिंदगी थका देती है तो वही यादें फिर से मुस्कुरा देती हैं और मुस्कुराने की वजह भी दे देती हैं। इसलिए अपनों के साथ बिताया हर पल संजोए रखें, क्योंकि आने वाले समय में वही पल आपको खूबसूरती से आपके दिल को सुकून देगा। और ये मैसेज हमें भेजा है, ये बहुत ही इमोशनल सा मैसेज है वैसे तो। ये हमें मैसेज भेजा है काव्या ने धामपुर से। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वाकई दिल में बहुत सारी यादें ऐसी रह जाती हैं जो हम किसी के साथ साझा भी नहीं कर पाते और कभी कभी एक्सप्रेस करने में भी हमें घबराहट होती है। तो दोस्तों, आप मैसेज तो भेज ही रहे हैं लेकिन हमारे सेगमेंट का सिलसिला भी रुकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आज है ट्यूसडे, लेकिन मंडे से जाती है हमारी एक सीरीज, स्टोरी की सीरीज। तो दोस्तों, हम लेकर चल रहे हैं आपको अलीना की कहानी के उस पार की सीरीज, दो कलाकार के पार्ट सेकंड की ओर। तो चलिए सुन लेते हैं ये स्टोरी।

तो दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं कहानी के उस पार में, एपिसोड नंबर 2। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि चित्रा और अरुणा दोनों कलाकार थी, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। चित्रा का मानना था कि कला की असली पहचान नाम और कामयाबी से होती है, वहीं अरुणा सोचती थी कि अगर कला किसी इंसान के ही काम ना आए तो उसका क्या मतलब। अब उनकी इसी सोच की असली परीक्षा होने वाली थी। दिन बीतते जा रहे थे। चित्रा सुबह से शाम तक अपनी पेंटिंग्स में लगी रहती थी। हर नया रंग, हर नई रेखा उसके लिए एक नया सपना थी। दूसरी तरफ अरुणा कॉलेज के बाद अपना ज्यादातर समय बस्ती के बच्चों के साथ बिताती। कभी उन्हें पढ़ाती, कभी उनकी कॉपियां चेक करती, तो कभी उनके साथ खेलती। चित्रा कई बार उसे देखकर मुस्कुराकर कहती, अरे अरुणा, तुम्हारे पास अपने लिए भी थोड़ा समय बचता है या नहीं? अरुणा हंसते हुए जवाब देती है, चित्रा, मैं इन बच्चों के साथ जो समय बिताती हूँ ना, वो मेरा अपना समय है। एक दिन दोनों चाय पी रही थी, तभी अरुणा के नाम उसके दोस्त मनोज की चिट्ठी आई। वो उसे बड़े गौर से पढ़ने लगी। उस समय चित्रा भी खुश होकर बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। उन्होंने लिखा है कि जैसे ही हमारा कोर्स पूरा होगा, मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा सकती हूँ। सोचो कितना बड़ा मौका है ना मेरे लिए अरुणा। उसकी आंखों में अपने फ्यूचर के सपने साफ दिखाई दे रहे थे। अरुणा मुस्कुराई और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है चित्रा, मुझे पता था अंकल तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे। फिर वो कुछ पल चुप रही और बोली, चित्रा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या तुम्हें कभी नहीं लगता कि सिर्फ कैनवास पर तस्वीरें बनाना ही काफी नहीं है? अगर हमारी कला किसी की जिंदगी में जरा सी भी खुशी या सुकून ना ला सके तो उसका मतलब क्या है? चित्रा ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, फिर वही बात, तुम हर बार कला को लोगों की मदद से क्यों जोड़ देती हो? अरुणा, कलाकार का काम अपने एहसासों को रंगों में उतारना है, पूरी दुनिया बदलना नहीं। अरुणा ने बिना रुके जवाब दिया, लेकिन अगर कलाकार दुनिया का दर्द समझ ही ना सके तो उसके रंग भी अधूरे हैं। कुछ देर दोनों चुप रही, फिर अरुणा बोली, मुझे लगता है तुम हर चीज में बस अपनी अगली पेंटिंग का विषय ढूंढती रहती हो। दुनिया में कुछ भी हो जाए, अगर उससे तुम्हारी पेंटिंग नहीं बनती तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा मायने रखती ही नहीं। चित्रा हल्का सा हंसते हुए बोली, और तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया की चिंता सिर्फ तुम्हें ही करनी है? दोनों हंस तो दी, लेकिन इस बार उनकी हंसी पहले जैसी नहीं थी। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ी हुई थी और दोनों को पूरा यकीन था कि वो ही सही है। उसी शाम अरुणा फिर बच्चों के बीच पहुंच गई। उन्हें पढ़ाते हुए उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो शायद किसी भी अवार्ड से बड़ी थी। उधर चित्रा अपने कैनवास पर एक और नई तस्वीर बनाने में खो गई। दोनों कलाकार थी, दोनों अपने काम से सच्चा प्यार करती थी, बस सोच का फर्क था। एक अपनी कला को कैनवास तक सीमित मानती थी और दूसरी उसे लोगों की जिंदगी से जोड़कर देखती थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली है जो उनकी सोच, उनके फैसले और उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। आखिर क्या हुआ, तो दोस्तों सुनिएगा अगले एपिसोड में।

0: यादें बनकर हमारे आंखों के कैमरे में, दिमाग में, कंप्यूटर में फीड हो जाता है। दिमाग में डिलीट का ऑप्शन तो होता ही नहीं है, कंप्यूटर में होता है। जीवन का स्वरूप ही यादें हैं, यादें जीवन की पूंजी हैं। ये अच्छी और बुरी दोनों तरीके की होती हैं, सबसे निभाकर जीवन आगे चलता रहता है। याद इस जीवन का अस्तित्व है। और वो दो लाइन भी लिखकर हमें भेज रहे हैं कि मेरा कातिल आज भी मुझे याद आता है, मेरा कातिल आज भी मुझे याद आता है, शायद कोई सजा बाकी है याद दिलाता है। तो बहुत ही अच्छा मैसेज आपने हमें लिखकर भेजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मैसेज हमारे दोस्तों ने हमें भेजे हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है मिश्बा शमशी जी का, जो कि नगीना से है। वो लिख रही है, जिंदगी में कितनी भी आगे बढ़ जाइए लेकिन कुछ यादें हमेशा साथ चलती रहती हैं। कभी बिना वजह मुस्कुरा देना तो कभी किसी वजह पर भी ना मुस्कुराना। गुजरे हुए लम्हे हमारे साथ हमेशा चलते हैं। हम अपने आप को उन एहसासों से खूबसूरत बनाते हैं क्योंकि हर याद हमारे सफर में एक प्यारा सा हिस्सा होती है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने भेजा है।
1: और इसी के साथ दोस्तों, हमने आपसे किया था स्टार्टिंग में एक सवाल कि 2026 एथलेटिक्स फेडरेशन कप में 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा, जिसका सही जवाब है गुरविंदर सिंह जी। और हमें सही जवाब भेजने वालों में शामिल हैं राजेश वर्मा, सुदर्शन शाह, संजय ढींगिया, धर्मेंद्र छीपा, गजानन येले, विट्ठल सुरेशो, सदाशिव थोरात, शाहिनूर अंसारी, जगदीश धाकर, मोहम्मद सरफराज आलम, दिनेश वर्मा, ओम गायकवाड़, बबलेश पवार, जाकिर मंसूरी, धर्मेंद्र डोमेंद्र नेत्राम, दिग्दर्शन गौर, विजय।
0: दोस्तों बहुत से मैसेज हमारे पास आप भेज रहे हैं और हमारे बातों का आप सही जवाब भी दे रहे हैं। तो जवाब देने के वाले वालों के नाम और भी हैं, विजय सुरलकर, पूजानंद नवाकर, शाहनूर अंसारी, धायराज भाई रवाड़ी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आगे और एंजॉय करते हैं आप सभी की फरमाइश याद पर ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों मैसेज का सिलसिला बरकरार है। मैसेज भेज रहे हैं हमें विलेज एंड पोस्ट राहु नांगली से आचार्य सत्यवीर सिंह। वो कह रहे हैं, यादें वो नहीं होती जो तन्हाई में याद आती हैं, बल्कि यादें तो वो होती हैं जो हमें भीड़ में भी तन्हा कर देती हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर याद हमें किसी की आ रही है तो हम भीड़ में होने के बाद भी अपने आप को अकेला ही महसूस करते हैं। अगला मैसेज भेजने वाले का नाम है राहुल शर्मा, जो कि हमें भेज रहे हैं मुरादाबाद शांति नगर उत्तर प्रदेश से। यादें कभी पुरानी नहीं होती, समय चाहे कितना भी बीत जाए, कुछ लोग और उनसे हमें जुड़े हुए पल हमारे दिल में हमेशा बसे रहते हैं। उनकी मुस्कान, उनका अपनापन और उनके साथ बिताया हर पल आज भी उतना ही खास है। कि वो दुआ कर रहे हैं कि ईश्वर से प्रार्थना है कि मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ वो हमेशा खुश रहें, जिनकी याद में उन्होंने ये मैसेज लिखा है वो हमेशा खुश रहें, हम भी यही दुआ करते हैं। तो दोस्तों अगले मैसेज भी हमें आ रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं उनके मैसेज।
1: और हमें ये मैसेज मिला है पूजा वर्मा का, और भेजने वाली हैं ये 112 गांधी रोड बरेली उत्तर प्रदेश से। ये लिख के भेजती हैं कि कई रिश्ते दूरी से नहीं यादों से जुड़े रहते हैं। जब भी आपकी याद आती है दिल में एक अलग ही सुकून महसूस होता है। आपकी हर बात और हर मुस्कान आज भी वैसी ही ताजा है। भगवान आपको हमेशा स्वस्थ, खुश और सुरक्षित रखें। इसी के साथ हमें मिला है अमित कुमार जी का मैसेज, जो कि भेजने वाले हैं 45 सिविल लाइन्स रामपुर उत्तर प्रदेश से। ये लिख भेजते हैं कि कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जिन्हें भुलाना कभी संभव नहीं होता। उनकी यादें हर मुश्किल समय में हौसला देती है और हर खुशी में मुस्कान बन जाती है। आपकी याद हमेशा हमारे दिल में सम्मान और अपनापन बनकर रहेगी। तो इसी के साथ हम सिलसिला जारी रखते हैं हमारे दोस्तों के नामों का, जिन्होंने हमें सही जवाब लिखकर भेजा था। उनमें शामिल है कैलाश फूलमाली, परवीन चौहान, कमल सिंह, बी एल धाकर, निसार सलमानी, राधेश्याम पांडे, हीरामणि वर्मा, देवशंकर थामुरिया, शकील अहमद इदरीसी, अनिल विनोचा, राजकुमार डूडी, मुकेश कश्यप, गुरमीत सिंह, फागुन यादव, मुजफ्फर अली खान, दत्ता धोड़केन, बलवंत कुमार वर्मा, वीरेंद्र भ्याण, आर्यन राज, मोहम्मद जाहिद अली, राम कुमार रेवार, नवी हसन अब्बासी, मसरूर हसन, ताज अंसारी, सुभाष लाल मोहम्मद अंसारी, सुरेश गगनेजा, नजमुल होडा, दुर्गाराम साहू, रुबीना मलिक, जॉन डिक्रिस्टो, शेख मुसार, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, नदीम बाकी, मोहम्मद रफीक पवार, मिसबा शमसी, गंगा सिंह रावत और साथी हैं मोहम्मद हसनैन पवार। तो आइए दोस्तों चलते हैं अब अगले गीत की ओर और सुनते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 24676। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप सुन लीजिए 9457078288।
1: जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी राशि ने आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर बताया है, नंबर एक बार फिर से 9457078288। इसी के साथ दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही साथ हमारे पुराने प्ले, कहानियां और आने वाले प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर। तो जल्दी से उठाइए दोस्तों अपना फोन और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद और सुन लीजिए हमारे सभी प्रोग्राम्स। और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे सभी प्रोग्राम्स आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। इसी के साथ मुझे अक्षय त्यागी
0: और राशि त्यागी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। मगर दोस्तों अभी आपको छोड़ चलते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। नमस्कार।

0: अभी आप युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर इस समय लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल है। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हाल के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
2: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
1: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 70 अंक गिरकर 76,766 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंक कम होकर 23,985 पर आ गया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। चीन के हांगझोउ में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: तो भाई गंगाराम।
1: हाँ भैया जमरू।
0: अरे कैसे हाल चाल है भाई? सब राज्य खुशी?
1: हाँ भैया सब राज्य खुशी है। आप सुनाओ।
0: तो भाई देखो बिल्कुल ठीक ठाक है। और भैया आज तो सुबह से भैया बहुत बढ़िया बारिश हुई है भाई। ये समझ लो कि बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत थी।
1: बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखो भैया, बिना बारिश के कुछ नहीं है। बरसात के मौसम में बरसात ना हो, जाड्डों में जाड्डे ना हो, और गर्मियों में गर्मी ना हो, तो भैया अधूरा सा
0: आप बिल्कुल
1: लगे।
0: भैया अधूरा सा लगा है।
1: हाँ।
0: और भाई देखो चाहे हमारी धान की फसल हो या भैया गन्ने की फसल हो या भाई चारे वाली फसल हो, भाई इस टाइम तो जो हो शहरी जो हो पानी मांग रही थी,
1: बिल्कुल
0: सबको बारिश की जरूरत थी भैया।
1: बिल्कुल। और देखो ये जरूरत हो गई पूरी, तो अब भैया हमें जो है दूसरे कामों में लग जाना चाहिए।
0: बिल्कुल देखो भैया आप तो दूसरे काम करने ही पड़ेंगे।
1: हाँ
0: और जहां तक भैया बात हो दूसरे काम की,
1: ठीक
0: तो भैया आज तो मंगलवार है
1: बिल्कुल।
0: और हमारे बहन भाइयों को पता है भैया हर मंगलवार को हमारे किसान भाई सुन रहे हैं बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
1: बिल्कुल। तो भैया देखो आज इसमें क्रम है भैया हेलो बासमती का।
0: बिल्कुल, क्योंकि भैया आज है महीने का आखिरी मंगलवार।
1: बिल्कुल। तो भैया इस कार्यक्रम में आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब देने के लिए हमारे बीच में विशेषज्ञ आ गए हैं।
0: बिल्कुल। तो भाई देखो आओ शुरू करते हैं आज का यो बासमती
1: बासमती
0: धान
1: धान
0: रेडियो
1: रेडियो
0: कृषि
1: कृषि
0: पाठशाला।
1: पाठशाला।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
3: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
2: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
3: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
4: अरे मास्टर जी।
1: हाँ भैया।
4: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा रहा है।
1: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय सही मात्रा सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
4: बिल्कुल। और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है।
1: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
4: हाँ, देश किसान किसान का मान बासमती धान।
5: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।

0: तो स्वागत है हमारे सभी बहन भाई को आज के इस प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में। और इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू।
1: और मैं हूं भैया आपका भैया आलोक कुमार गंगाराम।
0: तो भाई गंगाराम।
1: हाँ भैया झुमरू।
0: भाई देखो पाठशाला शुरू हो गई है।
1: हाँ।
0: और भैया आज है महीने का आखिरी मंगलवार।
1: बिल्कुल। और भैया आप जानती हैं कि महीने के आखिरी मंगलवार को भैया हमारा कार्यक्रम होता है हेलो बासमती।
0: बिल्कुल। तो भैया आप भी बासमती धान के बारे में या भैया धान के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो अब से लेकर और 6:40 तक आप सीधे हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। और भैया फोन करने के लिए हमारे नंबर है,
1: भैया देखो हमारे दो नंबर हैं। पहला है मोबाइल नंबर, आप नोट कर लो, 94-57-07-82-88।
0: ठीक।
1: और भैया एक और है, पहले नजीबाबाद का एसटीडी कोड लगा लीजिएगा 01341। और भैया दूसरा फिर फोन नंबर आ गया, इसमें जोड़ दीजिएगा 230-105। तो ऐसे आप करेंगे तो भैया आप हमारा फोन लग जाएगा और आप अपनी भैया कोई भी समस्या बता सकते हैं, हमारे बीच में वैज्ञानिक आ गए हैं।
0: बिल्कुल। तो देखो भैया आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो है डॉक्टर नेत्रपाल शर्मा।
1: हाँ।
0: जो कि वैज्ञानिक है बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुर मेरठ में। तो डॉक्टर नेत्रपाल शर्मा जी का हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो किसान भाइयों आपकी अगर कोई भी बासमती धान से संबंधित
2: समस्या
1: है तो
2: विषय था यूपी स्टार्टअप मिशन युवाओं की नई उड़ान और अभिषेक शर्मा ने बातचीत की थी।
1: बहुत जल्दी भैया आप जो है हमारे कार्यक्रम को सुन सकते हैं। तो भैया आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें फोन करें। और भैया हमारे फोन नंबर जो है इस समय है 94-57-07-82-88। भैया इस नंबर पर आप फोन कर दो या भैया एक और नंबर बता दूं मैं।
0: हाँ बोल बताओ भैया।
1: 01341 एसटीडी कोड है 230-105। तो भैया इनमें से जो भी नंबर आपको सूटेबल लगता है उस पर फोन कर दो। हमारे बीच में जो हमारे वैज्ञानिक हैं भाई नेत्रपाल शर्मा जी वो बैठे हुए हैं, वो आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। तो भाई इससे पहले के कोई प्रश्न हमारा आवे हमारे श्रोताओं की तरफ से,
0: बिल्कुल,
1: तो एक दो बात हम ही पूछ लें
0: भाई। देखो बहुत ही जरूरी है।
1: हाँ।
0: और देखो भैया इस टाइम जो धान की रोपाई तो लगभग हो ही गई है और बढ़िया फुटाव हो सका तो भैया अच्छा फुटाव हो सका, अच्छा कल निकलो, तो इसके लिए हम क्या करें डॉक्टर साहब, तो यू हम जानना चाहेंगे।
1: बिल्कुल
2: जी, किसान भाइयों को फुटाव के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है इस समय। किसानों के लिए जो हम बताते हैं फ्री की दवा,
1: अच्छा
0: जी,
2: वो धान की रोपाई के 15-20 दिन के अंतर।
1: हाँ।
2: पाटा प्रैक्टिस।

0: भी 8 से 10 फिट का यूकेलिप्टस का डंडा हो, पॉपुलर का डंडा हो,
1: जी
0: जिसका वजन 12 से 15 किलो के बीच में होना चाहिए, या 8 4 5 बांस बांध लें 8 10 फिट के, जिनका वजन भी 12 से 15 किलो हो, उनको आप बांध करके पूरे खेत में पानी भर के और पाटा लगा देंगे, घुमा देंगे, तो उससे धान में अच्छा फुटाव होता है। और किसान भाई इसको अपनाएं, ये हमारा किसान भाइयों से अनुरोध है, उनके लिए फुटाव में फायदा मिलेगा। फुटाव के लिए कोई दवाई लगाने की आवश्यकता नहीं है,
1: जी
0: पत्ती लपेटक के लिए कोई दवाई लगाने की आवश्यकता नहीं है।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने बताई, और हम अपने किसान भाइयों को एक बार और बता देते हैं।
2: बिल्कुल।
1: भैया आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम हेलो बासमती, और भैया आपकी कोई बासमती धान से संबंधित समस्या हो तो आप तुरंत हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। कहो तो भैया फ़ोन नंबर बता दूँ मैं।
2: भाई देखो, नंबर बताने बहुत ही जरूरी है जिससे कि हमारे किसान भाई फोन कर सकें और बासमती धान के बारे में जो हमारे यहाँ विशेषज्ञ उपस्थित है उनसे जानकारी ले सके भैया।
1: तो भैया देखिए, हमारा फ़ोन नंबर है 9457-07-82-88।
2: ठीक।
1: तो भैया इस नंबर पर आप फ़ोन करके आपकी बासमती धान से संबंधित जो भी जिज्ञासा है उसको भैया दूर कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। और
2: बिल्कुल।
1: एक और नंबर हमारा है, अगर ये नंबर किसी वजह से ना लगे, 0341-230-105।
2: बिल्कुल।
1: तो भैया इनमें से किसी भी एक नंबर पर आप फ़ोन करके हमारे विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं, और भाई जब तक कुछ बातचीत हम ही कर लेते हैं।
2: बिल्कुल। देखो भैया, जुलाई का महीना लगभग समाप्त होने वाला भैया,
1: बिल्कुल।
2: और यूं मानना जाएगा भैया, जुलाई के रहते रहते अगर रोपाई समाप्त हो जा तो बहुत ही बढ़िया बात है।
1: बिल्कुल
2: और देखो, इस टाइम बिल्कुल लास्ट चरण में, लास्ट फेज में हमारी रोपाई चल रही है,
1: ठीक।
2: और भाई जिन बहन भाइयों की रोपाई भी किसी वजह से रह गई है, तो वे रोपाई करते हो किन बातों को ध्यान में रखें, क्या सावधानी बरतें, भाइयों भी तो जानना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब क्या सावधानी रखे हैं थोड़ा सा?
2: भाई एक हमारे भाई का फोन आ गया। हेलो, लगता भैया फोन कट गया।
1: जी डॉक्टर साहब, क्या इन दिनों में हम कर सकते हैं?
0: देखिए आ रहा है दोबारा।
1: इस बीच में फोन आ गया है।
2: हेलो
1: हेलो बासमती
3: हेलो हेलो
1: जी। हेलो
3: बासमती
1: जी, कौन भैया बोल रहे
3: जी,
1: हैं? अपना नाम
3: सुरेंद्र
1: बता
3: सिंह,
1: दीजिए।
3: सुरेंद्र सिंह और आलोक कुमार और इससे जगह मेरे राम राम
2: राम
1: जी।
2: राम जी, राम राम।
3: मैं ग्राम का दौड़ना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ।
1: जी मदन गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो बासमती धान से संबंधित क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं आप? हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं।
2: जी बिल्कुल, अपना प्रश्न बताइए।
3: अब तक तो समस्या अलग थी
1: जी,
3: कि सूखा पड़ रहा था, 18 दिन से बारिश नहीं हो रही थी,
1: बिल्कुल।
3: लेकिन आज बारिश हो गई है तो वो समस्या तो खत्म हो गई है।
1: ठीक।
2: अच्छा,
3: बहुत अच्छी बरसात हुई है
1: जी।
3: तो मैं पूछना चाहता था उसकी, वो तो समस्या हल हो गई है। अब समस्या दूसरी है
2: जी जी बताइए।
3: कि अब बरसात तो हो गई, जो है उसमें जो है टूडल बासमती है उसमें खरपतवार उग आए हैं।
2: अच्छा,
3: और खरपतवार भी ऐसे हैं कि उनकी जो है ऐसे हैं जैसे धान की रोपाई करते समय उसकी है, उसकी
2: जी
3: बराबर है। तो उनकी हम कैसे उनका निदान करें, और या तो या मजदूरों पर उनकी जो है उनकी सफाई करवाएं, निकलवाएं, या कोई दवाई डालकर।
2: बिल्कुल, देखिए
3: ये
2: डॉक्टर
3: मुझे
2: जी, बिल्कुल डॉक्टर नेत्रपाल जी आपके सवाल का उत्तर दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब।
3: जी जी जी
0: नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी, नमस्कार।
0: देखिए, यदि आप लेबर से कराने में सक्षम हो और लेबर की उपलब्धता है तो
3: हाँ
0: वो
3: जी
0: तो
3: है।
0: सबसे अच्छा है, लेकिन वो महंगा पड़ेगा थोड़ा।
3: हाँ जी, अच्छा जी।
0: अगर आप, क्योंकि ये जो समस्या बनी है, आपका जो पहला वो था कि बारिश नहीं हुई थी, पानी की कमी के कारण ऐसा हुआ है।
3: जी।
0: इसके लिए अब जो आप धान जैसी जो खरपतवार है उसके
3: हाँ
0: लिए
3: जी,
0: आपने 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से बिस बायरी बैक, एक टेक्निकल है
3: वेरी बेस्ट सर।
0: बिस पायरी बैग, जैसे नोमिनो गोल्ड
3: अच्छा
0: आता है जिसका
3: अच्छा जी,
0: ब्रांड नेम नोमिनो गोल्ड है, और कंपनियों का भी आता है,
3: अच्छा जी,
0: मैं टेक्निकल बता रहा हूँ। बिस पायरी बैग का आप 100 ml पर एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करा देंगे, पानी
3: अच्छा जी,
0: पानी नहीं भरा हुआ होना चाहिए उस समय,
3: अच्छा जी, अच्छा
0: और फिर तीसरे चौथे दिन पानी लगा देंगे आप उसमें, तो फिर वो
3: जी,
0: नीचे से धीरे धीरे पीली पड़ के खत्म हो जाएगा आपका,
3: अच्छा जी,
0: तो उस दवाई का आप प्रयोग कर सकते हैं जो बाद में हम उगने के बाद में लगाते हैं।
3: अच्छा जी।
0: और लेबर से अगर रखवा सकते हैं तो वो सबसे अच्छा है।
3: अच्छा जी।
0: जी सर, और कोई सर?
3: बस ये समस्या थी
2: जी। बिल्कुल, तो हमें फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो गंगाराम भैया, बात यह है कि अगर हमारे धान के खेत में
1: जी
2: भैया पानी नहीं होगा और खेत हमारा सूख जाएगा तो उसमें घास फूस उगती है और खरपतवार हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, इस बीच में एक फोन और आ गया है, देखते हैं कौन भैया हैं। हेलो।
4: हेलो।
2: हाँ जी,
1: हेलो बासमती।
4: हेलो बासमती,
2: अपना नाम बता दीजिए।
4: आसिफ अली।
2: राशिद अली जी कहाँ से बोल रहे हैं?
4: आसिफ।
2: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
4: मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद से बोल रहे, बताइए क्या समस्या है आपकी?
4: जी हमारे धान में सुंडी लग रही है बासमती, कौन सी दवाई डाला?
2: सुंडी लग रही है।
4: सुंडी लग रही है।
2: अच्छा ठीक है जी, डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं, सुनिए।
0: आसिफ अली जी, आपने कितने दिन का धान हो गया आपका?
4: हमारा महीने भर हो गया सर आज।
0: अब तक कौन कौन सी दवाई लगाई है आपने?
4: डाली
0: जी,
4: और एक दवाई डाली हमने, उसका नाम भूल गया मैं।
0: देखो सबसे बड़ी समस्या वही आ रही है कि आप लोग दुकानदारों के कहने से जो दवाई डाल रहे हो ना, चाहे तो आपने लेमडा डाली हो या क्लोरोसाइपर डाली हो, चाहे आपने उसमें साइपर मैथ्रिन डाली हो, अधिकतर यही डाल रहे हैं आपकी, आपके सामने मरते हुए कीड़े दिखाई दिए होंगे, ऐसा हुआ? आपके खेत में सांप वगैरह कुछ भी नहीं बच रहे होंगे उस समय? देखो आपसे अनुरोध है कि भविष्य में आप इस तरह की दवाइयां कोई भी शुरू की अवस्था में नहीं डालनी है। अब आपको क्या करना है, देखिए क्योंकि आपने ये दवाइयां डाल दी हैं जिनके बाद में जो सेलेक्टिव दवाइयां हैं हमारी वो काम नहीं करती हैं।
4: सर आप बता दो।
0: आप अब क्या करना है, आपने ना कारटाप लेना है।
4: कारटाप?
0: हाँ, कारटाप 50 SP या कारटाप आपका 75% में आता है, 75% में।
4: 200 कितना मिलता है?
0: 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, ये तो मैं स्प्रे की दवाई बता रहा हूँ आपको।
4: कीड़ा
0: है उसके अंदर, वो सूंडी है, सूंडी आपने देखा नहीं, आप सुबह शाम खेत पर नहीं गए हो, जब सुबह शाम यदि आप खेत पर जाते होगे तो आपको तितली दिखाई देती होगी पत्तियों पर। पत्तियों पर तितली देखी थी तभी आपको उसके ऊपर एक्शन करना था। कारटाप ग्रेनुअल भी आप यदि खेत में डाल देते तो वो तितली भी खत्म हो जाती और आपकी सूंडी अंदर से खत्म हो जाती। ये तो मैं दवाई के रूप में बता रहा हूँ। आगे एक और ध्यान रखना, आप अपने खेत में पीले कट्टों को फाड़ फाड़ कर 15-20 जगह लगा दो।
4: पीले कट्टों को फाड़ फाड़ कर पीले
0: पीस बना बना कर उस पर ग्रीस लगा दो।
4: अच्छा अच्छा।
0: तो जो तना छेदक की जो सूंडी तितली है वो उस पर आकर के चिपक के खत्म हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगी कि मेरे खेत में तना छेदक आ रहा है। तो अब कारटाप 50 SP ले लो चाहे कारटाप 75% SP ले लो, उसका स्प्रे करा सकते हो। दूसरा क्लोरेंट्रोप्रिल आता है जो कोराजन में आता था। कारटाप क्लोरेंट्रोप्रिल, आप कोराजन लिख लो, कोराजन वाला टेक्निकल,
4: कोराजन पहले वाला,
0: कोराजन में जो दवाई होती है वो वाली दवा।
4: अच्छा अच्छा।
0: सीधा सीधा ना, हाँ जो रसायन होता है
4: ये वो बता दिया मैं, कहता हूँ कोराजन में दवाई दे दो।
0: हाँ, कोराजन में जो नोके अंदर टेक्निकल है वो चाहिए, उसका स्प्रे कर सकते हैं 60 ml पर एकड़ के हिसाब से।
4: ठीक है।
0: फेरोमोन ट्रैप लगा करके छोड़ दो जिससे ये अब समस्या बड़ी है आपकी बाली तक रहेगी।
4: ठीक है ठीक है
0: ठीक है, धन्यवाद।
2: तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से हमारे बहन भाई जो है बासमती धान के बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं और जागरूकता के साथ में लगातार हमें फोन कर रहे हैं। और भी हमारे किसान भाई हमें फोन कर सकें तो भाई उसके लिए नंबर बता दें।
1: मैं देखिए आपको नंबर बता रहे हैं, नंबर है हमारा 9457072888 और इसके अलावा एक और फोन नंबर है भैया हमारा 0341-230-105। इनमें से किसी एक फोन नंबर पर आप फोन करके अभी बासमती धान से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो उसका तुरंत निदान कर सकते हैं। हमारे किसान भाई हमें पता ही है कि लगातार अपना कृषि जगत कार्यक्रम सुनते हैं
2: जी,
1: तो बासमती के जो हमारे किसान भाई हैं अगर उनकी कोई बासमती धान से संबंधित समस्या है तो हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नेत्रपाल शर्मा जी मौजूद हैं, तो वो आपके प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। आप भैया फोन कर दीजिएगा।
2: बिल्कुल, और देखिए हमारे भाई जो है फोन कर रहे हैं, और जब तक किसी भाई का प्रश्न आता है तो तब तक भैया जो भैया आपने बात पहले पूछी थी कि जो हमारे भाई रोपाई के से रह गए हैं, तो वो इस समय अगर लेट रोपाई कर रहे हैं तो वो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखें?
0: सबसे पहले जरूरी जो बात ध्यान देने की, एक तो पौध हमारी उम्र दराज ना हो।
2: जी जी,
0: क्योंकि जब समय के हिसाब से प्लानिंग नहीं की गई होती है तो अधिकतर पौध उम्र दराज हो जाती है, तो उम्र दराज पौध में ध्यान देना है,
2: बिल्कुल
0: वो ना लगाएं किसान भाई। और दूसरा, पौध जब उखाड़ें तो पानी में भर करके उखाड़ें।
2: जी
1: अच्छा।
0: तीसरा, पौध की ऊपर से 2-3 इंच पत्ती को तोड़ करके मिट्टी में दबा दें। चौथा, रोपाई करते समय अपने खेत की प्लानिंग रखें कि पड़लिंग एक दिन पहले बनाएं।
2: अच्छा।
0: ट्रैक्टर से घान एक दिन पहले करें और रोपाई अगले दिन करें सुबह को, जिससे पौध की जड़ की गहराई 1-1.5 इंच गहरी लगनी चाहिए। वो बहुत जरूरी बात
2: है। जी जी।
0: जिससे हमारे किसानों के लिए फुटाव की समस्या ना बने। तो ये इस समय जरूर देने वाली ध्यान की बात है। मिट्टी थोड़ा लेवलिंग कर लें, जिससे कहीं टापू बना है उसको डुबोने में लाखों लीटर पानी हम लोग बर्बाद ना करें।
2: बिल्कुल।
1: तो कुल मिला के ये समस्या हो सकती है। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं भैया, आपकी कोई बासमती धान से संबंधित समस्या हो तो हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के विशेषज्ञ मौजूद हैं, और बासमती धान से संबंधित किसी भी समस्या के निदान के लिए आप तैयार हैं तो आपको फ़ोन नंबर बता देते हैं एक बार फिर। हमारा नंबर है 9457-08-82-88। और भैया एक और नंबर है, वो है भैया 0-13-41-230-105। तो इनमें से किसी भी एक नंबर पर फ़ोन करके आप भैया अपने जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं।
2: और देखिए, अगर हम चावल की बात करते हैं तो चावल भैया बासमती से अच्छा चावल जो है विश्व में नहीं है।
1: हाँ।
2: और खास बात यह है कि भैया हमारा जो सौभाग्य है कि हम लगभग पूरी दुनिया के लिए बासमती चावल को उत्पादित कर रहे हैं।
1: ठीक।
2: बासमती चावल पूरी दुनिया में भेज रहे हैं और विदेशी मुद्रा भैया इससे जो हमारे देश में आ रही है।
1: बिल्कुल।
2: तो इसलिए हमें जो है जागरूकता के साथ में बासमती धान का उत्पादन करना है, बासमती धान को लगाना है। और डॉक्टर साहब जैसा कि बता रहे हैं कि जो हमारे भाई इस समय रोपाई कर रहे हैं, तो ये बहुत ही मुख्य बातें हैं, बहुत ही खास बातें हैं, इनका हमें ध्यान रखना है और अपने धान की रोपाई करनी है ना गंगाराम भैया?
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखिए, चलते चलते अपने किसान भाइयों से संबंधित एक बात और हम कर लेते हैं कि देखिए अब इस समय अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि पाटा लगा दें।
2: बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर साहब, पाटा लगाने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं हमारे जो किसान भाई उनको?
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: देखिए, सबसे पहले पाटा लगाने से हम लोग कहते हैं फुटाव के लिए दवाई लगाने की आवश्यकता नहीं है।
2: जी,
0: जो फुटाव की दवाइयां लगाते हैं हम, उसमें साइलेंट ऐसे टेक्निकल्स होते हैं जिनके साइड इफेक्ट हमारे पूरे मानव शरीर के लिए भी, हमारी खेती के लिए, हमारे पशुओं के लिए, सबके लिए आ रहे हैं।
2: जी,
0: वो दवाइयों से हम बच सकते हैं।
2: जी जी।
0: हमारा पैसा ज्यादा खर्च होता है, उससे हम बच सकते हैं।
2: ठीक।
0: और साथ ही साथ हम उन बीमारियों से बच सकते हैं जो हमारे उन दवाइयों को लगाने की वजह से आ रही है, जैसे बकानी।
2: हमारे भाई का फोन है, देखते हैं कौन है। लगता है भैया फोन जो है कट गया है, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। जी डॉक्टर साहब,
0: तो फुटाव वाली दवाई लगाने से हमारा खर्चा कम होगा, हमें आगे दवाई लगानी भी नहीं पड़ेंगी।
2: जी।
0: और फुटाव हमारा जैविक विधि कह लो इसको, पाटा प्रैक्टिस को, एक स्टव थेरेपी है, जैसे हमारे अंदर जो एनर्जी छिपी हुई उसको जगाना है।
2: जी, जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: उससे फुटाव अधिक होगा।
1: और इस बीच में फोन आ गया डॉक्टर साहब।
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो हेलो बासमती,
1: हेलो बासमती,
2: लगता भैया फोन कट गया हमारा। चलिए, हमारे किसान भाई जो दोबारा संपर्क करेंगे। और देखिए, अभी आप जो है 6:40 तक आप जो है सीधे हमारे पास में फोन कर सकते हैं, स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नेत्रपाल शर्मा, जो कि वैज्ञानिक है बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में। और हमारे फोन नंबर हैं
1: 9457-08-82-88 और भैया 0-13-41-230-105। तो हम अपने किसान भाइयों को एक बार और बता दें कि अगर आपकी बासमती धान से संबंधित कोई समस्या है तो भैया हमें तुरंत आप फोन करके अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। नंबर एक बार और बता रहा हूँ मैं, 9457-08-82-88।
2: और देखिए लगातार हमारे भाई जो है हमसे बातचीत कर रहे हैं और अपने जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं, और अभी हम लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा विराम। किसान भाई इस समय सुन रहे हैं
1: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
2: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ
2: द्वारा प्रायोजित बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
5: अरे मास्टर जी।
6: हाँ भैया।
5: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा रहा है।
6: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय सही मात्रा सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
5: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है।
6: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
5: हाँ, देश किसान, किसान का मान बासमती धान।
7: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।

0: तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में। और इस पाठशाला के साथ मैं हूं आपका भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू।
1: और मैं हूं आपका भैया गंगाराम। तो भैया, हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई जो हैं इस समय काफ़ी मात्रा में भैया बासमती की खेती करते हैं।
0: जी,
1: और बासमती जब खेती करते हैं तो उनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं भी होंगी।
0: बिल्कुल।
1: तो उन जिज्ञासाओं को या उन समस्याओं के समाधान के लिए आज हमारे कार्यक्रम के बीच में सजीव रूप से हैं डॉक्टर नेत्रपाल शर्मा जी। तो या आप सीधे हमारे स्टूडियो में फ़ोन करके डॉक्टर नेत्रपाल शर्मा जी से, जो बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, उनसे समस्याओं का निदान कर सकते हैं। फ़ोन नंबर बता देते हैं एक बार भैया।
0: बिल्कुल भाई, नंबर बताना बहुत ही ज़रूरी है।
1: हमारे नंबर हैं 9457072888, और दूसरा नंबर है हमारा 0341-230-105।
0: और देखिए, जब तक हमारे भाई का कोई प्रश्न आता है तब तक भैया हम अपने मन की जिज्ञासा शांत कर लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि देखिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए उर्वरक सही तरीके से डालना भी बहुत जरूरी है। तो जब हम खेत तैयार करते हैं, जैसे कि इस समय लेट हमारे भाई खेत तैयार कर रहे हैं, जब हम पडलिंग करते हैं, तो उस समय कौन से उर्वरक डालें डॉक्टर साहब?
2: उस समय हम जब पडलिंग करते हैं तो NPK,
1: अच्छा,
2: नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास को डालना है हमें।
0: डॉक्टर साहब एक प्रश्न।
1: हेलो,
0: हाँ जी, हेलो बासमती,
1: हेलो बासमती,
0: लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी डॉक्टर साहब,
2: आ गया दोबारा से।
0: हेलो बासमती,
1: हेलो बासमती, संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा इन किसान भाई से। चलिए डॉक्टर साहब जी, आप बता रहे थे, बताइएगा।
2: तो NPK का हमको प्रयोग करना है
0: जी
2: पडलिंग के समय
0: जी।
2: उसके 10 से 12 दिन बाद हमको पहली डोज में, जो किसान भाई जैविक से नहीं करते हैं, तो नाइट्रोजन, यूरिया, जिंक
0: जी।
1: हेलो, फोन, हमारे किसान भाई लगातार फोन तो कर रहे हैं लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि हम अगर उर्वरक प्रबंधन करें तो इस समय आप बता रहे थे कि NPK डाला जा सकता है। यूरिया की मात्रा कब कब डालें
0: जी?
2: यूरिया की मात्रा रोपाई के 10 से 12 दिन बाद
0: जी,
2: फिर दूसरी उसके 15 दिन से 20 दिन के अंतराल पर डालनी है
1: जी।
2: वैरायटी के हिसाब से डालनी है। अगर हमारी पत्ती का कलर तोते कलर से अलग हो जाता है
0: जी,
2: पीलापन पैदा, तभी हमें यूरिया का प्रयोग करना है। 40 दिन के बाद किसी को हमें किसी भी उसमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना है।
0: अच्छा,
1: तो ये तो बात हो गई यूरिया की। अच्छा डॉक्टर साहब, चलते चलते एक बात हमें और करना चाह रहे हैं कि जो हम सिंचाई के प्रबंध हैं, यानी कि पानी की व्यवस्था किस प्रकार से बना के रखनी है
0: जी?
2: देखिए, शुरू के 30 दिन हमको पानी का मैनेजमेंट अच्छा रखना है
0: जी।
2: रोपाई से 30 दिन तक यदि हम पानी अच्छा मैनेजमेंट रखेंगे तो हमारे एक तो खरपतवार नहीं होंगे, दूसरा हमारा फुटाव अच्छा होगा।
0: अच्छा, बिल्कुल।
2: उसके बाद में हम पानी सूखने के बाद भी नमी बनाए रखेंगे प्रॉपर, वो भी अच्छा रहेगा बासमती धान की खेती के लिए। मिट्टी में लड्डू बना रहना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो भाई गंगाराम, इस तरीके से हमें जल प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी है
1: जी।
0: और अगर हम सही तरीके से जल प्रबंधन करते हैं तो हमारे जो खेत हैं, हमारा जो ये धान की फसल है, उसमें घास फूस नहीं उगते हैं, खरपतवार नहीं उगते हैं, और खेत हमारा साफ सुथरा रहता है, फसल हमारी शुद्ध रहती है
1: जी। बिल्कुल सही बात है।
2: ऐसी बीच में किसान भाइयों को, क्योंकि फोन नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, वो फोन नहीं कर पा रहे हैं, और जो भी सुन पा रहे हैं मेरी बात, मैं अनुरोध करता हूं कि जो धान की हमारी जो शुरू से छोटी छोटी कमियां हैं उनको आप लोग दूर करेंगे तो बीमारी और कीट के लिए दवाइयों का प्रयोग हमें बहुत कम करना पड़ेगा। जैसे बकानी के लिए, फोन आ रहा है।
0: हेलो बासमती,
2: कोई एरर ही आ रहा है,
0: संपर्क नहीं हो पा रहा है
2: जी। तो आप बात सुन पा रहे हैं हमारी? सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जैसे पौध उखाड़ने में, हम अभी फील्ड में किसानों के बीच में जा रहे हैं, देख रहे हैं, जिन किसान भाइयों ने बीज अच्छा लिया, बीज का उपचार भी किया, नर्सरी अच्छे से बनाई और लेबर के कहने पर लेबर ने अपनी सुविधा के अनुसार सूखे में पानी बिना भरे 15/09/11/21/16/12/17/18 की पौध।
1: इस बीच एक नक्शा फोन आ रहा है।
3: हेलो
0: हाँ जी हेलो बासमती
3: धान
0: जी।
3: नमस्कार दोनों भाई को और डॉक्टर साहब को भी।
0: नमस्कार जी नमस्कार सर। अपना नाम बता दीजिए।
3: मैं त्योहारा से आसिफ चौधरी बात कर रहा हूँ सर।
0: जी आसिफ जी थोड़ा रेडियो से दूर हो जाइए और बताइए क्या समस्या है आपकी।
3: समस्या ये है कि सबसे पहले तो आप लोग जानकारी देते हैं रोज
0: जी,
3: वो किसानों को बहुत फायदा मिलता है।
0: जी
3: जैसे कि आज भी डॉक्टर साहब दे रहे हैं जानकारी, भले ही फोन ना लग रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी बहुत ही भरपूर मिल रही है किसानों को।
0: बहुत बढ़िया जी।
3: और हमने तो खैर धान नहीं लगा रहे, लेकिन हमने गन्ना बो रखा।
0: अच्छा।
3: जमीन सब इसी तरह के हैं कि गन्ना
0: जी
3: जी। और आपकी जानकारी बहुत बढ़िया मिलती है, जैसे कि जो मतलब ये बांधनी है कि इस मतलब कहना का इस पौधे से इस पौधे तक ही बांधो, वो जानकारी मिलती है। और जमीन की मतलब कहने का जांच कैसे करानी चाहिए, ये भी बहुत आप बताते हैं, बहुत बढ़िया लगती है बातें आपकी।
0: तो देखिए जो भी जानकारी हमारे कार्यक्रम में आती है वो आपको अच्छी लगती है, वो हमारे किसान भाइयों काम में आती है। तो क्या आप इस बारे में कोई जानकारी चाह रहे हैं बासमती धान के बारे में?
3: जी जी जी धान के बारे में ये है कि अगले साल लगाएंगे तो कौन से वाला धान लगाएं, ये हमें बता दीजिए।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं अच्छी प्रजातियां।
2: आप कहाँ से बिलोंग करते हैं?
3: जिला बिजनौर से।
2: बिजनौर से आपके क्षेत्र में एक तो तुड़ल की वैरायटी अच्छी होती है, जैसे पूसा बासमती बन है, पूसा बासमती 1637 है
3: जी,
2: उनको आप लगा सकते हैं। पूसा बासमती अगर कम समय वाली आप लगाना चाहते तो 1509 लगा सकते हैं, 1692 लगा सकते हैं पूसा बासमती। और लंबी अब उसमें लगाना चाहते हैं तो 1121/18/85/17/18 ये लगा सकते हैं।
3: लंबी तो रहेगी
2: हाँ, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन कम बढ़ने वाली भी हैं जो पहले बताई हैं आपको और कम समय में।
3: धन्यवाद।
0: तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ चौधरी जी, ये थे सिहोरा से। और देखिए अभी भी 7 मिनट हमारे कार्यक्रम में शेष है, हमारे किसान भाई हमसे बातचीत कर सकते हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और गंगाराम भैया फोन नंबर एक बार फिर बता दीजिए।
1: जी मैं फोन नंबर बता रहा हूँ 9457072888। और भैया एक और फोन नंबर है 01341230105। इनमें से किसी भी एक नंबर पर आप सीधे फोन करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो मौजूद हैं। और इस बीच एक फोन आ गया।
0: हेलो अपने रेडियो से थोड़ा दूर हो जाइए।
4: हेलो
0: रेडियो से थोड़ा दूर हो जाइए। हाँ जी बताइए।
4: हाँ जी
1: रेडियो सेट से थोड़ा दूर होकर बात कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगी बात।
4: जी जी मैं दूर ही खड़ा हूँ सर। नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार हाँ। थोड़ी आवाज कम।
4: जी मैं ग्राम अफसरदाबाद से बात कर रहा हूँ, ललित कुमार
1: जी। आपने रेडियो की आवाज कम कर दीजिए या फिर और ज्यादा दूर हो जाइए।
4: जी जी सर मैं दूर ही खड़ा हूँ।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बताइए।
4: जी सर मैं गन्ने के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के बिजनौर से ग्राम मकसूदाबाद से बात कर रहा हूँ सर।
0: देखिए हम आपसे माफी चाहेंगे कि आज हमारा ये विशेष कार्यक्रम है, स्पेशल कार्यक्रम है बासमती का। हेलो बासमती इसका नाम है। और बासमती धान के बारे में या धान के बारे में कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञ यहाँ मौजूद है, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं।
4: जी जी बाबूजी मुझे धान की अगले साल प्रजाति लगानी है।

0: हैं कम समय में ज्यादा उत्पादन करने के लिए, यदि कोई प्रजाति हो तो सर बता दीजिए, उसके बारे में जानकारी करने के लिए मेरे पापा जी ने फोन लगवाया।
1: पूसा बासमती 16 बान में
0: जी, पूसा बासमती
1: 16 बान में और पूसा बासमती 15-0 में।
0: लो मेरे पापा जी से बात कर
2: जी,
3: हम दो गन्ने के बारे में बताओ।
1: नमस्कार जी।
3: नमस्कार।
1: हाँ जी बताएं।
3: हम दो बासमती के बारे में कौन सी वैरायटी सही है?
1: आप कम समय की वैरायटी चाहते हैं तो पूसा बासमती 16 बान में या पूसा बासमती 15-0 में, तो दोनों में से कोई सी भी लगा सकते हैं। ठीक है सर।
3: कितना धान निकलता है?
1: 1 एकड़ में 22 से 24 क्विंटल एवरेज आता है।
2: तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिलनी चाहिए कि कम अवधि की हमारी जो कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिनको हमारे किसान भाई कम अवधि में ले सकते हैं, इनको उगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन हम बासमती धान से ले सकते हैं, है ना गंगाराम भैया?
4: बिल्कुल सही बात है। और देखिए अच्छी बात है कि जिन्होंने इस साल नहीं लगाया है वो अगले साल के विषय में अभी इसी सोच रहे हैं।
2: बिल्कुल।
4: तो प्रश्न तो प्रश्न होते हैं। अभी भी अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, आप कोई किसान भाई हमारे पूछना चाहते हैं कुछ, तो हमारे पास 4 मिनट का समय बचा हुआ है। एक बार फ़ोन नंबर और बता देते हैं, 94-57-07-82-88। दूसरा एक नंबर और है भैया, 013-41-230-105। इनमें से किसी एक नंबर पर फ़ोन करके आप सीधे बात कर सकते हैं।
2: बिल्कुल। और देखिए 4 मिनट का शेष है और अगर किसी भाई का फ़ोन नहीं आता है तो फिर हम अपनी जिज्ञासा शांत करेंगे। और हमारे मन में बात ये आ रही है कि जो हमारी बासमती धान की फसल है वो बिल्कुल शुद्ध हो, कोई और दूसरी प्रजाति का पौधा या दूसरी नस्ल का पौधा उसमें ना हो, तो डॉक्टर साहब इसके लिए हमें क्या क्या काम करना है?
1: देखिए उसके लिए हम
2: हेलो। हाँ जी हेलो बासमती।
1: हेलो
2: हेलो।
4: फोन का लग नहीं पा रहा है,
2: संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है।
1: देखिए हम बात कर रहे थे कि इस समय जो धान की बात है जो हम लोग किसान हमसे भी नहीं पूछ पा रहे हैं और जो सुन पा रहे हैं
2: जी,
1: बकानी बहुत ज्यादा आ रही है, उसके लिए बहुत ऐसी दवाइयां लगा रहे हैं किसान भाई जो उन्हें नहीं लगानी चाहिए और उससे खर्चा बढ़ रहा है और कोई खास फायदा उनको नहीं मिल रहा है।
2: बिल्कुल।
1: उसके लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें।
2: हेलो
4: हेलो
2: जी
4: जी, वो टेक्निकल ऐसी समस्या आ गई कि लगातार फोन भी कर रहे हैं लेकिन
1: ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें, पौध पानी में भरकर उखाड़ें, उम्र दराज पौध का प्रयोग ना करें, जिससे जो उम्र दराज पौध 15-09-16 बान में की लगाते हैं किसान भाई उनमें बकानी बहुत आती है और जो सूखे में पौध उखाड़ते हैं उन्होंने बीज भी अच्छा लिया है।
2: हेलो। आज संपर्क ज्यादा स्थापित नहीं हो पा रहा है बहन भाइयों से।
1: तो उसके लिए किसानों से मेरा ये अनुरोध, पड़लिंग के समय ट्राइकोडर्मा डाल दें 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, या एक IPL कंपनी का एग्नोर आ गया है
2: जी
1: उसको भी यूज कर सकते हैं
2: जी।
1: ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम वाली स्पीसीज को प्रयोग करना है बकानी बीमारी के लिए।
2: हेलो।
4: देखिए हमारे किसान भाई कोशिश तो कर रहे हैं, हम अपने किसान भाइयों को एक सलाह देना चाह रहे हैं कि अगर आप 94-57-07-82-88 भी संपर्क कर रहे हैं और नहीं हो रहा है तो हमारा दूसरा फोन नंबर है 013-41-230-105, उस पर संपर्क कर सकते हैं।
2: हेलो।
5: हेलो नमस्कार जी।
2: हाँ नमस्कार जी, बताइए।
5: ये डॉक्टर साहब से प्रश्न था, बसंती करके चावल है बासमती, क्या वो बसंती वैरायटी है या वैसे तो प्राइवेट नाम रख लिया लोगों ने?
4: पहले अपना नाम बता दीजिए आप।
5: मैं आलोक कुमार बोल रहा हूँ, गांव खजीपुरा तगा, डिस्ट्रिक्ट अमरवा से।
4: जी
2: जी बिल्कुल,
1: ये बसंती कोई बासमती की वैरायटी नहीं है।
5: नहीं है?
1: हाँ ठीक है सर, ये प्राइवेट कंपनियों की अपनी कोई लाइन है जो बासमती के पैरामीटर्स पर खरी नहीं उतरती है।
5: अच्छा
1: ठीक है सर।
4: और कोई
5: दुकानदार तो सर, दुकानदार तो सर इसकी बड़ी भारी पैदावार बता रहे हैं, ये बहुत अच्छा चावल है, पैदावार बहुत बड़ी है।
1: देखिए कुछ वैरायटी पैदावार दे सकती हैं लेकिन उनकी क्वालिटी बासमती की नहीं होती है। ठीक है सर।
5: ठीक है,
1: धन्यवाद।
2: तो देखिए हमें इस बात से बचना है और जो अच्छा बीज है वो हमें जो अच्छे संस्थान है वहीं से लेकर आना है।
4: बिल्कुल। तो देखिए हमारे किसान भाई लगातार संपर्क तो कर रहे हैं लेकिन फोन ठीक से बात नहीं हो पा रही है। तो देखिए अभी भी हमारे पास 1 से 2 मिनट के करीब समय बचा है, तो अगर आप सीधे बात करना चाहते हैं तो भैया 94-57-07-82-88 या 0341-230-105 पे संपर्क करके हमसे बातचीत कर सकते
1: हैं। मैं अभी बता रहा था बकानी के लिए किसानों को बचना है
2: जी,
1: अननेसेसरी दवाई नहीं लगाएं। दूसरा इस समय तनाछेदक के लिए
4: अच्छा।
1: और पत्ती लपेटक के लिए हमारे किसान भाई ऐसी दवाइयां लगा रहे हैं जिनसे और कीटों का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है
4: जी।
1: जैसे डर से और आदमी अपने बच्चे ज्यादा पैदा करने की कोशिश करता है, इसी तरह से हमारे कीट भी अपने अंडे और बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं। वो दवाइयां किसान भाई लगा रहे हैं जिनको हमें लगाना नहीं चाहिए, वो समस्या बहुत बढ़ती चली जा रही है। किसानों से यही अनुरोध है कि जैविक विधि से मैनेजमेंट करें
4: जी,
1: पत्तियों को तोड़कर लगाएं शुरू की अवस्था में, तो जो पौध में नर्सरी में हमारे अंडे रख गए थे तनाछेदक के वो खत्म हो जाएंगे। फेरोमोन ट्रैप लगा दें
4: जी,
1: फेरोमोन ट्रैप लगा दें, येलो कार्ड लगा दें स्टिक, लाइट ट्रैप लगा दें अपने खेतों में और नीम ऑयल का स्प्रे करें
4: जी।
1: अगर इनसे भी नहीं अगर मैनेज हो पा रहा है, अगर अंडे रख दें तो ट्राइकोग्रामा कार्ड
4: जी
1: उनको लगा दें, तो ट्राइकोग्रामा जो हमारा कीट है वो काफी हद तक इसको मैनेज करता है। जब भी नहीं इनसे मैनेज हो पा रहा, ये उपलब्ध नहीं है, तो फर्स्ट स्टेज में कारटाप का ही प्रयोग करें
4: जी।
1: उसके अलावा दवाइयों को ना लगाएं, अन्यथा दवाइयां लगाते रहेंगे रेजिस्टेंस पावर बढ़ती चली जा रही है और हमारे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे चावल में बहुत परेशानी आएंगी बासमती को एक्सपोर्ट करने में
4: जी।
1: फिर रेट नहीं मिलेंगे तो किसान भाई फिर इधर उधर की बातें और दूसरों के ऊपर फोड़ेंगे। इसलिए किसानों से अनुरोध है समय के साथ सही जानकारी के साथ सही दवा का सही समय पर प्रयोग करें, यही हमारा किसानों से अनुरोध है। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं अगर यहाँ से बात नहीं हो पाती है, तो बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान हमेशा बासमती के किसानों के लिए तत्पर है और उनकी हर समस्या के समाधान का कोशिश कर रहा है।
2: बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है बासमती धान के बारे में और जो कीट लगते हैं और उसके देखभाल के बारे में। और डॉक्टर साहब आज आप हमारे कार्यक्रम में और आपने किसान भाइयों के प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत
2: तो भाई देखो गंगाराम भैया, अब हमारे कार्यक्रम का समय धीरे धीरे संपन्न होने वाला है।
4: बिल्कुल,
2: तो चलने से पहले हम बता देते हैं कि ये हमारा हेलो बासमती कार्यक्रम अगले माह अगस्त में किस दिन होगा भैया?
4: भैया देखिए, जो अगले माह आप 25 अगस्त 2026 को हेलो बासमती सुन सकते हैं और भैया समय वही रहेगा 6:05 से लेकर 6:45 पे। फोन नंबर हमारे रहेंगे 9457-07-82-88, दूसरा नंबर हमारा रहेगा 0341-230-105।
2: तो भाई बासमती धान के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए, तकनीकी जानकारी सुनने के लिए, सुनते रहो प्रत्येक मंगलवार को बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
6: अरे मास्टर जी।
7: हाँ भैया।
6: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहला रहा है।
7: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय सही मात्रा सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
6: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है
7: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
6: हाँ, देश किसान किसान का मान बासमती धान।
8: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
9: किसान का मान बासमती, देश किसान बासमती,
10: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
4: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
2: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
4: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
2: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला आज का पाठ। और गंगाराम भाई।
4: हाँ भाई।
2: भाई यो बताओ कि मौसम के बारे में क्या जानकारी आज?
4: भाई देखो मौसम के बारे में जानकारी ये है कि कल और परसों भैया भारी वर्षा हो सकती है और भैया उसके बाद अगले 5 दिन जो है सामान्य मौसम रहेगा। तो ऐसे मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई जो है खेती किसानी के काम करें।
2: बिल्कुल, तो भैया अब हमारा कार्यक्रम इसी के साथ आज संपन्न होता है। तो आज का कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू
4: और अपने भैया आलोक कुमार गंगाराम को इजाजत दीजिए। किसान भाइयों
2: राम राम, राम।

0: बातचीत कर रहे हैं चरणजीत सिंह।
1: आयकर का भुगतान करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये देश के आर्थिक विकास पर, ये आपके लिए लोन, वीजा प्रक्रिया और वित्तीय विश्वसनीयता का सबसे मजबूत आधिकारिक एक प्रमाण भी होता है। ये एक आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करता है जो वीजा आवेदन, ऋण की स्वीकार्यता, आय के प्रमाण और टैक्स रिफंड क्लेम में मदद करता है। आयकर सीधे तौर पर राष्ट्र निर्माण, कानूनी दायित्व, लोन और क्रेडिट कार्ड की आसानी से उपलब्धता, वीजा अप्रूवल और टैक्स रिफंड के बारे में कुछ तकनीकी जानकारियां हमेशा हमारे संज्ञान में होनी चाहिए ताकि हम एक जिम्मेदार नागरिक होने का अपना दायित्व निभा सकें। तो ये कौन कौन सी खास जानकारियां हैं, हमारे कौन कौन से दायित्व हमारे राष्ट्र के प्रति बनते हैं, ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ श्री आशुतोष सिंह जी, जो कि हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद सर।
1: आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आयकर के क्षेत्र में काफी बारीकियों आप जानते होंगे, रखते होंगे, और आप ही के माध्यम से आज हम अपने श्रोताओं तक कुछ खास जानकारियां पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले सवाल मैं आपसे अगर ये करना चाहूं कि आयकर रिटर्न फाइल क्यों करें?
2: तो सर देखिए, इसका अगर मेरे को जवाब देना हो, इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करें, उससे पहले जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है। तो इनकम आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा फॉर्म है जिसे आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास दाखिल किया जाता है। इसमें व्यक्ति या संस्था अपने पूरे वित्तीय वर्ष की आय, खर्च, टैक्स कटौती और जमा किए गए टैक्स की जानकारी देता है। इसके आधार पर सरकार तय करती है कि कितना टैक्स देना है, कितना पहले ही दिया जा चुका है या कोई रिफंड बनता है। इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल की जाती है? तो हमारे यहाँ पर जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, अभी वैसे तो चेंज हो गया है 2025, बट अभी जो आप यूज कर रहे हैं फिलहाल 1961 एप्लीकेबल है फिलहाल, तो उसका सेक्शन है 139 जो कहता है अगर आपकी इनकम सालाना 4 लाख से ज्यादा है या सैलरी वाले केसेस में 4,75,000 रुपए से ज्यादा है, 4,75,000 से ज्यादा है, तो कंपल्सरी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी।
1: सैलरी क्लास लोग जो है वो इस आईटीआर फाइल का किस तरह से लाभ ले सकते हैं?
2: देखिए, आईटीआर फाइल करने के लिए जो सैलरी क्लास वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी 4,75,000 रुपए से इनकम ज्यादा है, सैलरी कमाते हैं, तो आपको कंपल्सरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आपके लिए आईटीआर 1 या स्पेशल केसेस के अंदर अगर आपकी कुछ 2 हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा है और या कैपिटल गेन है या कोई फॉरेन एसेट्स वगैरह रखते हैं, तो आईटीआर 2 आपको फाइल करनी पड़ेगी। आप कुछ फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास, जैसे कि आप जानते हैं कि 2 स्कीम होती है, एक ओल्ड स्कीम है, एक न्यू स्कीम है आईटीआर फाइल करने की। तो 12 लाख तक आपको पता है न्यू स्कीम अगर आप ऑप्ट करते हैं, तो जो इनकी इनकम 12,75,000 रुपए सैलरी है तो न्यू स्कीम में जा सकते हैं फायदा उठाने के लिए। अनलेस अदरवाइज 25 लाख से इनकम अगर आपकी ज्यादा है, 25 लाख अगर सैलरी है आपकी या उससे ज्यादा है और आपके कुल खर्चे उसके अंदर 8 लाख तक के खर्चे हैं, तो आप ओल्ड स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। लगभग 32% अगर आप खर्चे कर रहे हैं, जैसे एचआरए वगैरह का खर्चा कर रहे हैं और आपके पास अगर एलटीए का बेनिफिट है, लीव ट्रेवल असिस्टेंस का, तो आप ओल्ड स्कीम में जाकर फायदा ले सकते हैं सैलरी क्लास वाले। अन्यथा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप न्यू स्कीम ऑप्ट करें और न्यू स्कीम में लाभ उठाएं। तो ओल्ड स्कीम में रहने की सलाह सिर्फ उन व्यक्तियों को दी जाती है जो अच्छी तरीके से टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, सिर्फ वही ओल्ड स्कीम में जाए, अन्यथा आपको ओल्ड स्कीम में जाके कोई बेनिफिट नहीं है, यू हैव टू गो फॉर न्यू स्कीम।
1: आशुतोष जी, आईटीआर फाइलिंग डेट जो है वो क्या है और कब तक आईटीआर फाइल हम लोग कर सकते हैं?
2: देखिए, इस साल से इन्होंने एक नया चेंज किया है, ये पहले तक नहीं होता था, तो ये जितने भी श्रोताएं हैं इनको मैं बताना चाहूंगा कि आपके लिए जो अगर सैलरी क्लास वाले हैं, आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं, सैलरी कमाते हैं या अदर सोर्स से इनकम है आपकी, बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, तो आप 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बट अगर आप वहीं पर बिजनेस वाले हैं, अगर आपका नॉन ऑडिट केस है, अगर आप ऑडिट नहीं करवाते, तो आप 31 अगस्त आपके लिए लास्ट डेट है, और अगर आपका ऑडिट का केस है, ऑडिट अगर आप कराते हैं, तो वो ये आपकी 31 अक्टूबर आखिरी डेट है
1: जी। तो आईटीआर फाइलिंग डेट्स के बारे में आपने बताया और इसका विकल्प जो आपने बताया कि बिजनेस क्लास लोग या सैलरी क्लास लोग जो हैं वो किस किस तरीके से लास्ट डेट के अकॉर्डिंग अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, तो लोगों को अक्सर आईटीआर फॉर्म चुनने में आशुतोष जी ये देखा जाता है कि प्रॉब्लम फील होती है, कुछ समस्या उनके सामने आती है, तो कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करें, आईटीआर 1, ITR 2, ITR 3 या ITR 4? और गलत ITR फॉर्म अगर हम भर देते हैं भूलवश तो उसका आगे क्या होगा?
2: देखिए, ITR 1, ITR 2, ITR

0: थ्री आईटीआर फोर, ये डिपेंड करता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आप सैलरीड क्लास हैं और आपकी हाउस प्रॉपर्टी अप टू दो हाउस प्रॉपर्टी हैं अगर आपकी, तो आप आईटीआर वन पे जाएंगे। अगर स्पेशल केस में आते हैं, सैलरी है, दो से ज्यादा संपत्ति है, फॉरेन एसेट है, तो आप आईटीआर टू फाइल करेंगे। आईटीआर थ्री जनरली उन लोगों के लिए होता है जो प्रॉपर अपनी अकाउंटिंग वगैरह करते हैं, और बिजनेस क्लास वाले हैं वो थ्री में जाते हैं। और अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का फायदा लिया हुआ है, जैसे 44AD, 44ADA, तो देन आप आईटीआर फोर फाइल करेंगे। गलत आईटीआर फॉर्म अगर फाइल हो गया तो क्या होगा? देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। अगर गलत आईटीआर फॉर्म फाइल हो जाए आपका, वो एक्चुअली क्या होगा, डिफेक्टिव आ जाएगा। डिपार्टमेंट उसे डिफेक्टिव घोषित कर देगा, आपको दोबारा फाइल करने के लिए कहेगा। तो इसलिए इतना ज्यादा आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिए, जैसे आप दवाई मेडिसिन वगैरह डॉक्टर की सलाह पर लेते हैं, ऐसे ही अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए किसी स्पेशलिस्ट की जरूर मदद लीजिए इसमें।
1: अच्छा, अगर उससे आईटीआर फाइल करने में अगर एक गलती हो जाती है, कमी रह जाती है, तो दोबारा वो गलती ना करे, इसके लिए हम क्या सलाह देंगे अपने?
0: तो जैसा आप कह रहे हैं सर, गलती ना करे, तो कोशिश कीजिए, देखिए डिफेक्टिव जब होता है तो वो डिफेक्टिव क्यों हुआ है, गलत आईटीआर फॉर्म आपने फाइल किया है, या कोई चीज थी जो आपने दिखानी थी नहीं दिखाई। जैसे पता लगा आईटीआर फोर आपने फाइल किया, तो उसमें कुछ चीजें होती हैं कि आपको बैलेंस शीट वगैरह थोड़ी बहुत डिक्लेरेशन उसमें आपको देनी होती है, अगर आप वो नहीं देते तो डिफेक्टिव आ जाता है। तो आप पहले तय करिए कि डिफेक्ट क्यों हुआ है, और डिफेक्ट होने के बाद उसको कैसे करेक्ट करना है, किसी की या तो आप सलाह लीजिए। और मैं तो यही कहूंगा कि ध्यान रखें कि आईटीआर एक अच्छे एक्सपर्ट से भरवाए।
1: आईटीआर हमेशा एक अच्छे एक्सपर्ट से ही भरवानी चाहिए। आशुतोष जी ने हमें सलाह दी है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और आशुतोष जी, जिस तरह से इस समय आधुनिकता का दौर है और अब AI का पैटर्न है और बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, ज्यादातर लोगों को खुद ही अपने कामों को करने के लिए प्रेरित भी किया जाता है, तो क्या आयकर के क्षेत्र में भी ऐसा कोई प्रावधान है, या ऐसी कोई सुविधा है, या ऐसा कोई जागरूकता कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हमारे आयकर दाताओं को घर बैठे कुछ सुविधा मिल सके?
0: देखिए, वैसे तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर आप अपनी कुछ जानकारी देकर आप अपनी आईटीआर विद इन 3 मिनट्स के अंदर आप फाइल करवा सकते हैं। वो आपसे एक नॉमिनल चार्जेस रुपए बोलते हैं, तो आपने सुने भी होंगे कि आईटीआर भरवाइए सिर्फ 500 रुपए में, 1000 रुपए में। देखिए, आजकल की आधुनिकता के दौर में भले ही हम बहुत ज्यादा आधुनिक हो गए हैं, बट आप किसी पे ऑनलाइन भरोसा ये नहीं कर सकते कि वो आपको प्रॉपर काम करके ठीक देगा या नहीं देगा। मेन आईटीआर के अंदर खाली फाइल करना नहीं है, आईटीआर की आफ्टर सेल सर्विस देखी जाती है। आईटीआर में बहुत चीजें हो सकती है, आपको कई बार रिक्वायरमेंट हो सकती है बार बार मांगने की। तो आप AI के जमाने में कौन व्यक्ति कैसे बैठ के आपकी आईटीआर फाइल कर रहा है, तो ये थोड़ा सा संदेह पैदा करता है।
1: गंभीरता रखनी जरूरी है
0: कि AI के जमाने में ये ना सोचे कि आपने जो कर दिया तो कर दिया और सब चीजें एकदम हो गई, फटाफट हो गई। तो मैं यही सलाह दूंगा कि जैसे आपको तबीयत खराब होती है तो AI का यूज ना करके तो आप डॉक्टर के पास जाएं तो ज्यादा बेटर है।
1: जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी क्या आयकर विभाग की ओर से क्या कोई ऐप या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक अवेलेबल होता हो एक आम आयकरदाता को?
0: देखिए, आयकर विभाग ने अपना एक छोटा सा एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है, इनकम टैक्स अच्छा। वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हैं वहां, बट वो एक बेसिक कैलकुलेटर है। आप उसमें जाएंगे और वहां जाने के बाद आप अपनी इनकम नॉर्मल डालेंगे, वो आपको अपना आप कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको टैक्स देना है या नहीं देना है। बट वो प्रॉपर नहीं है, बस वो एक आपको आइडिया देता है, पर वो खुद ही आपको फाइल करना पड़ेगा। उसके लिए ऑफलाइन यूटिलिटी आती है इनकम टैक्स की, ऑफलाइन यूटिलिटी पहले आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, या आपको जो फॉर्म्स होते हैं जैसे आईटीआर 1 है, आप खुद से सेल्फ भी आप भर सकते हैं, ऑनलाइन जाकर डायरेक्ट भर सकते हैं, बहुत सुविधाजनक है। कोई अलग से कोई वेबसाइट नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर उन्होंने नहीं बनाया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खुद का सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर आप खुद जाएंगे तो वहां पर आपको खुद ही पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस मिलेगा। जस्ट लाइक आप ये मानिए जैसे फेसबुक पेज बना रहे हो आप, ऐसा लगेगा आपको, तो उसमें इन्फॉर्मेशन आप फिल करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो स्पेशल कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं है उनका, उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है, उसमें आप कर सकते हो। और रफली अगर करना है आपको तो एक कैलकुलेटर है उनका, साइट पे मिल जाएगा, तो आप उससे भी चेक कर सकते हो।
1: जी आशुतोष जी, जैसे आयकर देना एक आयकर के दायरे में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है, हमारे देश को आर्थिक स्तर पर मजबूत बनाता है। कुछ आधारभूत स्तंभ होते हैं जिन्हें खड़ा करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: जी,
1: तो 4 लाख तक का एक दायरा तय किया गया है सरकार द्वारा कि 4 लाख से ऊपर के जो आजीविका जिनकी है वो आयकर के दायरे में आते हैं। लेकिन अगर इससे नीचे के अगर कुछ लोग हैं, चाहे वो बिजनेस क्लास लोग हों या सर्विस क्लास लोग हों या किसी और तबके के लोग हों, लेकिन उनकी आय 4 लाख से नीचे है, फिर भी अगर ऐसे लोगों से आईटीआर फाइल करने के लिए कहा जाता हो तो वो

0: क्या करें?
1: देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये ज्यादातर लोगों के अंदर एक मिथ है इस बात को लेके कि लोगों को बोला जाता है आप आईटीआर फाइल कीजिए क्योंकि आपको उससे लोन मिलेगा, आईटीआर फाइल कीजिए उससे वीजा मिलेगा। देखिए, आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है अगर आपकी इनकम 4 लाख, 4,75,000 से ज्यादा है। अब आपको उसके क्या लाभ मिलेंगे या क्या लाभ नहीं मिलेंगे, वो एक बात की बात है। पहली बात, जैसे हेलमेट पहनना कंपलसरी है अगर आप सड़क पे उतर रहे हैं, तो ऐसे ही आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है।
0: बिल्कुल।
1: बट अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम है, पर कुछ केसेस अगर देखे जाएं तो आपको कोई बाउंडेशन तो है नहीं क्या आईटीआर फाइल करना है, क्योंकि 4 लाख से कम है। बट अगर कुछ इंसिडेंट देखे जाएं तो वहां आपको जरूरत पड़ सकती है, जैसे बैंक से लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो, वीजा लेना हो, या कोई सरकारी टेंडर हो वहां पर अप्लाई करना हो, तो वहां पर आईटीआर की अनिवार्यता बोलते हैं। तो अगर आपको अनिवार्यता बोली जाती है, अगर आपको वो पर्टिकुलर कोई काम करने के लिए बोला जाता है कि आप आईटीआर फाइल कीजिए, तो देखिए फिर तो आपको आईटीआर उसमें फाइल करनी पड़ेगी। बट हाँ, ये है कि अगर आप 4 लाख से कम है तो सरकार कोई पेनल्टी नहीं लगाएगी उसकी वजह से। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक व्यक्ति की 1 करोड़ रुपए की सैलरी थी, उन्होंने आईटीआर सिर्फ इस बेसिस पे नहीं भरी कि उन्होंने कहा कि मैं क्यों भरूं, क्योंकि मैंने तो टैक्स पहले ही एडवांस जमा हो रखा है मेरा, तो आईटीआर फाइल करने की मेरे लिए क्या जरूरत है, मैं क्यों ही आईटीआर फाइल करूं। तो उनके साथ क्या हुआ, उनको कोर्ट ने आगे चल के 2017 के आसपास का केस है, 2017 में केस हुआ था, 2025 के अंदर उनको 1 साल की सजा सुनाई गई क्योंकि उन्होंने आईटीआर फाइल नहीं करी गई। ये इस वजह से किया गया जिससे लोगों को ये रहे कि अगर आपकी एक जिम्मेदारी बोली गई है तो आप एक जिम्मेदारी पूरी तरीके से उसको निभाएं। बट अगर आपकी 4 लाख तक इनकम है तो कोई अनिवार्यता सरकार की तरफ से नहीं है। बट अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो वो तो सर फिर आपको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, उसमें आप कुछ कर नहीं। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूं आपको, जैसे कहते हैं कि करंट अकाउंट खुलवाना है अगर आपको, जीएसटी होना चाहिए, ज्यादातर बैंक जीएसटी के लिए बोलते हैं। इसके लिए मैं आपको बोल सकता हूं कि जीएसटी लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको करंट अकाउंट खुलवाना है, जैसे 40 लाख का टर्नओवर नहीं है, 20 लाख का नहीं है, तो आप उसकी जगह एमएसएमई सर्टिफिकेट ले सकते हैं, एमएसएमई बनवा सकते हैं, वो कोई भी बना सकता है, इजिली 5 मिनट में बन जाता है, 5 मिनट की प्रोसेस है, तो आप उसके जरिए भी अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बट 4 लाख से नीचे पर आईटीआर फाइल करना कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको कोई बोलता है कि करवाना है तो वो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते,
0: तो इसके लिए नुकसान भी कुछ नहीं है।
1: नुकसान भी कुछ नहीं है, हमें इसमें ये लगता है कि हमें उसके पैसे देने पड़ेंगे, वकीलों को पैसे देने पड़ेंगे, सीए को पैसे देने पड़ेंगे। सर, अब सिंपल सी बात है, खाना भी खाना है और सोचें कि पैसा भी ना देना पड़े।
0: आशुतोष जी, इस समय आधार कार्ड और पैन कार्ड एक बहुत ही साउंड इफेक्ट रखता है हमारी लाइफ में, तो आईटीआर फाइल करने के दौरान आधार कार्ड और पैन कार्ड की क्या भूमिका होती है, किस किस तरह के इसका महत्व हम देखते हैं?
1: देखिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड का बेनिफिट ये है कि ये दोनों के दोनों आपस में लिंक होने चाहिए। आपको आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करना पड़ेगा। सरकार ये आज से नहीं बोल रही, काफी टाइम हो गया इसको बोलते हुए कि आप आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए अपने पैन कार्ड को। अगर आपने लिंक नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसे लिंक कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके उसकी आपको 1,000 नॉमिनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे और आप लिंक कर सकते हैं, और उसके बाद ही आईटीआर फाइल हो पाएगा, अन्यथा आप आईटीआर फाइल ही नहीं कर सकते। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि आपका जो पैन कार्ड है वो आपका इनवैलिड हो जाएगा, एक तरीके से डिफेक्टिव हो जाएगा, बेकार हो जाएगा अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है, आप उसका कोई यूज नहीं कर पाएंगे कहीं भी।
0: ये तब होगा जब हम आईटीआर फाइल करने जाते हैं?
1: नहीं, सिर्फ आईटीआर फाइल नहीं, आईटीआर फाइल नहीं किया आपने, मान लीजिए आप कहते हैं मेरी तो 3 लाख इनकम है तो मैं तो इनकम टैक्स रिटर्न भरता नहीं हूं, तो मैं फिर क्या ही करूं, पैन कार्ड मैंने पहले बनवा रखा है तो उसका मेरे को करना क्या है, यूज क्या है। तो इसमें मैं बस ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने पैन कार्ड बनवाया हुआ है और लिंक नहीं कराया, भले ही आप आईटीआर फाइल करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, उस पैन कार्ड का कोई यूज नहीं।
0: आशुतोष जी, इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में हमने काफी बातें की, अगर हम इनकम टैक्स रिफंड के बारे में बात करें तो आप हमारे श्रोताओं को क्या बारीकियां बताना चाहेंगे इस बारे में?
1: देखिए, मैं पहले डिस्क्लेमर छोटा सा बात बोलना चाहूंगा अपनी, कि हम जनरली ये सोचते हैं कि अगर आईटीआर हम भर रहे हैं तो हमें रिफंड आएगा ही आएगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे क्लाइंट कोई आता है और वो हम बोलते हैं कि यार आपका रिफंड नहीं बन पाएगा क्योंकि आपके दायरे में नहीं बैठ रहा, तो वो जनरली उनको लगता है ये झूठ बोल रहा है, इसको कुछ आता नहीं है। तो हमारे अंदर ये मिथ है इस बात को लेकर कि अगर हमारा रिफंड नहीं आ रहा तो इसका मतलब आदमी गलत है। तो सर, मैं आपको बस यही चीज कहना चाहूंगा कि अपनी आईटीआर ठीक से भरें, रिफंड के चक्कर में मत पड़ें। रिफंड तो कोई भी दिला देगा, आप चाहें तो 1 करोड़ रुपए भी रिफंड ले सकते हैं अगर आपका टीडीएस वगैरह 1 करोड़ रुपए कटा हुआ है तो, बट उसका कोई लाभ नहीं है अगर आपने उसे गलत तरीके से हासिल किया है। अगर आपके पास उसकी पूरी की पूरी जानकारी नहीं थी, अनाप शनाप तरीके से आपने खर्चे डालकर रिफंड क्लेम करने की कोशिश करी, तो आप आगे पकड़े जाएंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि जितना आपने रिफंड लिया होगा उसका आपको दुगना चुकाना पड़ेगा सरकार को। तो मैं यही कहना चाहूंगा, किसी के बहकावे में नहीं आए आप और रिफंड के चक्कर में नहीं पड़े, तो इस समय अपना योगदान करें और अपनी जिम्मेदारी समझें इस बात की और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत होने में अपना योगदान दें।
0: तो आशुतोष जी, आयकर रिटर्न के बारे में हमने तमाम तरह की सवाल से किए और आपने उसका बड़ी मजबूती से, बड़ी बारीकी से और गंभीरता से जवाब दिया। हम ये उम्मीद करेंगे कि इन जानकारियों का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे श्रोताओं को, या यूं कहें कि हमारे आयकर दाताओं को इसका लाभ जरूर मिलेगा और कहीं ना कहीं इसका योगदान हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में जरूर सामने आएगा। आप हमारे साथ आज इस स्टूडियो में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत। भेंटवार्ता में सीए आशुतोष सिंह से बातचीत कर रहे थे चरणजीत सिंह। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओ, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम का यह पहला गीत हमने लिया है फिल्म आपकी परछाइयां से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, मदन मोहन का संगीत है, गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खान।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम में श्रोताओं अब शामिल करते हैं एक और गीत। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत दिया है मदन मोहन ने और गीतकार हैं राजा मेहंदी अली ख़ान। फिल्म का नाम है नीला आकाश।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म नीला आकाश का ये गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, मदन मोहन का संगीत था, राजा मेहंदी अली ख़ान के बोल थे। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म गहरा दाग से, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, रवि का संगीत है, गीतकार हैं शकील बदायूनी।

इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:15 हुए हैं। आइए अब आपको हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

0: आज शाम 7:32 पर सुगम संगीत में हमारे श्रोता सुन सकेंगे गजलें। कलाकार होंगी सोनाली जलोटा। संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से हम ये कार्यक्रम रिले करेंगे आज शाम 8:00। हमारे केंद्र से आज रात्रि 9:30 पर प्रसारित होगी परिचर्चा। विषय होगा स्कूलों में अखबार पढ़ने की अनिवार्यता। परिचर्चा में प्रतिभाग करेंगे एजाज अहमद, अंशुल सैनी, सुनील कुमार और डॉक्टर निधि भारद्वाज। परिचर्चा का संचालन करेंगे अंकित सैनी। हमारे लखनऊ केंद्र से हम रात्रि 10:00 रिले करेंगे राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी पौड़ी की। श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश होगा आज रात्रि 10:30 पर। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा कल सुबह 6:05 पर और 6:30 पर कार्यक्रम होगा श्री रामचरित मानस गान। चिंतन का प्रसारण समय रहेगा कल सुबह 6:40 पर और 6:45 पर कार्यक्रम होगा काव्य धारा। गुरु पूर्णिमा पर विशेष काव्य पाठ काव्य धारा में सुनवाया जाएगा। स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी का विषय होगा काला मोतियाबिंद। कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा कल सुबह 7:05 पर। खेती की बातें ये कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होगा कल सुबह 7:10 पर। जानकारी का विषय होगा नकली उर्वरकों की पहचान कैसे करें। इन्फोटेनमेंट आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का प्रसारण समय रहेगा कल सुबह 7:31 पर और ज़िले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होंगी कल सुबह 9:15 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में आप सुनेंगे रागनिया। कलाकार होंगे अर्जुन सिंह और साथी। समय रहेगा कल सुबह 9:25 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा कल दिन में 11:30 पर। प्रायोजक होंगे NCERT। कार्यक्रम का आप सुन सकेंगे भाग 1338। शास्त्रीय संगीत में सितार वादन होगा। कलाकार होंगे निषाद खान। राग होगा चांदनी कल्याण। आलाप और गत 3 ताल में निबद्ध होंगे। आपके साथ तबले पर संगत करेंगे शफात अहमद खान। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:19 होने को है। अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से होगा।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, युवा कल्याण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को किया संबोधित। कहा, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार उठा रही है प्रभावी कदम। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए विभिन्न जनपदों में तैयारियां तेज। मेरठ में भारी वाहनों के लिए आज मध्य रात्रि से लागू होगा डायवर्जन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई। सदन में बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। डॉ सिंह ने कहा कि यह संशोधन विधेयक कानून को और सख्त बनाने और तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है, ताकि इन सभी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ सके।
1: स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है, 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाए। और सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर साहब की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया कि वक्त जाया ना हो तो ये जो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है इनको स्थापित करने का भी क्रम साथ ही साथ प्रारंभ किया जाए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोटों के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है। पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा है। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि त्वरित और सुगम न्याय के प्रहरी के रूप में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। श्री योगी ने कहा कि अधिवक्ताओं को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही 10 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाने के साथ ही 500 करोड़ रुपए के कॉपर्स फंड की व्यवस्था की है।
3: अधिवक्ता कल्याण निधि की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाते हुए पहले किसी विद्वान अधिवक्ता के दिवंगत होने पर मात्र 1.5 लाख मिलते थे, हमने कहा भी 1.5 लाख बहुत कम राशि है, इस राशि को हमने 5 लाख रुपया किया। हम लोगों ने इसके जो कॉर्पस फंड है इसको हमने 500 करोड़ रुपए का ही कॉर्पस फंड आपका बना दिया है। राज्य सरकार कोई भी रहे इसके ब्याज से ही सारा काम चलेगा। अब तक हम 4,000 ऐसे अधिवक्ताओं के परिवारजनों को 200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उपलब्ध करवा चुके हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 48वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के 63,183 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। अपने संबोधन में राज्यपाल ने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने, नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश शासन ने आज 15 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। तबादला सूची के अनुसार तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। अशोक मोथा डीजी फायर सर्विस बनाए गए हैं। आईपीएस मधुर अशोक जैन को पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से पुलिस महानिदेशक अग्निशमन और आपात सेवा बनाया गया है। अमरेन्द्र कुमार सिंगर को पुलिस आयुक्त लखनऊ से पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना मुख्यालय भेजा गया है, जबकि राम कुमार को लखनऊ रेंज से गोरखपुर जोन का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। नवीन अरोरा को तकनीकी सेवाओं से वाराणसी जोन और पीयूष मोडिया को वाराणसी जोन से प्रयागराज पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पवित्र सावन माह के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए आने वाली महिला कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए वाराणसी नगर निगम महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग आवास, शौचालय और फीडिंग रूम की व्यवस्था करेगा। अमरोहा में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए हाईवे पर 30 जुलाई से 28 अगस्त तक वाहनों की गति सीमित कर दी जाएगी। यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए हाईवे की एक साइड आरक्षित रहेगी। हापुड़ में भी कांवड़ यात्रा को लेकर 30 जुलाई से कांवड़ मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। मेरठ में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर भारी वाहनों के लिए यातायात परिवर्तन आज मध्य रात्रि से लागू होगा। अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन भानु भास्कर ने बताया कि हल्के और मध्यम श्रेणी के वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तन 4 अगस्त की मध्य रात्रि से लागू होगा और 12 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। मेरठ के जिलाधिकारी डॉ वीके सिंह ने बताया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी कर रहे हैं।
4: मेरठ की लगभग 222 किलोमीटर से अधिक कांवर मार्ग है, जिसमें की 8 प्रमुख मार्ग है और सभी मार्गों का वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। नगर निगम के द्वारा भी बिजली के खम्भों का इंसुलेशन का काम किया जाता है। ये सारे काम प्रगति पे हैं। इसके अलावा कांवर पटरी मार्ग जो राइट से अलावा अपर गंगा केनाल बोलते हैं, उनकी भी मेजर रिपेयरिंग हो चुकी है। जिला पंचायत के माध्यम से हम लोग पूरे मार्ग में पथ प्रकाश की व्यवस्था अच्छे से हो, पिछले विगत वर्ष में यदि कोई कमी रह गई उसको भी ठीक दुरुस्त कराते हुए वो व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं।
0: उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जनपदों को कुल 2 करोड़ तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महाअभियान में मिशन से जुड़े 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं तिरंगों का निर्माण करेंगी। इससे ग्रामीण महिलाओं को अतिरिक्त आजीविका और आय का अवसर प्राप्त होगा। वहीं प्रदेश के प्रत्येक घर तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाने के राष्ट्रीय अभियान को भी गति मिलेगी। अयोध्या, बिजनौर, संभल, सुल्तानपुर, गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर समेत आसपास के जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 3 दिनों के दौरान भारी वर्षा का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, युवा कल्याण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को किया संबोधित। कहा, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार उठा रही है प्रभावी कदम। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए विभिन्न जनपदों में तैयारियां तेज। मेरठ में भारी वाहनों के लिए आज मध्य रात्रि से लागू होगा डायवर्जन। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:32 होने को हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे सोनाली जलोटा की गाई गजलें।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

सुगम संगीत में आज आप सुन रहे हैं सोनाली जलोटा की गाई चंद गज़लें। लीजिए श्रोताओं, अब पेशे खिदमत है कार्यक्रम की ये अंतिम गज़ल।

इसी गज़ल के साथ ही आज का सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुगम संगीत सुन रहे थे। सुगम संगीत में आपने सुनी चंद गज़लें। कलाकार थीं सोनाली जलोटा। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में संसद समीक्षा होगी हमारे दिल्ली केंद्र से।

ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल ये विधेयक सदन में पेश किया था। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संसद के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। श्री सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, इसी साल पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और 2012 में एम्स नई दिल्ली की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सूची लंबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी की सिफारिश 1992 और 2010 में भी की गई थी, लेकिन पता नहीं इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का गठन

2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ही किया था। श्री सिंह ने कांग्रेस सदस्यों की ओर इंगित करते हुए कहा कि आपका अधूरा काम मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सरकार 2024 में ही विधेयक लाई थी, जिसे जून 24 में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में आज के संशोधन विधेयक के माध्यम से कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले की थी। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक अदालतें घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 5 महीने के भीतर आखिरी निर्णय देंगी, जो इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि सदस्य सरकार की प्रतिबद्धता का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस विधेयक के साथ ही कानून मंत्री ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की प्रक्रिया साथ ही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें पहले ही गठित की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर भी इनकी स्थापना होगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। श्री गोगोई ने दावा किया कि 2024 में लाया गया मूल कानून पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा था और नया प्रस्तावित कानून भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था, तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष नीट यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमाइंड को भी जमानत मिल गई। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि जब 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया था, तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इससे इंकार किया था और इस बार भी उनका रवैया वैसा ही रहा। कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा श्री प्रधान का स्वागत किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि संसद में पूर्व मंत्री का ऐसा स्वागत किया गया मानो वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। श्री गोगोई ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 लोगों को हटाए जाने की बात कही गई, जबकि संस्था में स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने ये भी सवाल किया कि जब एनटीए के महानिदेशक को बदल दिया गया तो चेयरमैन को क्यों बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसी सोच के तहत की जा रही हैं। श्री गोगोई ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और इसी कारण वे सड़कों पर उतरे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृह मंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठियां भांजने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। सुश्री स्वराज ने प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी पर ही नहीं बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, इसलिए इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं उनकी सरकार की नीयत है, इसलिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा माफिया संगठित होकर अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क बन गया है, ऐसे में ये विधेयक क्षेत्राधिकार की उलझन को सुलझाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ ही और विपक्ष के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक की समस्या केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। सुश्री स्वराज ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट को सच माने तो विपक्षी दल शासित राज्यों और 2014 से पहले कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 22 बार पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। श्री यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए।
उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी, एक प्रधान जी को हटाकर अपने भाजपा ने प्रधानमंत्री बचा लिया। सपा नेता ने कहा कि नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। श्री यादव ने कहा कि ये ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुड़ गए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं को एक रंग में रंगने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीबों के बच्चे न पढ़ पाएं। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 26,386 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए और यदि सरकार जेन जेड पर भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि ये देश सांसदों की जागीर नहीं बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कड़ा कानून जरूरी है, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो ये पर्याप्त उपाय नहीं है। श्री बनर्जी ने 2024 के लोक परीक्षा कानून में लाए गए संशोधनों के संदर्भ में कहा कि सजा बढ़ाने से सरकार की 12 वर्ष की अक्षमता खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार नए भारत की बात करती है। आज का युवा पूछता है कि अगर ये नया भारत है तो प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक के एक भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं। मारन ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं कर रही है। मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोपकर दूसरी गलती कर रहे हैं। नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए, इसे रोकिए। उन्होंने कहा कि द्रमुक ने तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं चाहिए। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री नारजारी ने बोडो भाषा में बोलना शुरू किया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण नारजारी की बात सुनी नहीं जा सकी। विपक्षी सांसदों, खासकर वाम दलों के सदस्यों ने मांग की कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां इस मांग का विरोध किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए।
कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की कि अमित शाह गृह मंत्री हैं और उन्हें सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, लेकिन शोर शराबे के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम

कृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम

बजकर 15 मिनट हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं। और कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है फिल्म फिल्म है अमर अकबर एंथोनी। किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी के बोल हैं।

श्रोताओ, अभी आपने सुना फिल्म आमर अकबर एंथोनी से ये गीत कुमार किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और गीतकार थे आनंद बख्शी। कार्यक्रम का ये गीत आइए अब सुनते हैं। फिल्म का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे। उदित नारायण की आवाज़ है, राजेश रोशन का संगीत है, गीतकार हैं देव कोहली।

ही मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण को। फिल्म थी आप मुझे अच्छे लगने लगे, राजेश रोशन का संगीत था, गीतकार थे देव कोहली। इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 8:30 होने को हैं। अब प्रस्तुत है एक और फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुनने वाले सभी श्रोताओं को फैजुर रहमान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं एक फिल्म और सुनवाते हैं उसी फिल्म के कुछ नगमे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ष 1982 में प्रदर्शित फिल्म निकाह के कुछ गीत। फिल्म निकाह B.R. चोपड़ा द्वारा निर्मित और निर्देशित रही। ये एक सुपरहिट हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। फिल्म में राज बब्बर, दीपक पाराशर और सलमा आगा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और तलाक के संवेदनशील विषय पर आधारित रही। फिल्म 24 सितंबर सन 1982 को रिलीज हुई। फिल्म के गीतों के लिए संगीत तैयार किया था रवि ने और गीत लिखे थे हसन कमाल ने। फिल्म की शुरुआत में ही सलमा आगा की मौजूदगी ने इस फिल्म को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया और सलमा आगा इस फिल्म के माध्यम से रातों रात स्टार बन गई। फिल्म में लोकप्रिय गाने रहे दिल के अरमां आंसुओं में बह गए और चेहरे पे आपके प्यार के। फिल्म बेहतरीन नगमों के लिए आज भी जानी जाती है। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये गीत। सलमा आगा की आवाज़ में रवि का संगीत है, हसन कमाल के बोल हैं।

और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में ये वो नगमा जिस गीत के लिए सलमा आगा को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ गायिका पुरस्कार मिला।

0: अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म के गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज आपने सुने वर्ष 1982 में प्रदर्शित फिल्म निकाह के कुछ गीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 8:45 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही

0: सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है, ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
4: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
5: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। FIR वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
6: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग

0: भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहाँ चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
0: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
1: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
2: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार,
1: भुवनेश्वर। केरल के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम्पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha discussing bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. Government says new legislation reflects resolve to protect students' future. Opposition stresses on wider reforms. Supreme Court orders release of minor students arrested during protests on NEET paper leak issue. Maharashtra, Bihar and Assam orders withdrawal of cases against students. 20 people killed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir in firing on protesters. India terms so-called assembly polls in POJK a cosmetic exercise to camouflage illegal occupation. Industrial output growth hits 23-month high of 7.3% in June. Odisha faces flood fury as heavy rains swell major rivers. Red alert for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Vidarbha region for next 2 days. And at ISSF Shooting World Cup, Indian pair of Sonam Uttam Maskar and Himanshu Dhillon clinch bronze medal in 10-meter air rifle mixed team event. And now the news in detail. The Lok Sabha is holding discussion on the bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. The bill seeks to amend the public examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, said the new legislation reflects government's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the youth of the country.
6: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being...

0: points to close at 76,766. The Nifty dropped 11 points to settle at 23,985. On to sports. In shooting, Indian pair of Sonam Uttamaskar and Himanshu Dhillon secured the bronze medal in the 10-meter air rifle mixed team event at the ongoing ISSF World Cup in Hangzhou, China today. With this, India's medal tally at the tournament has risen to 4, including 1 gold, 1 silver and 2 bronze. At the Commonwealth Games, India's Srihari Natraj qualified for the semi-final of men's 100-meter backstroke swimming competition at Glasgow in Scotland today. Athlete Vishal TK progressed to the semi-finals of men's 400-meter race. Para-swimmers RVBK Budijina and Ali Imam also qualified for the men's 50-meter freestyle S13 final. India is currently placed at the 8th position in the overall standings with 10 medals, including 2 gold, 5 silver and 3 bronze. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha discussing bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. Government says new legislation reflects resolve to protect students' future. Opposition stresses on wider reforms. Supreme Court orders release of minor students arrested during protests on NEET paper leak issue. Maharashtra, Bihar and Assam orders withdrawal of cases against students. 20 people killed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir in firing on protesters. India terms so-called assembly polls in POJK a cosmetic exercise to camouflage illegal occupation. Industrial output growth hits 23-month high of 7.3% in June. Odisha faces flood fury as heavy rains swell major rivers. Red alert for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Vidarbha region for next 2 days. At ISSF Shooting World Cup, Indian pair of Sonam Uttamaskar and Himanshu Dhillon clinch bronze medal in 10-meter air rifle mixed team event. That is all in the news at 9. Good night.
1: लोकसभा में उस बिल पर बहस जारी है जिसमें पेपर लीक मामले में सख्त सजाएं और फास्ट ट्रैक अदालतों के क्याम की तजवीज है। हुकूमत ने कहा है कि ये नया कानून तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज की खातिर उसके अज़्म की अक्कासी करता है, जबकि अपोजिशन ने तालीमी निजाम में वसी तर इस्लाहात पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए कम उम्र तलबा की रिहाई का हुक्म दिया है। महाराष्ट्र, बिहार और आसाम की हुकूमतों ने तलबा के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर फायरिंग के दौरान 20 अफराद हलाक हो गए। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद असम्बली इंतखाबात उसके गैर कानूनी कब्जे को छुपाने के लिए महज एक दिखावा है। जून के महीने में सनअती पैदावार की शरह तरक्की पिछले 23 महीनों की बुलंदतरीन सतह 7.3% हो गई। ओडिशा में शदीद बारिश के सबब बड़े दरियाओं में तुगयानी आने की वजह से सैलाब की संगीन सूरतेहाल पैदा हो गई है। अगले 2 रोज के दौरान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ खित्ते के लिए इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएसएसएफ निशानेबाजी वर्ल्ड कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी है। ये बिल पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। ये कानून सख्त जुर्माने जैसे 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और कसूरवार करार दिए गए मुजरिमों की जायदाद जब्ती जैसे अहम इल्तजाम का इजाफा करेगा। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पेश करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के हालिया वाकयात का नोटिस लेते हुए फैसला किया कि इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। डीएमके के दयानिधि मारन ने बहस में हिस्सा लेते हुए दावा किया कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट मरकजी मौजू है जो यकसा नहीं है और तलबा मुखालिफ है। کانگریس رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈا نے حکومت پر طلبہ کے مفادات کے تحفظ میں ناکام رہنے اور نظام تعلیم کو کمزور کرنے کا الزام لگایا. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ طلبہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے. محترمہ گاندھی نے مزید کہا کہ نوجوان نظام تعلیم میں اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں اور جواب دہی طے کرنا چاہتے تھے. بی جے پی رکن پارلیمنٹ بانسری سوراج, ٹی ڈی پی کے لابو سری کرشنا, شیو سینا کے ڈاکٹر شری کانت شندے, سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو اور دیگر اراکین پارلیمنٹ نے بحث میں حصہ لیا. راجیہ سبھا کی کارروائی نیٹ معاملے پر طلبہ کے مظاہروں کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر اپوزیشن کے ہنگامے کے بعد دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. پہلی مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد راجیہ سبھا کی کارروائی جب دوپہر دو بجے دوبارہ شروع ہوئی تو مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ ترمیمی بل 2026 کو متعارف کرایا. بل کے تعارف کے دوران اپوزیشن اراکین نے طلبہ کے خلاف پولیس کی مبینہ کارروائی پر نعرے بازی شروع کر دی. ہنگامہ آرائی جاری رہنے پر راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نے ایوان کی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی. سپریم کورٹ نے آج کہا کہ نیٹ پیپر لیک کے خلاف حالیہ ملگیر احتجاج کے دوران طلبہ اور پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کے الزامات کی مکمل منصفانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ضروری ہیں. عدالت نے یہ بھی ہدایت دی کہ احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے ایسے کم عمر طلبہ جن کا کوئی سابقہ مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے انہیں رہا کیا جائے. سپریم کورٹ نے حکام کو ہدایت دی کہ احتجاج سے متعلق تمام الیکٹرانک اور ڈیجیٹل شواہد محفوظ رکھے جائیں. چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی میں تین رکنی بینچ ان درخواستوں کی سماعت کر رہی تھی جن میں احتجاج کے دوران پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر ضرورت سے زیادہ طاقت استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا ہے. عدالت عالیہ نے کہا کہ تحقیقات میں ان 200 سے زیادہ زخمی پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ کے خدشات کو بھی ملحوظ رکھا جانا چاہیے. سپریم کورٹ نے ان تمام ریاستوں کو جہاں احتجاج ہوئے ہدایت دی کہ وہ احتجاج سے متعلق سی سی ٹی وی فوٹیج, ڈرون ریکارڈنگ, باڈی کیمروں کی فوٹیج, وائرلیس مواصلاتی ریکارڈ, پی سی آر لاگس اور دیگر تمام ڈیجیٹل شواہد محفوظ رکھیں. عدالت عالیہ نے یہ بھی حکم دیا کہ احتجاج کرنے والے طلبہ سے متعلق اکٹھا کیا گیا تمام ڈیجیٹل ڈیٹا محفوظ رکھا جائے تاہم اسے عوامی سطح پر جاری نہ کیا جائے. بینچ نے دلی حکومت کو درج ایف آئی آر کی تحقیقات جاری رکھنے کی اجازت دی لیکن یہ بھی واضح کیا کہ عدالتی کارروائی مکمل ہونے تک احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ کی جائے. اس کے علاوہ بینچ نے دلی, مہاراشٹر, بہار, کیرلا, مدھیہ پردیش اور اتر پردیش کے چیف سیکرٹریز سے بھی درخواستوں میں عائد کیے گئے الزامات پر جواب طلب کیا. مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے داخلی امور کے ریاستی محکمے کو ہدایت دی ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر ریاست بھر میں حال ہی میں مظاہرہ کرنے والے طلبہ کے خلاف سبھی درج معاملے واپس لے لے. ایف آئی آر واپس لینے کا عمل متعلقہ عدالتوں سے اجازت ملنے کے بعد شروع ہوگا. ممبئی, پونے, ناگپور اور چھترپتی سمبھاجی نگر جیسے اہم شہروں میں احتجاج ہوئے تھے. یہ قدم مرکز کی اس گارنٹی سے مطابقت رکھتا ہے کہ مظاہروں میں شامل طلبہ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی. بہار اور آسام کی ریاستی حکومتوں نے ان لوگوں کے خلاف معاملات اور دیگر قانونی کارروائی واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے جو مبینہ طور پر نیٹ یو جی امتحان میں بےضابطگیوں کے سلسلے میں احتجاج میں شامل ہوئے تھے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج اپنی صدارت کے 4 سال مکمل ہونے کے موقع پر راشٹرپتی بھون میں کتابوں کے اجرا کی ایک خصوصی تقریب کی صدارت کی. اس موقع پر نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے 5 یادگاری کتابوں کا اجرا کیا. اپنے خطاب میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ صدر کا آئینی عہدہ محض ایک اعزاز نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا کہ راشٹرپتی بھون تک پہنچنا ان کے ذاتی خوابوں سے بھی بڑھ کر ہے. حکومت نے 1 اگست سے 30 نومبر تک ملک بھر میں چینی کے تاجروں کے لیے ذخیرہ کرنے کی حد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. صارفین کی امور, خوراک اور سرکاری نظام تقسیم کی وزارت کے مطابق اس اقدام کا مقصد ذخیرہ اندوزی کو روکنا, قیاس آرائی پر مبنی تجارت کی حوصلہ شکنی کرنا اور مناسب قیمتوں پر چینی کی مسلسل دستیابی کو یقینی بنانا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد قانون ساز اسمبلی انتخابات کو پاکستان کے غیر قانونی قبضے سے دنیا کی توجہ ہٹانے اور خطے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کی کوشش قرار دیا ہے.
2: آج دوپہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے انتخابات کو محض دکھاوا قرار دیا.
3: ہم نے پاک ادھکرت کشمیر میں سو کالڈ الیکشنز کے بارے میں خبریں دیکھی ہے. اس مسئلے پر بھارت کا پکش صاف اور نرنتر رہا ہے. جموں کشمیر لداخ جو کہ کیندر شاست پردیش ہیں ان کا پورا بھوبھاگ بھارت کا ابھن اور اوچھید انگ ہے. وہاں چل رہے لیپا پوتی والے الیکشن پاکستان دوارا جموں کشمیر کا اپنے اویدھ قبضہ اور وہاں کے لوگوں کا مانو ادھیکار کا ہنن کچھ چھپانے کا پریاس ہے.
2: کل راولا کوٹ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے منعقدہ ایک طویل مارچ کے دوران پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کی, جس کے بعد پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کم سے کم 20 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے. خبروں کے مطابق کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے, جس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھنے کا اندیشہ ہے. صنعتی پیداوار کے اشارے IIP کے ذریعے پیمائش کردہ بھارت کی صنعتی پیداوار اس سال جون کے مہینے میں 23 مہینوں کی بلند ترین سطح 7.3% ہو گئی ہے. حکومت کی جانب سے آج جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق چار اہم شعبوں نے جون کے مہینے میں مثبت نمو کا مظاہرہ کیا. اشارے میں سب سے زیادہ حصہ رکھنے والے مینوفیکچرنگ کے شعبے نے 7.8%, بجلی اور گیس فراہمی کے شعبے نے 10.6% نمو کا مظاہرہ کیا. وہیں پانی کی فراہمی, نکاسی اور فضلے کے بندوبست کے شعبے کی نمو 6.1% رہی. تاہم کانکنی اور کھدائی کے شعبے نے نسبتاً 1% کی معتدل شرح نمو کا مظاہرہ کیا. اڈیشا میں مانسون کی شدید بارش کے پیش نظر ریاست بھر میں اہم دریاؤں میں طغیانی آنے کے بعد سیلاب کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. بہترانی دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے, جبکہ مہاندی میں بھی پانی کی سطح بڑھ گئی ہے, جس کی وجہ سے اس سے متاثر ہونے والے اضلاع میں تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے. IMD نے 4 ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ اور دیگر 13 کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے, اور حساس مقامات پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی فورس تعینات کر دی گئی ہے. مزید تفصیل ہمارے نام نگار سے.
4: اڈیشا میں مانسون کی شدید بارش کے سبب اہم دریاؤں میں پانی کی سطح میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے, جس سے مختلف نشیبی علاقوں میں خدشات بڑھ گئے ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے مغربی اڈیشا کے سندر گڑھ, سنبل پور, بارگڑھ اور جھارسو گڑا کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے, اور قدرتی آفات سے نمٹنے والی ٹیمیں تعینات کر دی ہیں. بچاؤ اور ہنگامی صورتحال سے متعلق تیاریوں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے. احتیاط اقدامات کے تحت کچھ ضلعوں میں کل سکول بند رہیں گے, جبکہ کچھ حصوں میں ریل خدمات بھی متاثر رہ سکتی ہیں. ریاستی حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور سبھی ضروری احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں. بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
2: ریاست کیرلم کے 10 ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. مزید تفصیل ہمارے نام نگار سے.
5: ریاست کیرلم کے 14 میں سے 10 ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. شام تک 4 مزید ضلعوں میں بھی اس وارننگ کو جاری کر دیا گیا ہے. پورے کیرلم میں اگلے 4 دن کے دوران شدید بارش کا امکان ہے. ترونتپورم سے سمیتی ایم پلوروتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی.
2: اس دوران بھارتی موسمیات محکمے نے آئندہ 2 روز کے دوران چھتیس گڑھ, مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ خطے میں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. IMD نے اس ماہ کی 31 تاریخ تک دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ, ہماچل پردیش, پنجاب, اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کے محکمے نے کل کے لیے جموں کشمیر, لداخ, جھارکھنڈ, اتر پردیش, مدھیہ مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. جاپان کے جنوبی صوبے کوماموٹو میں 7.1 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا ہے, جس کے نتیجے میں ہزاروں گھروں کی بجلی گل ہو گئی, سڑکیں ٹوٹ گئیں اور کم سے کم 50 افراد زخمی ہو گئے. اطلاعات کے مطابق کئی افراد جزوی طور پر منہدم ہونے والے ایک شاپنگ مال میں پھنس گئے. جاپان کے قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والے ادارے نے تقریباً 3,00,000 لوگوں کو محفوظ پناہگاہوں میں منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے. حکام نے اریاک سمندر میں اور کے ساحلی علاقوں کے لیے سونامی سے متعلق ایڈوائزری بھی جاری کی ہے. شوٹنگ میں آج چین کے ہانگزو میں جاری ISSF عالمی کپ میں 10 میٹر ایئر رائفل مکس ٹیم مقابلے میں سونم اتم مسکر اور ہمانشو ڈھلوں کی بھارتی جوڑی نے کانسے کا تمغہ جیتا. اس کے ساتھ ہی ٹورنامنٹ میں بھارت کے تمغوں کی تعداد بڑھ کر 4 ہو گئی ہے, جن میں سونے کا 1, چاندی کا 1 اور कांसे के दो तमगे शामिल हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत के श्री हरि नटराज ने आज 100 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया। नटराज अपनी हीट में 5वें मकाम पर रहे जबकि मजमूई तौर पर वो 13वें मकाम पर रहे। उन्होंने 55 मिनट 58 सेकंड में ये कामयाबी हासिल की। भारत के पैरा तैराकों ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आरवी के बीडीगिना और अली इमाम ने मर्दों के 50 मीटर फ्री स्टाइल S13 फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा में उस बिल पर बहस जारी है जिसमें पेपर लीक मामले में सख्त सजाएं और फास्ट ट्रैक अदालतों के क्याम की तजवीज है। हुकूमत ने कहा है कि ये नया कानून तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज के खातिर उसके अज़्म की अक्कासी करता है, जबकि अपोजिशन ने तालीमी निजाम में वसी तर इस्लाहात पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए कम उम्र तलबा की रिहाई का हुक्म दिया है। महाराष्ट्र, बिहार और आसाम की हुकूमतों ने तलबा के खिलाफ दर्ज मामलात वापस लेने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर फायरिंग के दौरान 20 अफराद हलाक हो गए। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नाम नहाद असम्बली इंतखाबात उसके गैरकानूनी कब्जे को छुपाने के लिए महज एक दिखावा है। जून के महीने में सनती पैदावार की शरह नमू पिछले 23 महीनों की बलंतरीन सतह 7.3% हो गई है। ओडिशा में शदीद बारिश के सबब बड़े दरियाओं में तुगयानी आने की वजह से सैलाब की संगीन सूरतेहाल पैदा हो गई है। अगले दो रोज के दौरान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ खित्ते के लिए इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएसएसएफ निशानेबाजी वर्ल्ड कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम मुकाबले में कांसे का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
6: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है परिचर्चा। विषय है स्कूलों में अखबार पढ़ने की अनिवार्यता। परिचर्चा में प्रतिभाग कर रहे हैं एजाज अहमद, अंशुल सैनी, सुनील कुमार और डॉक्टर निधि भारद्वाज। परिचर्चा का संचालन करेंगे अंकित सैनी।
7: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। जैसा कि सभी को विदित है कि पिछले कुछ दिनों से आप लोग एक न्यूज, एक समाचार विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, आकाशवाणी समाचारों के माध्यम से सुन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें के सभी स्कूल और इंटर कॉलेज अपने विद्यालयों को अखबारों का पाठन कराएंगे। तो उसके पीछे सरकार की क्या मंशा है या विद्यालयों को और विद्यार्थियों को उससे क्या लाभ होगा, इस विषय पर आज हम अपने आकाशवाणी स्टूडियो में परिचर्चा कर रहे हैं। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए आज आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं एजाज अहमद जी, मीडिया के हमारे कर्मचारी, सुनील कुमार जी, GIC नजीबाबाद के प्रभारी प्रधानाध्यापक, अंशुल कुमार जी, PM श्री कंपोजिट स्कूल आलमसराय नजीबाबाद से, और विवेक यूनिवर्सिटी बिजनौर से हमारे साथ स्कूल ऑफ एजुकेशन विभाग से डॉक्टर निधि भारद्वाज जी आज हमारे साथ इस परिचर्चा में मौजूद हैं। सभी का स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार ने एक आदेश अभी हाल फिलहाल में पारित किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में, चाहे वो प्राइमरी हो या इंटर कॉलेज हो, माध्यमिक हो, सभी में अखबारों के पठन पाठन को अनिवार्य कर दिया गया है। तो क्या उसके पीछे सरकार की मंशा है, किस प्रकार से विद्यालयों को, छात्रों को उसका लाभ मिलेगा, सबसे पहले जान लेते हैं हमारे मीडिया सहयोगी, मीडिया कर्मचारी एजाज अहमद जी से कि ये जो आदेश पारित हुआ है इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है, किस प्रकार से विद्यालयों को ये लागू करना होगा और क्या क्या प्रावधान इसमें, इस आदेश में किए गए हैं।
8: अपर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और माध्यमिक ने अभी हाल ही में एक शासनादेश जारी किया है। इस शासनादेश के अनुसार जूनियर स्कूल, माध्यमिक स्कूल या सभी माध्यमों से जो स्कूल चलते हैं उनमें अखबार पढ़ने की अनिवार्यता निश्चित की गई है और उसके पीछे सरकार की स्पष्ट मंशा है कि बच्चों को किस तरह से अखबार के प्रति उनका रुझान पैदा किया जाए, क्योंकि कई ऐसे दूरगामी परिणाम आ रहे थे। खासतौर से आप देखिए, डिजिटल दौर है, स्क्रीन टच में बच्चे जा रहे थे और चीजें, तो सरकार ने कई बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को लिया है कि बच्चों में किस तरह से उनमें नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक विकास किया जाए। जहां तक शासनादेश का प्रश्न है, 10 मिनट तक जो असेंबली होती है स्कूलों में, उसमें ये अखबार पढ़े जाएंगे। अखबार में पढ़ने के लिए उन्होंने खासतौर से गाइडलाइन दी है कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समाचार होंगे, प्रमुख मुद्दे होंगे, संपादकीय होंगे, तो उसको टीचर्स अध्ययन करके बच्चों के सामने रखेंगे। बच्चों में जो अखबार के प्रति दूरी बनी हुई है, उसको नजदीकियां लाने का भी एक फैसला लिया गया है। और इसमें स्पेशल जो 5 मिनट दिए गए हैं, वो शब्द, जो कठिन शब्द अखबार के होते हैं, उसकी चर्चा होगी। वो बोर्ड पर लिखे जाएंगे, तो बोर्ड पर जब शब्द लिखे जाएंगे तो बच्चे उसके अर्थ से परिचित होंगे, बच्चे उसके शब्द बोलने से परिचित होंगे। तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर सरकार ने ये एक नया शासनादेश जारी किया है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही जरूरी था समय को देखते हुए।
7: जैसा कि एजाज जी आपने बताया कि छात्रों के बौद्धिक, चारित्रिक और भाषाई विकास के लिए ये फैसला बहुत स्वागत योग्य है, तो जो हमारे प्राइमरी या बेसिक स्कूल्स हैं, क्योंकि वही एक फाउंडेशन है किसी छात्र के विद्यार्थी जीवन की, तो अंशुल जी, क्योंकि आप एक कंपोजिट विद्यालय के अध्यापक हैं, तो ये जो फैसला है कि जो दूरी आजकल के विद्यार्थी या कहें कि सीधा सा यूथ के बीच में और अखबारों के बीच में जो एक खाई बन गई है, दूरी बन गई है, तो कंपोजिट विद्यालयों में ये फैसला लागू होने से किस प्रकार से वो दूरी हम पाट सकते हैं, किस प्रकार से ये फैसला उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा?
9: देखिए, शासन ने जो निर्देश दिए हैं कि हमारे जो बेसिक स्कूल हैं और माध्यमिक स्कूल हैं, उनमें समाचार पत्रों के पठन की अनिवार्यता उसमें कर दी गई है। और जहां तक मैं इसको बेसिक स्कूल के संदर्भ में देखता हूं, जहां मुख्यतः कक्षा 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें समाचार पठन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि उससे बच्चों की जो भाषा कौशल है उसका विकास होगा, क्योंकि कक्षा 8 तक के बच्चे मुख्यतः अपने किताबी ज्ञान पर भी निर्भर रहते हैं, और विशेषतः जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं उन्हें बाहर की दुनिया की उतनी जानकारी नहीं रहती। तो समाचार पठन पाठन का सबसे बड़ा फायदा जो बेसिक स्कूल के बच्चों को होने वाला है, उसमें उनकी भाषा कौशल का विकास और उनको अपने आसपास, अपने गांव, अपने शहर, अपने जो समाज है उसकी जानकारी से वो अवगत होंगे, जिससे कि उनके आत्मविश्वास में भी बहुत ज्यादा वृद्धि होगी।
7: तो ये कहीं ना कहीं जो एक फाउंडेशन होती है विद्यार्थी जीवन की, तो उसके लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, जो कि आगे चलकर उसके इंटर कॉलेज या फिर कहें कि उसके डिग्री कॉलेज में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके करियर निर्माण के लिए। तो सुनील कुमार जी, जैसे कि आप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, प्रभारी, तो आप इस फैसले से किस प्रकार की जो एक विद्यार्थी जीवन में इंटर कॉलेज में, अगर आप जब आपके यहाँ पे संभवतः फैसला जो शासन का आया है, आदेश आया है, ये लागू हो गया होगा, उससे अभी तक आपने क्या परिवर्तन विद्यार्थियों में देखा है पिछले इन कुछ दिनों में?
10: दिसंबर के महीने में ही गवर्नमेंट का सर्कुलर जारी हुआ है कि प्रत्येक विद्यालय में 2 न्यूज़पेपर, एक हिंदी का और एक अंग्रेजी का कंपलसरी कर दिया गया है कि विद्यार्थी उसको पढ़े। जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं उसके बच्चे कंपटीशन भी देते हैं
7: जी।
10: तो न्यूज़पेपर पढ़ने से उनकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी और साथ ही उसको आसपास के जो इवेंट घटित हो रहे हैं शासन में या देश विदेश में उनकी भी जानकारी होगी, तो बच्चे निश्चित ही लाभान्वित होंगे और हमने अपने विद्यालय में शुरू भी कर दिया है।
7: अच्छा सर, जैसे बात आई अभी के द्विभाषीय, मतलब हिंदी का भी और इंग्लिश का भी जो न्यूज़पेपर है उसकी अनिवार्यता हर विद्यालय में, स्कूल में, इंटर कॉलेज में की गई है। जो हमारे यहाँ, जो हमारा एक हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो इंग्लिश के शब्दों की अगर हम बात करें कि उसका जो भाषाई ज्ञान है, जो शब्दों की उसकी पावर है, वर्ड पावर जिसको बोलते हैं, वो बढ़ेगी। तो अभी तक जैसे अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो विद्यार्थियों में उसके प्रति कितनी रुचि दिखाई देती है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं या हमारी वर्ड पावर बढ़ी है?
10: जो इंटरमीडिएट के बच्चे होते हैं, नॉर्मली 12वीं क्लास के, वो संक्रमित तेज में होते हैं, मतलब बचपन से स्कूली शिक्षा से वो फाइनेंशियल जो होते हैं प्रोफेशनल कोर्स उसमें जा रहे होते हैं, तो उनके लिए इंटरमीडिएट के बाद तो सब कुछ अंग्रेजी में ही हो जाता है। तो अंग्रेजी के अखबार आने से उनकी अंग्रेजी की भी तैयारी सर हो जाती है, जिससे वो अंग्रेजी के वर्डों का अच्छा खासा ज्ञान हो जाता है, और जो आगे जो उनके सामने चुनौती आने वाली है अंग्रेजी वाली, वो उससे निश्चित ही लाभान्वित होते हैं। तो हमारे विद्यालय में तो दोनों तरीके के पेपर हैं और बच्चे बढ़ चढ़ के उसमें भाग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसको
7: जी।
10: उससे बच्चों की इंग्लिश की नॉलेज भी बढ़ रही है और शब्दों का ज्ञान, उच्चारण, वर्तनी, सब किसी चीज में सुधार हो रहा है। और जो न्यूज़पेपर आते हैं उसके हेडलाइंस हमारे जो विद्यालय में जो असेंबली होती है उसमें पढ़ के सुनवाए जाते हैं, बच्चों के ही द्वारा सुनवाए जाते हैं, तो निश्चित तौर पे ही सर बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। और क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे अपना टाइम स्क्रीन पे व्यतीत करते हैं, स्कूल में तो अलाउड नहीं होता
7: जी
10: मोबाइल फोन जिससे कि वो स्क्रीन पे रहे, परंतु तो उन्हें नॉलेज कैसे हो, अखबार के माध्यम से अखबार पढ़ेंगे तो उनको जानकारी होगी कौन कौन से कंपटीशन हो रहे हैं, कैसे कैसे स्पोर्ट्स हो रहे हैं, भारत के उसमें क्या हालात हैं, इकोनॉमिक कैसी है।
7: जी सुनील कुमार जी, पहले हम बात कर लेते हैं वही भाषाई शैली विकास की। तो हमारे साथ डॉक्टर निधि भारद्वाज जी हैं विवेक विश्वविद्यालय बिजनौर से। तो मैम, जैसे कि जब एक विद्यार्थी इंटर कॉलेज के बाद डिग्री कॉलेज में आता है फिर अपने आगामी करियर की शुरुआत करता है, तो भाषाई शैली विकास जो होगा उसका इस शासनादेश के तहत, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं कि उसके करियर निर्माण के लिए उसके जो डिग्री की क्वालिफिकेशन है उसमें किस प्रकार से वो लाभप्रद होगा ये फैसला?
11: ये फैसला एक अच्छा होगा कदम, क्योंकि आपका प्रश्न भी बहुत अच्छा है। जब बच्चे स्कूलों से निकलकर डिग्री कॉलेज तक पहुंच रहे हैं तो ये अखबार को पढ़ने की परंपरा का निर्वहन जैसे पुराने समय में होता था एक अच्छी पहल है, क्योंकि अखबारों की जो सुर्खियां होती हैं उसमें बच्चे बहुत ध्यान से न केवल पढ़ते हैं बल्कि उसको लिख भी सकते हैं, और स्क्रीन टाइम जैसे अभी सर ने कहा था कम हो गया है, तो उससे बच्चे जब दिन भर अभी मोबाइल से दूर रहेंगे तो करंट चीज पढ़ने के लिए अखबार एक अच्छा साधन है। और कॉलेज में आने के बाद जब हम, जैसे कि एजाज सर ने बताया था, कुछ संपादकीय पढ़ने हैं, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय खबरें पढ़नी है, तो उनको जब प्रेजेंटेशन बच्चे देते हैं तो बखूबी अच्छा प्रेजेंट करते हैं, तो उनकी वोकैब बढ़ती है, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, और जो नए लोगों के नाम वो फ्रंट पेज पर देखते हैं तो क्योंकि युवा बच्चे होते हैं उनसे वो इम्प्रेस होते हैं और कोशिश ये करते हैं कि नेक्स्ट एक अच्छे प्रेजेंटर वो हो, एक अच्छा नाम उनका आए, उनके विद्यालय का नाम हो, उनके डिग्री कॉलेज का नाम हो और उनके परिवार का नाम होने के साथ साथ देश के लिए कुछ करें। तो न्यूज़पेपर रीडिंग न केवल अध्ययन की क्षमता को बढ़ाता है बल्कि बच्चों के मानसिक स्तर को बढ़ाता है। डिग्री कॉलेज में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत काम तत्परता से होते हैं, कॉम्पिटिशन का समय है आप जानते हैं, तो उसमें बच्चों को हर तरह से नॉलेज लेकर एक अच्छा स्टूडेंट न केवल स्थापित होना है बल्कि एक अच्छा राष्ट्र निर्माता बनने के लिए एक अच्छी एजुकेशन को भी दिखाना है।
7: बिल्कुल निधि, आपने कहा कि उसका मानसिक विकास होगा, शैक्षिक विकास होगा, बौद्धिक भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम आज के परिवेश को देखें, समाज को देखें, तो एक मानवीयता से दूर होते जा रहे हैं हम लोग। तो ये जो फैसला है, शासनादेश है जो सरकार का, एजाज जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सामाजिक पहलुओं को विद्यार्थी जीवन से किस प्रकार जोड़ा जाएगा इस फैसले के द्वारा?
8: अंकित जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सामाजिक पहलू से जोड़ने की जहां तक बात है, ये शासनादेश में भी इसको इंगित किया गया है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आजकल अखबारों से दूर हो गए हैं, और अखबारों से जब दूर बच्चा हो जाएगा तो उन्हें समाज में क्या हो रहा है, किस तरह की एक्टिविटी है, अखबारों में क्या कहानी आ रही है, क्या पहेली आ रही है, क्या साहित्यिक वो आ रही है, तो कई सारी चीज़ें जो बच्चे हैं वो इसके प्रति आकर्षित होंगे, उसे पढ़ेंगे, तो इसके पढ़ने का एक साफ संदेश समाज को जाएगा कि बच्चा समाज से जुड़ेगा। आज स्क्रीन टच को देखते हुए बच्चा समाज से दूर हो रहा है। समाज से दूर होने का सीधा है कि अखबारों में आप देख रहे हैं कि विभिन्न कॉलम आते हैं, महिला जगत आता है, बच्चों का कॉलम आता है, खेल का आता है, साहित्यिक का आता है, तो ये बच्चे ये चीज़ें स्क्रीन टच के दौरान बच्चों को ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रही। तो अखबार से जब बच्चा जुड़ेगा निश्चित रूप से वो सामाजिक दायित्वों के प्रति भी गंभीर होगा। और ये जो अखबारों में देखिए, अब जैसे आपने देखा होगा इसमें खास तौर से ये इंगित किया गया है कि साप्ताहिक जो पहेलियां आती हैं, साप्ताहिक जो इसमें सुडोकू आते हैं और जो आते हैं, इसके प्रति बच्चों में ज्ञान डेवलप हो, और जब ज्ञान डेवलप होगा तो बच्चा रोजगार से जुड़ेगा, बच्चा बाहर निकलेगा, समाज के दायरे से जुड़ते हुए वो अपने कैरियर को भी निखार सकता है।
7: अच्छा, जैसे आपने कहा कि जो स्क्रीन का समय है, जैसे कि आजकल हम सभी लोग देखते हैं कि छात्री क्या या कोई बुजुर्ग ही क्या कोई या कोई नौकरी पैसा भी हो, जब भी उसको समय मिलता है वो झट से अपना मोबाइल निकाला और उसकी स्क्रीन पर समय व्यतीत करता है। तो अंशुल कुमार जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो स्क्रीन समय है उस समय को कम करने के लिए इस शासनादेश के तहत किस प्रकार से विद्यार्थियों की सहायता हो सकती है या टीचर उसमें किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं?
9: देखिए, ये बात तो सभी परिचित हैं कि आजकल जो हैं बच्चे पुस्तकों से और किताबों से बहुत दूर हो गए हैं और अपना अधिकांश समय मोबाइल पर ही व्यतीत करते हैं। जिससे न उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है बल्कि उनके एकाग्रता और उनके संयम में भी कमी आती है, क्योंकि मोबाइल पर आपको कुछ देखना हो आपको अपने मस्तिष्क पर जोर नहीं डालना पड़ता, सेकंडों में आप कुछ भी टाइप करें कुछ भी बोलें आ जाता है। समाचार पत्र हम पढ़ते हैं तो उससे ना केवल हमारे अंदर एकाग्रता आती है बल्कि हमारे अंदर जो बच्चों के अंदर धैर्य और संयम का गुण है उसका भी विकास होता है। प्राय देखा जाता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो रुचि नहीं लेते हैं पढ़ने लिखने में। इसका सबसे अच्छा उपाय है बच्चों के अंदर हमें अगर समाचार पत्रों के प्रति रुचि पैदा करनी है उनकी रुचि की खबरों को सबसे पहले पढ़ा जाए, जैसे खेल जगत की खबरें हैं, अखबारों में विभिन्न प्रकार की कहानियां आती हैं, सबसे पहले अगर इससे शुरुआत की जाए और धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे जो हैं अभ्यास से सीखते हैं, धीरे धीरे अभ्यास उनको रुचिकर कहानियों अच्छी अच्छी पहेलियां अखबार में आती हैं उससे उनका शुरुआत की जाए तो एक समय के बाद बच्चे निश्चित रूप से अखबारों में रुचि लेने लगेंगे।
7: जी सुनील कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
10: देखिए क्या है कि सर जो न्यूज़पेपर है अखबार है, जैसे अमर उजाला हो गया, अमर उजाला में तो जो बच्चे हैं उनके मतलब का भी एक पेपर आता है यूथ करके
7: जी।
10: यूथ में उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जानकारी होती है, बच्चों को कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्स करने चाहिए उनकी भी जानकारियां होती हैं। और मेन बात है ये तो बहुत सारी अब स्टडी हो चुकी है कि मोबाइल से स्क्रीन से बच्चों को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, आई साइट का लॉस हो रहा है, उनकी एकाग्रता उनकी धैर्य क्षमता। अगर आपने देखा होगा पहले किसी चीज का आंसर खोजना होता जब इतना डिजिटल नहीं था
7: जी।
10: तो बच्चों में बुक्स पढ़ने की उसमें पेपर पलट पलट के देखते इस पेज पे नहीं इस पेज पे नहीं अगले पेज पे होगा ऐसे करके खोजते थे, तो बच्चे हार्ड वर्कर भी थे। और जैसे जैसे किताबों से बच्चे दूर होते जा रहे हैं तो उनकी जो क्षमता है जो लेबर वर्क है उनका कम होता जा रहा है। इस न्यूज पेपर से और पठन पाठन से न कि बच्चे हार्ड वर्कर बनेंगे बल्कि उनकी एकाग्रता भी ज्यादा बढ़ेगी।
7: जी सुनील जी बिल्कुल, बच्चों की एकाग्रता बढ़ेगी और जो आपने कहा कि उनमें धैर्यशीलता जो आजकल देखी जाती है कि बहुत कम हो गई है वो भी पुनः से विकसित हो सकेगी। अच्छा निधि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे इसमें शासनादेश में आजाद जी ने शुरू में बताया था कि विद्यार्थियों में पठन पाठन की संस्कृति को जोड़ना, ये भी कहीं ना कहीं शासनादेश के तहत जो इसका मेन मोटिव है रखा गया है, इसको आप किस प्रकार से देखती हैं कि पठन पाठन की संस्कृति को किस प्रकार से पुनः विकसित करेगा विद्यार्थी जीवन?
11: देखिए वैसे तो जब बच्चे स्कूलों में एडमिशन लेते हैं तो पढ़ने के लिए ही जाते हैं, लेकिन जब पढ़ाई से अलग की बात हम करने लगते हैं तो पठन पाठन इस तरह से शब्द बनता है अध्ययन मनन और चिंतन। तो इसका मुझे जो लगता है जो मेन उद्देश्य है वो है बच्चों को अध्ययन से मनन की ओर लेकर चलना, मन में सोचना चिंतन करना और जो सही है उसको ग्रहण करना। जैसे कि छोटे बच्चे हैं जैसे फर्स्ट टू एट और फिर उसके बाद सिक्स टू ट्वेल्थ उसके बाद डिग्री कॉलेज में पहुंचते हैं, तो जो कक्षा एक से पांच तक का बच्चा है वो केवल अभी बहुत जल्दी पढ़ता नहीं है, एक से तीन तक तो खेल खेल में पढ़ता है, वो टीचर्स को देखता है बच्चों को देखता है तब सीख रहा है। फिर फिफ्थ से एट तक के बच्चों को जब हम पढ़ाई करने लगते हैं तो वो चाहता है कि जो उसने पढ़ा है वो किसी के व्यवहार में भी दिखाई दे और फिर वो व्यवहार से सीखता है। लेकिन जब बात अखबार की आएगी तो अखबार में बच्चा उन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ता है जिनको शिक्षक ये कहते हैं देखो इसको इस तरह से सीखने से आपकी बुद्धि और बढ़ जाएगी, या फिर क्लास का कोई बच्चा अभी फर्स्ट आ जाए और उसका नाम भी अखबार में छप जाए तो वो कहेंगे देखो इसने इतना अच्छा काम किया है तो इसका नाम हो गया। इस तरह से बच्चों को कई बार ऐसे भी लगता है छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी पहचान बन जाती है, तो उसको लगता है कि मुझे भी इन चीजों में और खोजना चाहिए, क्या मेरे आसपास भी कुछ और नया हो रहा है या मैं कुछ नया कर सकता हूं। तो अपने वो प्रधानाध्यापक से कहेगा, घर के लोगों से कहेगा कि नाम को और आगे बढ़ाने के लिए आप अखबारों तक जाइए। इससे एक काम और बढ़ सकता है अंकित जी कि जब अगर बच्चा अखबार पढ़ने लगेगा तो एक बार घर घर में फिर से आने लगेंगे
7: जी।
11: और इस तरह से जो सरकार की मंशा है वो जो छिपी हुई है वो ये होगी कि अखबार को पढ़ने का चलन जो कम हो गया है वो घर तक पहुंचेगा और उसमें जो संपादकीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या चिंतन मनन की खबरें हैं वो बच्चों से बड़ों की ओर जाएंगी। अब
7: बिल्कुल निधि जी, आपके इससे मुझे याद आया कि हम मैं अपना ही बताता हूँ, जब हम संपादकीय पढ़ते थे
11: जी
7: तो उसमें हमें इतनी जानकारियां एक ही पेज पर एक ही लेख में मिल जाती थी कि हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती थी या अन्य पत्र पत्रिकाएं या अखबार खंगालने नहीं होते थे, हमारा बहुत समय बच जाता था और उसमें जो भी जानकारियां छपी होती थी अखबार में तो वो एक विश्वसनीय होती थी, हमें उस पर पूर्ण विश्वास होता
11: जी,
7: था
11: जी।
7: तो
11: और एक बात और अभी यहाँ सर ने कही थी कि जो कठिन शब्द होते हैं उनको बच्चे को बोर्ड पर लिखवाया जाएगा, तो अभी संपादकीय जब बच्चे पढ़ते हैं हिंदी मीडियम की हो या इंग्लिश मीडियम को न्यूज़पेपर के कुछ कठिन शब्दों को वो डिक्शनरी में भी खोजेंगे तो उनकी बौद्धिक क्षमता तो बढ़ेगी।
7: अच्छा एक जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है और टेक्नोलॉजी का दौर है, हमसे भी बहुत सी बार या हमारे आसपास के परिवेश में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, देखने में आती हैं कि फेक न्यूज का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
11: हाँ जी।
7: तो कहीं ना कहीं ये उस पर भी एक ब्रेक लगाएगा, तो जो हमारे साथ एजाज जी मौजूद है, मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा कि फेक न्यूज वाले प्रोपेगेंडा को रोकने में ये किस प्रकार से सार्थक हो सका है।
8: अंकित जी, ये

0: दी गई होगी तो उसमें फेक की तो संभावना बहुत कम होती है। अब हम यहाँ पर जिक्र ये भी करना चाहेंगे कि इसमें एक शासनादेश में एक प्रावधान है स्क्रैप बुक तैयार करने का। स्क्रैप बुक जो है वो एक ऐसी बच्चों में ज्ञान पैदा करेगी, स्क्रैप बुक का ये कि पर्यावरण है, खेल है और विभिन्न मुद्दों से संबंधित जो रोचक समाचार हैं वो बच्चे छांटेंगे, उसकी कटिंग छांटेंगे और खासतौर से जूनियर क्लासेस के बच्चों को ये दिया गया है तो वो एक बुक तैयार करेंगे उस कटिंग को लेकर। तो जो बच्चा निश्चित रूप से जब वो रोचक समाचार ढूंढेगा तो उसे पढ़ेगा, समाज से जुड़ेगा, उसके प्रति उसमें अध्ययन और मनन की सोच पैदा होगी। और कक्षा 9 से लेकर 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए खास तौर से यह है कि साप्ताहिक एक वो चाहे वो संपादकीय हो कुछ है उस पर वो मौलिक विचार भी रखेंगे। तो मौलिक विचार के प्रति बच्चों में एक छोटी उम्र में हम सोच पैदा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके कैरियर निखार में ये बहुत ही अच्छा पहलू होगा।
1: जी बिल्कुल अजाज जी, और जैसे कि फेक न्यूज वाली बात थी तो अखबार अपने आप में एक प्राचीन समय से ही विश्वसनीयता का प्रतीक रहा है, तो कहीं ना कहीं जो फिर एक न्यूज के प्रति हमारा रवैया था कि ये न्यूज फेक है या नहीं, तो इससे अखबारों के पठन पाठन में जब रुचि विद्यार्थियों की, उनके टीचर्स की, उनके अभिभावकों की दोबारा बढ़ेगी तो हम उस प्रचलन की ओर पहुंचेंगे कि हमें जो सर्कुलेशन हो रहा है इस न्यूज का सोशल मीडिया के माध्यम से उसको एक बार कहीं ना कहीं उसकी सत्यता को हम जांचेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हुए सुनील कुमार जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे जो अखबारों में विभिन्न पहेलियाँ या सुडोकू कहें तो उससे कहीं ना कहीं किस प्रकार से जो एक तार्किक या रीजनिंग कैपेबिलिटी कहें विद्यार्थियों की वो किस प्रकार से कैपेबल होगी, किस प्रकार से उसे बढ़ावा मिलेगा और क्या उसका उनके आगामी जीवन में उसको उनको फ़ायदा मिलेगा।
2: हमारे यहाँ जब 12वीं क्लास के बच्चे होते हैं 6 से 12 तक के बच्चे, और जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं वो कंपटीशन वाली दुनिया में अपने कदम रखने वाले होते हैं, 12वीं के बाद उनके कंपटीशन की दुनिया स्टार्ट हो जाती है, तो उनको इसके तार्किक की और लॉजिक ज्ञान की बहुत ज़रूरत होती है। जो न्यूज़पेपर में पहले आती हैं उसको बच्चे सॉल्व करते हैं, उनसे उनका बौद्धिक विकास होता है और रीजनिंग क्षमता बढ़ती है। निश्चित ही सर इससे जो कम्पिटेटिव वाले बच्चे हैं उनको फायदा होता है। और आप सर संपादकीय वाली बात कर रहे थे, संपादकीय वाली के लिए जो बच्चा 1 महीना 40 दिन अगर लगातार संपादकीय पढ़ ले तो मैं समझता हूँ कि उसको दुनिया में क्या चल रहा है, पूरे संसार में किस देश में क्या चल रहा है उसकी पूरा उसे ज्ञान हो जाता है। तो संपादकीय पढ़ने से ही बहुत फायदा होता है। और जो पहलिया और जो आपने बताई तार्किक वाली प्रश्न, वे सॉल्व करने से उसकी रीजनिंग क्षमता बढ़ती है सर, और बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं।
0: अंकित जी, प्रिंसिपल साहब की बात से हम एक आपको एक रोचक किस्सा सुनाना चाहेंगे, क्योंकि अखबार में जुड़ते हुए कई प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी मुलाकात होती है
1: जी।
0: तो उनका कहना यह होता है कि अखबारों ने ही हमें यहाँ तक पहुँचने में बहुत बड़ी मदद की है। अभी संपादकीय की बात आई, अखबारों में जो महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी आती है, तो कई प्रशासनिक अधिकारियों का जो उच्च पदों पर ये कहना है कि अखबारों ने उन्हें आगे बढ़ने में बहुत पहचान दी है, और अखबार अगर नहीं होता तो हम शायद यहाँ तक आने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते। तो बहुत बड़ा योगदान एक अखबार का होगा, जब अखबार पढ़े जाएंगे तो बच्चों में एक कैरियर निखार के लिए भी बहुत बड़ी एक उन्हें सोच पैदा होगी।
1: जी बिल्कुल, अखबार अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो संपादकीय के माध्यम से आपको आर्थिकी हो, खेल की गतिविधियां हो, राजनीति का हो, या भौगोलिक जो गतिविधियां हमारे परिवेश में विश्व में चलती हैं उनसे जुड़ी सभी सामग्री हमें एक ही लेख में विश्वसनीय रूप में प्राप्त होती हैं। अच्छा अंशुल जी, अगर हम बात करें कि जैसे अभी बात आई थी कि स्क्रैप बुक तैयार करने की, उसमें जो न्यूज़ होगी वो बच्चे उसको तैयार करेंगे, तो छोटे बच्चों को प्राइमरी लेवल पे या बेसिक कक्षा 1 से लेकर 8 तक वो प्री जो स्क्रैप बुक है वो उनको किस प्रकार से जुड़ाव करेगी उनका अखबार की तरफ या उनसे जुड़े हुए विषयों की तरफ प्राइमरी स्कूल के बच्चों में?
3: प्राइमरी स्कूल के बच्चों में स्क्रैप बुक का सबसे बड़ा महत्व ये है कि बच्चों को सबसे पहले उनकी रुचि के हिसाब से जो उन्हें सबसे अच्छी खबर लगती है उसको चुनने देना। ये प्रयोग मैंने अपने विद्यालय में करके देखा है, ज़्यादातर विद्यार्थियों ने पर्यावरण से जुड़े हुए विषयों को चुना और उसके साथ ही अपनी स्क्रैप बुक में उनको लिखा। तो स्क्रैप बुक बहुत ही महत्वपूर्ण और बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति को उजागर करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि बच्चे अपनी रुचि के हिसाब से अपने पसंदीदा समाचार को एक जगह संकलित कर सकते हैं और उससे अपना ही नहीं और अपने घर वालों को भी उससे वो जागरूक कर सकते हैं।
1: अच्छा निधि जी, अभी जो हमने बातचीत की, हमारी जो स्टूडेंट्स की तार्किक क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, या स्क्रीन टाइम को कम करने की बात है, फेक न्यूज की बात है, ये सब गवर्नमेंट के उस शासनादेश में कहीं ना कहीं लिखी हुई है, समाहित है।
4: हाँ जी।
1: लेकिन इन सब के अतिरिक्त भी और कोई ऐसी चीज जो विद्यार्थियों को फायदा

0: आप क्या समझती हैं?
1: मेरी समझ से तो यह है कि जब बच्चा अखबार पढ़ेगा तो उसमें न्यूज़ अलग-अलग आते हैं, तो बच्चों के विचार अलग-अलग होंगे। इससे शिक्षक ये कर सकते हैं कि उनमें ग्रुप डिस्कशन किया जाए, किसी एक विषय पर बच्चों के भिन्न-भिन्न विचार होते हैं, इससे उनके अंदर बोलने की शक्ति भी बढ़ेगी, तर्क शक्ति बढ़ेगी, साथ ही विवेक बुद्धि बढ़ जाएगी और पता चलेगा कि किस तरह की न्यूज़ को कैसे ग्रहण करना है। और अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को भी हम एक चाहते हैं कि अखबारों से जुड़ते रहें और कुछ नया सीखें, तो स्कूल में एक पत्रिका चलानी चाहिए जिसमें विभिन्न अखबारों से हमने क्या सीखा है और हमारे किस तरह से विचार बने हैं, मौलिक विचार बच्चे उस पत्रिका में लिखेंगे। उसका कोई भी सुंदर सा नाम दिया जा सकता है, आओ दुनिया देखें, आइए हम चलें, कुछ भी जो बच्चों के मन में विचार होगा। तो एक स्कूल की पत्रिका तैयार हो सकती है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, स्क्रैप बुक की बात हम कर ही चुके हैं जिससे बच्चों में रुझान होगा। और अखबार जब 10-10 मिनट कोई बच्चा पढ़ने लगेगा सर, तो उसके अध्ययन की क्षमता बढ़ेगी, और पहले भी कहा था जैसे मनन क्षमता बढ़ेगी, तो उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ेगा, बच्चे में बौद्धिक चिंतन बढ़ेगा। और शायद आने वाले समय में हम देखेंगे कि कोई बच्चा विवेकानंद की तरह निखर कर आएगा।
0: अच्छा, अभी इस शासनादेश के बाद अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने अटल आवासीय स्कूलों के लिए भी इसी प्रकार का एक आदेश जारी किया है, तो एजाजी उसके शासनादेश के बारे में आप थोड़ा विस्तार में अगर बता सकें कि क्या उसमें अलग से कुछ अलग नए प्रावधान किए गए हैं, या जो सेम ही प्रावधान प्राइमरी बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए किया गया वही है या उससे कुछ अलग है?
2: अंकित जी, जहाँ तक अटल आवासीय विद्यालय का प्रश्न है, निश्चित रूप से ये बिल्कुल शासनादेश के अनुकूल ही है। इसमें जो अटल आवासीय विद्यालय हैं वो उत्तर प्रदेश में इस वक्त लगभग 18 मंडल स्तर पर विद्यालय चल रहे हैं और आगे इसको डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे वहां पर रहते हैं, रहकर पढ़ते हैं, तो उनमें कक्षा 6 से 12 तक की जो शिक्षा दी जाती है तो उन बच्चों को भी अखबार पढ़ के सुनाया जाएगा और बिल्कुल जो शासनादेश है उसी के अनुकूल उन्हें भी ढाला जाएगा। रही बात अटल आवासीय विद्यालय की, तो ये वो विद्यालय, वो बच्चे हैं जिनके, समझिए श्रमिकों के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, निशुल्क शिक्षा दी जाती है, और वो बच्चे हैं जिनका कोरोना काल में माता पिता नहीं रहे या बिल्कुल लावारिस टाइप के बच्चे हो जाते हैं, तो उनको इन विद्यालयों में शिक्षा दी जा रही है। रही अखबार की एक विश्वसनीयता और पढ़ने की बात, तो आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जहाँ तक स्कूलों की प्रश्न है, 22,000 के आसपास माध्यमिक स्कूल हैं जो इंटर कॉलेज तक के हैं, उसमें प्राइवेट स्कूल भी हैं और भी हैं, इसमें CBSE भी हैं, और 3,000 से अधिक आवासीय जूनियर स्कूल इसमें शामिल हैं। तो ये जूनियर हाई स्कूल जो है, जब प्राइमरी की अभी बात आई थी, तो प्राइमरी के लिए इतनी अनिवार्यता नहीं है, अभी अनिवार्यता है जूनियर की, क्योंकि जूनियर जो स्कूल हैं उसमें प्राइमरी के बच्चे भी हैं, तो जब जूनियर बच्चों को जानकारी दी जाएगी तो प्राइमरी के बच्चे स्वतः ही उसका लाभ उठाएंगे।
0: और अब अंत में चलते चलते मैं एक बार इस परिचर्चा में जो निष्कर्ष निकला है कि जो शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में लागू किया है अखबार को पढ़ने का, क्या उसका निचोड़ होगा, क्या उसका उसके पीछे सरकार की मंशा है, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं उनमें पठन पाठन की जो संस्कृति है, रीडिंग कल्चर है, उसको विकसित करना, रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाना, कि जैसे कि जो स्क्रीन टाइम है वो कम हो सके
2: जी,
0: ठीक है, और जो पुस्तकों के साथ साथ अखबारों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना, ये कहीं ना कहीं उनकी वर्ड पावर, जो वोकैबुलरी है वो, उसकी स्ट्रेंथ को मजबूत करेगा, कहीं ना कहीं उनमें जो तार्किक सोचने की क्षमता है उसको विकसित करेगा, और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के इस हमारे टेक्नोलॉजी के दौर में, जो फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा बहुत सी बार चलता है, उसको भी काफ़ी हद तक कम करने में ये जो शासनादेश है उसमें मदद करेगा, और जो एक सामाजिकता या नैतिकता कहें, जिससे कि हम देखते हैं कि दूर होते जा रहे हैं, जैसे कि कहीं पे भी कोई घटना हो जाती है तो सबसे पहले लोग निकाल के अपने मोबाइल शुरू वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो भी एक जो नैतिकता लोगों में कम हो गई थी उसको ये दूर करेगा, बच्चों में वो भावना, सहायता की भावना को जोड़ेगा, और उनमें लेखन की जो संस्कृति हमारे समाज में पहले से रही है उसको विकसित करेगा। और मैं इसी आशय के साथ के सरकार के इस शासनादेश की जो भी मंशा है इसके पीछे, इस फैसले को लागू करने के पीछे, वो पूरी होगी। इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में आप लोग आकाशवाणी स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर से अपने सुनने वाले श्रोताओं को बता देता हूँ, हमारे साथ जुड़े थे एजाज अहमद जी, मीडिया के हमारे कर्मचारी, सुनील कुमार जी, GIC नजीबाबाद के प्रभारी प्रधानाध्यापक, अंशुल कुमार जी, PM श्री कंपोजिट स्कूल आलमसराय नजीबाबाद से, और विवेक यूनिवर्सिटी बिजनौर से डॉक्टर निधि भारद्वाज जी और मैं अंकित सैनी, इसी के साथ आप सबसे अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, विषय था स्कूलों में अखबार पढ़ने की अनिवार्यता। कार्यक्रम में प्रतिभाग किया एजाज अहमद, अंशुल सैनी, सुनील कुमार और डॉक्टर निधि भारद्वाज ने। संचालन किया अंकित सैनी ने। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, कल रात्रि 10 बजे हमारे केंद्र से प्रसारित होगी संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे लखनऊ केंद्र से हम रिले करेंगे राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: आकाशवाणी पौड़ी से प्रस्तुत है जनपद पौड़ी गढ़वाल में आयोजित विभिन्न खेल गतिविधियों पर आधारित विशेष कार्यक्रम खेल दर्पण। मानव जीवन में खेलों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ये शारीरिक और मानसिक विकास के मुख्य आधार हैं। खेलों से अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व करने की क्षमता जैसे जीवन कौशल विकसित होते हैं। यह तनाव कम करके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और जीवन को संतुलित रखते हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल में आयोजित होने वाले प्रमुख खेलों में से एक खेल है खेल महाकुंभ। युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक संस्कृति से प्ले ग्राउंड संस्कृति की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष खेल महाकुंभ का आयोजन युवा कल्याण विभाग द्वारा शिक्षा विभाग और खेल विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। पूर्व वर्षों के इतर इस वर्ष खेल महाकुंभ कुछ बदलावों के साथ आयोजित किया गया। खेल महाकुंभ के बारे में हमने बात की खेल महाकुंभ के नोडल अधिकारी श्री भगवान गुसाई से।
2: वित्तीय वर्ष 25-26 में खेल महाकुंभ का जो स्वरूप, उसमें शासन स्तर से बदलाव किए गए। जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में खेल महाकुंभ का स्वरूप था, सर्वप्रथम न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता, उसके पश्चात विकास खंड स्तरीय प्रतियोगिता, फिर उसके बाद जिला स्तरीय प्रतियोगिता और अंत में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। जिसके स्वरूप में बदलाव करते हुए सर्वप्रथम जो न्याय पंचायत की प्रतियोगिताएं होती थी उसको स्थानीय जनप्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता के नाम से जाना गया। उसके पश्चात विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी, फिर सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी और अंत में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी स्थानीय जनप्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता के दो कैटेगरी में आयोजित की गई, अंडर 14 बालक बालिका और अंडर 19 बालक बालिका, जिसमें चार प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, कबड्डी, एथलेटिक्स, खो खो और मुर्गा चपट। इसमें जिन भी प्रतिभागियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया उनको नगद पुरस्कार के रूप में 300, 200 और 150, साथ ही मेडल और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अगले स्तर पे जो प्रतियोगिताएं हुई, विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी, जिसमें विधानसभा स्तर पर प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 500, 400, 300 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से और साथ ही मेडल और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी में हमारी जो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की टीमों ने प्रतिभाग किया, उन्होंने कुल 93 मेडल प्राप्त किए, जिसमें 21 स्वर्ण, 32 रजत और 40 कांस्य पदक शामिल रहे।
1: खेल महाकुंभ के अंतर्गत न्याय पंचायत स्तर पर होने वाली स्थानीय जन प्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता के तहत न्याय पंचायत घंडियाल में हो रही खेलकूद प्रतियोगिता के नोडल श्री हनुमंत कुकृति से हमने बात की।
3: इस समय मैं हूं सीकू के ऐतिहासिक मैदान में और यहां पे न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं नोडल अधिकारी न्याय पंचायत घंडियाल श्री हनुमंत कुकृति जी हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी खेल विधाएं आज यहां पे न्याय पंचायत इस तरह खेलकूद प्रतियोगिता में आयोजित की जा रही हैं।
4: यहाँ पे बहुत सारी प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई, इसमें एथलेटिक्स हो गया, खो खो हो गया, मुर्गा झपट हो गए, जो हमारे पारंपरिक खेल है उसको विधा को भी काफी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और जो ये खेल है वाकई में ना कहीं जो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले हैं, उन ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले जिनको न तो कोई सहयोग मिल पाता है, गरीब बच्चे रहते हैं, तो ये खेल महाकुंभ वाकई न कहीं संजीवनी का काम करेगा उन छात्रों के लिए, उन परिवारों के लिए या उस छात्र को जिसको सुविधा नहीं मिल पा रही है। खेल महाकुंभ अपने आप में जैसे कि इसकी सार्थकता सिद्ध हो रही है कि वाकई में महाकुंभ है, क्योंकि ये केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे जितने भी ग्रामीण परिवेश हैं, चाहे वो पढ़ने वाले हैं या विद्यालय में आते हैं, उन सब के लिए वाकई में खुला एक मंच है। और इस प्रकार की प्रतियोगिताएं कहीं ना कहीं समाज के लिए और उस जो छात्र हैं और जो जिसने विद्यालय छोड़ दिया हो या त्याग कर दिया, उनके लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए ये बहुत बड़ा मंच महाकुंभ है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जीवन का एक अमूल्य मूल मंत्र है, तो उसको देखते हुए वाकई ना ये जो हमारे खेल विधाएं होती हैं, ये शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक रूप से कहीं ना कहीं सबलता और प्रबलता प्रदान करती हैं।
1: जनपद पौड़ी गढ़वाल की सभी न्याय पंचायत स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के उपरांत जनपद पौड़ी की 6 विधानसभा स्तर पर विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया। इसके बाद रांची स्टेडियम पौड़ी में सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन दिनांक 15 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 के मध्य किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रचना बुटोला ने किया। इस अवसर पर प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
5: हमारे युवा कल्याण के सभी सम्मानित अधिकारीगण, सभी मेरे शिक्षा विभाग के सभी सम्मानित शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जनपद से आए हुए, विभिन्न जनपदों से आए हुए बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आप सभी को आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी देती हूँ। देखिए बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप सब लोग यहाँ पर बहुत दूर से आए हुए हैं और अपने अपने लक्ष्य को पूरा करें। पहले जमाने में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, लेकिन आज जमाना बदल गया है और सभी लोगों के पेरेंट्सों की भी सोच बदल गई है। तो आज के जमाने में आप अपने बच्चे से सभी लोग यही कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे और भी प्रताप। इसलिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और हम सब देख रहे हैं कि आज हमारा देश खेल के क्षेत्र में ऊंचाइयां छू रहा है और आप सभी बच्चों को अनुशासन के साथ खेलना है। इसी के साथ मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।
1: सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के आयोजन समारोह में उपस्थित जिला युवा कल्याण अधिकारी श्री रविंद्र कुमार सिंह ने कहा,
6: सांसद चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो कि पौड़ी जनपद में आयोजित की जा रही है, इसमें 11 विधानसभा के प्रतिभागी भाग लेंगे। इसके अलावा कोटद्वार और अन्य जो 5 विधानसभा हैं, जिनमें नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ व रामनगर, इन सभी विधानसभाओं के जो विजयी प्रतिभागी हैं, उनके द्वारा यहाँ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ये प्रतियोगिता आज दिनांक 15 जनवरी से और 30 जनवरी के मध्य आयोजित की जाएगी। जो सांसद स्तरीय जो चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है, उसमें अपना वर्चस्व भाग ले और अपना सर्वोच्च और अपने इस संसदीय क्षेत्र का नाम जरूर रोशन करें।
1: विगत वर्ष से विलुप्त होते पारंपरिक खेल मुर्गा झपट और पिट्ठू को खेल महाकुंभ में शामिल कर उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। पारंपरिक खेल मुर्गा झपट के संबंध में हमने बात की जनपद पौड़ी गढ़वाल में पारंपरिक खेल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सतीश कंडारी जी से।
7: श्रोताओं, इस समय हम हैं रांची स्टेडियम पौड़ी में और यहाँ पे खेल महाकुंभ के अंतर्गत सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। इस खेल स्पर्धा में कुछ पारंपरिक खेल भी इस बार आयोजित किए जा रहे हैं और ये एक चर्चा का विषय बने हुए हैं रांची स्टेडियम पौड़ी में। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए हैं पारंपरिक खेलों के बारे में श्री सतीश कंडारी जी।
8: पारंपरिक खेल के अंतर्गत जो मुर्गा झपट प्रतियोगिता है, वह पिछले साल से उन शुरू की गई थी और इस बार भी उन्होंने कहीं ना कहीं जिन बच्चों ने पिछले बार प्रतिभाग न किया हो और अलग अलग जो भार वर्ग रखे हुए, तो उनमें इस साल फिर उनके द्वारा मौका दिया गया। और निश्चित तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि पारंपरिक खेल के अंतर्गत मुर्गा झपट में हमारे पौड़ी जनपद से जो 5 भार वर्ग हैं, चाहे वो मैं अंडर 14 की बात करूं, चाहे मैं अंडर 19 की बात करूं, दोनों में ही चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, दोनों ने ही विशेष उत्साह दिखाया और उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। तो और अगर मैं सर थोड़ा सा जो ये पारंपरिक खेल है और उसमें अगर मैं विशेष तौर पे मुर्गा झपट की बात करूं, जो हमारा जो एरिना होता है, इसका जो सर्कल बनाया जाता है, वह 2 मीटर का रेडियस का एक वृत्त बना हुआ होता है, जिसमें कि आपके और उसके साथ साथ एक एक मीटर चारों ओर से एक वर्गाकार टाइप का पूरा एक बॉक्स बना दिया जाता है और उसमें हमारे 5 वर्ग, जो क्योंकि मैं खेल महाकुंभ की बात कर रहा हूं, तो यह 5 भार वर्ग में रखा गया है, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, अंडर 14 या अंडर 19 में बात करता हूं। और अगर मैं नियम की बात करूं तो इसमें आपने देखा होगा सर कि जैसे पहले भी हो चुका है, तो इसमें अगर मैं अंडर 14 में बालक की बात करता हूं या किसी भी वर्ग की बात करता हूं, तो 2 बालकों के बीच में सेम भार वर्ग में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। और दोनों में अगर थोड़ा सा मैं नियम देखूं, तो नियम में अगर आप बात करूं तो जिस प्रकार से मुर्गा एक नाम दिया गया है पारंपरिक मुर्गा झपट, तो उसी प्रकार एक बालक के द्वारा एक हाथ से पांव को पकड़ा जाता है, आगे पंजे को पकड़ा जाता है और दूसरा हाथ अब वो स्ट्रॉन्ग हाथ कुछ भी हो सकता है उसका, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, तो अपनी क्षमता के अनुसार दूसरे हाथ से वो शोल्डर को पकड़ता है और इस प्रकार से हमारे रेफरी के द्वारा प्रतियोगिता शुरू की जाती है, बाउट शुरू की जाती है और एक मिनट बाउट का समय दिया जाता है इसमें। तो इसमें जैसे ही शुरू किया जाता है तो दोनों जो प्रतिभागी होते हैं वो प्रतिभाग करते हैं, लड़ते हैं और तो बच्चों के द्वारा शोल्डर से पुश किया जाता है। और अगर उसमें आप देखेंगे सर, अगर बच्चे का चाहे में शोल्डर से हाथ अगर नीचे खिसक जाए या पांव छूट जाए जिस हाथ से उसने पांव पकड़ा है, तो एक पॉइंट दिया जाता है और वहीं पे बाउट रोक दी जाती है। फिर रेफरी दोनों को फिर तुरंत ही, क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए तुरंत उनको फिर सेंटर लाइन पे खड़े करके फिर दोनों को फिर बाउट स्टार्ट की जाती है और इस प्रकार से एक पॉइंट दिया जाता है। और अगर मैं अधिकतम पॉइंटों की बात करता हूं तो अधिकतम 3 पॉइंट दिए जाते हैं। उसकी कंडीशन ये है कि जैसे ही रेफरी के द्वारा शुरू की जाती है और बच्चे जब शोल्डर से पुश करते हैं और पुश करते करते अगर कोई भी प्रतिभागी अगर अपने ओपोनेंट प्लेयर को जो आपका सर्कल बनाया है उस सर्कल से बाहर फेंक देता है, बाहर कर देता है, तो उसको रेफरी के द्वारा 3 पॉइंट दिए जाते हैं। और इसमें एक साइड हमारा ब्लू कॉर्नर होता है, जो हम प्लेयरों को जर्सी भी दे सकते हैं, जो बिप्स देते हैं हम उनको, तो एक साइड ब्लू कॉर्नर होता है, एक साइड रेड कॉर्नर होता है। तो ये हमारे पॉइंट का वो चलता है। तो 3 हमारे राउंड्स होते हैं एक एक मिनट के और उनमें फिर स्कोर दिए देखा जाता है कि सम्मानित रेफरी के द्वारा किसका स्कोर ज्यादा हुआ है। फिर वो दोनों को सेंटर में, जैसे ही बाउट खत्म हो जाती है, दोनों को सेंटर में खड़ा करके जिस प्रकार से आपने देखा होगा बॉक्सिंग में दोनों के एक एक करके अंक बोले जाते हैं, तो उसी प्रकार हमारे मुर्गा झपट में भी रेफरी बीच में रहता है, एक साइड दोनों साइड खिलाड़ी रहते हैं उसके और फिर नंबर बोले जाते हैं, जिसके अधिकतम अंक होते हैं वह विनर होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा मुर्गा झपट खेल चलता है।
9: तो आपने नियम कायदे विस्तृत रूप से हमें समझाए और इनके बारे में विस्तृत रूप से हमें बताया। अच्छा, जैसे कि पारंपरिक खेलों को फिर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एक तरह से मैं कहूं कि विलुप्त के कगार पे हमारे पारंपरिक खेल थे, तो खासकर मुर्गा झपट की अगर मैं बात करूं तो प्रतिभागियों में किस प्रकार उत्साह आप देख रहे हैं?
8: सर, अगर मैं प्रतिभागियों में उत्साह की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बच्चों का जो आज का जो टाइम है, आज के समय को, परिस्थिति को हम देखते हैं, तो इसमें बच्चे कहीं ना कहीं मोबाइल या अन्य जो हमारे गैजेट्स हैं उनके प्रति, उनके कारण बहुत ज्यादा रुझाव बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पारंपरिक खेलों के कारण, क्योंकि इन पारंपरिक खेलों को बच्चे नहीं, उनके माँ बाप या मैं एक सोसाइटी के जो हमारे पुराने जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उनके द्वारा इन खेलों को जाना जाता था। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने बच्चों को इन खेलों के प्रति उनमें उत्साह आए, क्योंकि जो और अन्य हमारे खेल हैं उन खेलों में थोड़ा सा माँ बाप या परिवार या समाज में, मैं बोलूं, सबको नियम कायदे की जानकारी नहीं होती, लेकिन मुर्गा झपट हो गए इस प्रकार के खेल में थोड़ा माँ बाप भी जानते हैं या समाज में कोई अन्य व्यक्ति भी जानता है कि किस प्रकार से इसको रूल या किस प्रकार से खेला जाता है, तो बच्चों को जा से। और दूसरा, अगर मैं दूसरा जो हमारे माँ बाप हैं, गार्जियन हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनको ये भी पता है कि मुर्गा झपट में कहीं ना कहीं जो हमारे शारीरिक पुष्टि होती है, जिसको अंग्रेजी में फिजिकल फिटनेस कहते हैं, तो अगर मैं उनके कुछ कंपोनेंट्स तत्वों की बात करूं, क्योंकि हर खेल में आप देखते हैं कहीं ना कहीं फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स देखे जाते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा जो 100 मीटर दौड़ होती है तो उसमें स्पीड को देखा जाता है। तो अगर मैं अपने पारंपरिक खेल में मुर्गा झपट में बात करूं तो आपने देखा होगा जब बच्चों के द्वारा पांव या शोल्डर पे आपका बैलेंस हाथों से पकड़ा जा रहा है, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे संतुलन का जो क्षमता है उनके अंदर उसको विकसित किया जा रहा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे जब आप वो बाउट कर रहे हैं तो बाउट करते समय उनकी जो कोऑर्डिनेटिव एक एबिलिटी होती है, कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि 2-3 कंपोनेंट्स को एक साथ करना पड़ता है। जैसे आपने देखा हो कि बच्चे को एकदम से फुर्ती से शरीर को थोड़ा सा, क्योंकि बाउट एक दूसरे से हो रही, तो फुर्ती से शरीर को कभी लेफ्ट या राइट या डोज करना पड़ता है। दूसरा, आप देखेंगे एकदम से तेजी से स्ट्रेंथ का प्रयोग करते हुए शोल्डर से पुश भी करना होता है। तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे इन शारीरिक पुष्टियों के जो हमारे तत्व हैं, इनके द्वारा भी बच्चों में उनको भी विकसित किया जा रहा है।
1: जनपद पौड़ी गढ़वाल में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी खेल के प्रति रुझान बढ़ रहा है। अगर मैं महिला क्रिकेट की बात करूं तो इस साल जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में महिला क्रिकेट टूर्नामेंटों का आयोजन किया गया। जनपद में महिलाओं की बढ़ रही क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी के बारे में हमने बात की अंडर 19 नेशनल क्रिकेट टीम में चयनित कुमारी सलोनी से।
10: मेरा नाम सलोनी बिष्ट है, मैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे गांव का नाम मरगांव है जो कि खिरसू ब्लॉक में आता है। मेरे क्रिकेट की स्टार्टिंग गांव से हुई है। गांव में नरेंद्र भैया थे, उन्होंने मेरे को पूरा क्रिकेट खेलना सिखाया है। उस टाइम पे मैं अकेली लड़की थी जो मतलब भैया लोगों के साथ खेलती थी, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों के लिए कोई टूर्नामेंट नहीं होते थे जिससे कि उन्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट आए और क्रिकेट का नॉलेज हो। तो भैया लोग के साथ ही मैंने सब कुछ सीखा है। इसमें मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है, खास करके मेरी मम्मी जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। एक दिन स्कूल्स गेम में क्रिकेट के ट्रायल्स आए जिसमें पहले डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्शन हुआ, फिर स्टेट के लिए, फिर नेशनल के लिए। गांव की लड़की के लिए नेशनल खेलना बहुत बड़ी बात है, खास करके तब जब उनके पास सुविधाएं ना हो, खेलने के लिए ग्राउंड ना हो। मैंने स्कूल्स गेम में क्रिकेट में 2 बार नेशनल खेला है। फिर उसके बाद गांव में भी काफ़ी टूर्नामेंट होने लगे लड़कियों के। अभी पाबो में हुआ था सडनली, तो वहाँ 50,000 का टूर्नामेंट था पहले, जिसमें हम फाइनल में रनर अप रहे। तो जैसे वो टूर्नामेंट लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा रहा है जिससे कि उन्हें क्रिकेट का नॉलेज हो, और उससे काफ़ी लड़कियाँ प्रैक्टिस करने लगी हैं गाँव में, जिससे कि उनका सिलेक्शन हो सकता है आगे, कि और ज़्यादा लड़कियां गांव से निकल सकती हैं क्रिकेट में। तो ऐसे टूर्नामेंट हर बार होने चाहिए जिससे कि लड़कियों को खेल के प्रति थोड़ी रुचि आए और वो खेले, उन्हें पता चले कि कौन से खेल कैसे खेले जाते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और गांव में बहुत सारे जो करा सकते हैं लड़कियों के टूर्नामेंट, जो बॉयज के कराते हैं वो गर्ल्स के भी कराए ताकि गर्ल्स भी खेल पाए।
1: शहरी क्षेत्रों के साथ साथ जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न महिला क्रिकेट टूर्नामेंटों का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में हमने बात की क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक श्री राजपाल सिंह रावत जी से।
11: नमस्कार। आज के समय में जहां महिलाएं भी इस खेल के प्रति जागरूक हुई हैं, और देखा होगा कि पौड़ी जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में क्रिकेट की प्रतियोगिता होती है और उसमें महिलाएं प्रतिभाग करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हालांकि संसाधनों की काफी कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जोश और जुनून है इस खेल के प्रति महिलाओं को आकर्षित करता है। जहां हमने देखा कि पौड़ी जिले के चौबटाखाल विधानसभा के 3 या 4 ब्लॉकों में महिलाओं के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होता है। जैसे कि इस वर्ष जनवरी माह में चौबटाखाल में, उसके बाद एक्वेश्वर विकास खंड के धरासू में, उसके बाद विकास खंड पोखड़ा के गवाड़ी में, और जून के माह में अभी अभी हाल में विकास खंड पोखड़ा के बीनागार द्वारा महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था। उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संसाधनों की कमी के कारण इसे महिलाएं जूझ रही हैं, लेकिन फिर भी जो जोश और जुनून उनका इस खेल के प्रति है, मैं तो चाहूंगा कि टेनिस बॉल यानी कि डे नाइट गेम से हर जगह महिलाओं के लिए इस खेल को रखा गया है। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। कई खिलाड़ी हमने ऐसे देखे हैं जो कि प्रॉपर बॉलिंग करते हैं, उनका जो एक्शन होता है वो प्रॉपर होता है, और बल्लेबाजी भी कही महिलाएं बहुत अच्छी करती हैं। जरूरत है एक प्लेटफॉर्म की कि पहाड़ी क्षेत्र में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उसमें क्रिकेट के प्रति जो लगाव है महिलाओं का, संसाधनों के माध्यम से अगर अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, अच्छी प्रतियोगिताएं होती है, और महिलाओं का और क्रिकेट के प्रति लगाव, ये निश्चित रूप से एक आने वाले समय में एक अच्छा आयाम स्थापित कर सकता है। जहां महिलाएं हमारे कृषि क्षेत्र में या यानी कि एक गृह के रूप में रह जाती थी, आज वे मैदान पे आती हैं, अपना खेल के प्रति अपना जौहर दिखाती हैं। जहां हाथ में दराती कुदाल को छोड़कर जब महिलाएं मैदान पर आती है और अपने गेंद और बल्ले से अपना जौहर दिखाती है, तो देखने को मिलता है कि हमारे इस पहाड़ी अंचल में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है।
1: जीवन में खेलों का महत्व और खेल विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना और माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के बारे में हमने बात की सहायक क्रीड़ा समन्वयक विकास खंड कोट श्री ज्योत सिंह राणा से।
12: खेलों के संबंध में जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा खेलों का शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव मुक्त जीवन के साथ गहरा संबंध रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में हमारे छात्र छात्राएं और हमारे युवा आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन जब हम मानसिक स्वास्थ्य और तनाव मुक्त जीवन की बात करते हैं तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि जो तनाव है हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर में जो अंतरस्रावी ग्रंथियां होती है उन्हीं में से एक ग्रंथि है एड्रेनल नाम की, जो कि कोर्टिसोल नामक एक स्ट्रेस हार्मोन होता है उसको रिलीज करती है, उससे हमारे जीवन में तनाव बढ़ता है। तो खेलों के माध्यम से क्या होता है, जब हम खेल गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं तो हमारे जो कोर्टिसोल नामक ये जो स्ट्रेस हार्मोन है वो डिस्ट्रॉयड होके, या आप यूं कहिए कि उसका स्तर कम होके, हमारे शरीर में जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो जैसे कि डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, एंड्रोफिन हो गया, इन हार्मोन्सों का स्तर हम खेलों के माध्यम से अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहता है। तो सरकार के द्वारा समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के खेल कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिवर्ष करवाया जाता है, जिससे कि समाज में निश्चित रूप से एक जो खेलों का स्तर है वो बेहतर होता जा रहा है। इसी के अंतर्गत जो माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना की अगर मैं बात करूं, तो ये 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ये जो 6 आयु श्रेणियां जो विभाजित की जाती है उसमें प्रत्येक, जो अगर ग्रामीण खेलों की बात करूं तो नए पंचायत स्तर पर प्रत्येक आयु वर्ग में, जैसे 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 और 13 से 14, जो ये 6 आयु वर्गों में इसको विभाजित किया गया है, इसके अंतर्गत प्रत्येक नए पंचायत से 2 बालक 2 बालिकाओं का चयन विकास खंड स्तर के लिए किया जाता है। और अगर मैं नगर पंचायत स्तर की बात करूं तो नगर पंचायत स्तर पर 3 बालक और 3 बालिकाओं का चयन विकास खंड स्तर के लिए किया जाता है। और जो हमारे नगर निगम स्तर के जो क्षेत्र हैं, तो नगर निगम से 6 बालक और 6 बालिकाओं का प्रत्येक आयु वर्ग में चयन कर विकास खंड

0: स्तर पर किया जाता है। विकासखंड स्तर पर जैसे कि आप आज विकासखंड कोर्ट के प्रांगण से देख सकते हैं कि हमारी 7 न्याय पंचायत और हमारे नगर पंचायत पौड़ी, नगर निगम श्रीनगर आदि के बच्चे भी यहाँ पर विकासखंड स्तर हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ जो प्रतिभागी प्रतिभा करेंगे उसके पश्चात प्रत्येक आयु वर्ग से 6 बालक और 6 बालिकाओं का चयन जनपद स्तर के लिए किया जाएगा और जब जनपद स्तर पर इन बालक बालिकाओं का जो चयन होगा तो प्रत्येक जनपद के प्रत्येक आयु वर्ग के 25 बालक और 25 बालिकाओं को जो हमारी सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है 1500 रुपए प्रतिमाह जो छात्रवृत्ति है वो प्रदान की जाएगी, जो निश्चित तौर पर हमारे छात्र छात्राओं के लिए भविष्य में राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रदेश और देश का नाम रोशन करने के लिए उसे उन लोगों को अवश्यंभावी रूप से प्रोत्साहित करेगी। साथ ही साथ मैं आपका ध्यान इस ओर पे आकर्षित करना चाहूंगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना है इसके अंतर्गत एक फिटनेस टेस्ट का आयोजन किया जाता है जिसके अंतर्गत प्रतिभागियों की संपूर्ण शारीरिक क्षमता का एक सटीक मापन 6 इवेंटों के द्वारा किया जाता है। ये जो हमारे 6 इवेंट होते हैं उसमें स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, मेडिसिन बॉल थ्रो, फॉरवर्ड बैंड रीच, 30 मीटर फ्लाइंग रेस, 6x10 मीटर शटल रन और 600 मीटर रनिंग, ये जो प्रत्येक इवेंट होते हैं ये 10-10 नंबर का इनका जो क्राइटेरिया है और ये टोटल 60 नंबर का फिटनेस बैटरी टेस्ट है और ये 60 नंबर मार्क्स के आधार पर ही हम प्रतिभावान प्रतिभागियों का चयन कर पाते हैं और उसके बाद इनको छात्रवृत्ति हेतु इनके चयन करने में हमें आसानी रहती है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार जो हम खेलों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का जो आयोजन हमारे ग्रामीण एवं शहरी बालक बालिकाओं के लिए जो किया जा रहा है निश्चित रूप से इनके जो भावी जो परिणाम होंगे निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के बच्चे एक तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य जो बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही लेकिन साथ ही साथ उनका आने वाला जो भविष्य होगा वो सुखमय होगा और वो एक करियर के रूप में भी इसको अपना सकेंगे और मुझे आशा ही नहीं है अपितु पूर्ण विश्वास भी है कि सरकार के द्वारा जो ये कार्यक्रम हमारे छात्र छात्राओं के लिए जो समय समय पर निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं वो भविष्य में भी इसी प्रकार से आयोजित किए जाएंगे।
1: जनपद पौड़ी गढ़वाल का फुटबॉल के क्षेत्र में अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। हाल ही में मंडल मुख्यालय पौड़ी में आयोजित जय कंडोलिया महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के बारे में हमने बात की स्थानीय फुटबॉल कोच श्री रविंद्र रावत जी से।
2: श्रोताओं इस समय हम हैं पौड़ी के ऐतिहासिक कंडोलिया खेल मैदान में और अभी यहां पर जय कंडोलिया महोत्सव के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की जो फुटबॉल प्रतियोगिता थी उसका फाइनल हुआ है। खचाखच भरे इस स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखने का अलग ही मजा है और इस टूर्नामेंट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री रवि रावत जो कि जय कंडोलिया महोत्सव के अंतर्गत इस फुटबॉल प्रतियोगिता में संयोजक के रूप में रहे हैं। तो रावत जी स्वागत है आपका इस बातचीत में। रावत जी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस राष्ट्रीय स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में कितनी टीमों ने प्रतिभाग किया?
3: इसमें 11 तो जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हुई इसमें 11 तो जो थी वो इंडिया से टीमें थी और एक टीम नेपाल से थी तो 12।
2: मैं अभी देख पा रहा था कि फुटबॉल मैच देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पे उपस्थित हैं और खचाखच ये स्टेडियम भरा हुआ है। पौड़ी और फुटबॉल का एक अनोखा ही रिश्ता है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
3: पौड़ी में तो फुटबॉल का इतिहास ही बड़ा अच्छा रहा है और जहां बात आती है राष्ट्रीय स्तर फुटबॉल प्रतियोगिता की तो उसमें तो लोग सारे दर्शक पहुंचते हैं फुटबॉल प्रतियोगिता देखने के लिए।
2: यहां पे एक कोच के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और मैं देखता हूं कि जो लड़के हैं उनके साथ साथ अब

0: जो बालिकाएं हैं वो भी फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रही हैं, तो बालिकाओं का रुझान फुटबॉल की तरफ बढ़ रहा है।
1: जी लड़कियां, पहले भी बहुत सारी लड़कियां आई थी हमारे पास, और उनमें से बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो कोचिंग डिप्लोमा उन्होंने किया है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करके वो उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हैं, और अभी भी बहुत सारी बच्चे जो है छोटे बच्चियां हमारे पास आती हैं, और लड़कियों का तो बहुत अच्छा फ्यूचर है फुटबॉल में, अगर वो आए और मेहनत करें तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर है।
2: जनपद पौड़ी गढ़वाल में खिलाड़ियों का भविष्य स्वर्णिम है। ग्रामीण प्रतिभाओं को उचित मंच मिल रहा है और हम कह सकते हैं कि आने वाला समय खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम साबित होगा। ये था खेल दर्पण पर आकाशवाणी पौड़ी का डिस्पैच। संकलन, वाचन, आलेख अशोक सिंह, कार्यक्रम प्रस्तुति अशोक कुमार की।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पौड़ी की प्रस्तुति थी।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को फैजुर रहमान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमें आपके व्हाट्सएप संदेशों का इंतज़ार रहेगा और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है अजनबी। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, आरडी बर्मन का संगीत है और आनंद बख्शी के बोल हैं। श्रोताओं, आपको हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है। हमारा नंबर है 9457078288। कार्यक्रम के इस पहले गीत के लिए हमें फरमाइशी मैसेज आने शुरू हो गए हैं और सबसे पहला मैसेज आया है मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर का। आप हमें मैसेज भेज रहे हैं मोहल्ला हलवाई यान शेरकोट, ज़िला बिजनौर से। ये दूसरा मैसेज आया है हमारे पास पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से। भेजने वाले हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। एक और मैसेज हमारे पास आ पहुंचा है, ये हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। गांव फ्रांसी ज़िला हिसार से मैसेज भेज रहे हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लोबना अंसारी और आलिया अंसारी। एक और मैसेज हम तक पहुंचा है, भेजने वाले हैं मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सोनवी देशमुख और कुमारी हर्षिता देशमुख। गंज डुंडवारा से ही एक और मैसेज हमारे पास हैं, लिखने वाले हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, ज़ाहिरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी और शमसुल कमर राही, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब और पलक लुबना और यश मंसूरी ने हमें मैसेज भेजा है। ये मैसेज हमारे पास आ पहुंचा है मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड

मंगेशापुर से। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर फिल्म अजनबी का ये गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, आर डी बर्मन का संगीत है, गीतकार हैं आनंद बख्शी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म अजनबी का ये गीत। कार्यक्रम का ये अगला गीत हमने लिया है फिल्म नगीना से। मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और गीतकार हैं आनंद बख्शी। इस गीत को सुनना चाहते हैं अस्तुपुरा ज़िला मऊ से मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी और बहादुरगंज गाज़ीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। एक और व्हाट्सएप मैसेज हम तक आ पहुंचा है, बक्सेना दातागंज बदायूं से भेजने वाले हैं विमल ठाकुर, सरिता ठाकुर, शुभ, लव, गुनगुन, अमर सिंह, नीलू, अमन, रिया, सैजल, सूर्य, सोना, रीना और नीरज। एक और मैसेज है, एम असलम सैफ़ी, ज़ैबुन्निशा बेगम, सद्दाम सैफ़ी, सोनी सैफ़ी और ज़ाहिद सैफ़ी और आबाद ख़ान का दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से। आदर्श नगर मलोड पंजाब से हमारे साथ जुड़े व्हाट्सएप माध्यम से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा और निवान शर्मा। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, महराज अंसारी और बाबू अंसारी। ये मैसेज है पाकिज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से, भेजने वाले हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री और रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोंगावा से हाजी इसहाक लोमानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अय्यूब शेरी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से व्हाट्सएप माध्यम से जुड़े हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। और ये मैसेज आ पहुंचा है ग्राम झुजैला थाना शिवाला कला बिजनौर से, राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयशा, साइना महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर का। आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर फिल्म नगीना का ये गीत। मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, गीत रचना है आनंद बख्शी की।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म नगीना का ये गीत। मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और गीत रचना थी आनंद बख्शी ही। कार्यक्रम का ये अगला गीत हमने लिया है फिल्म महबूब की मेहंदी से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी के बोल। इस गीत को सुनना चाहते हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। आपने हमें ये मैसेज भेजा है हरियाणा झज्जर से। राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आशना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हमें मैसेज भेज रहे हैं। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, आपने हमें मैसेज भेजा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। आप हमारे साथ जुड़े। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे। एक और मैसेज हमारे पास आया है आश मोहम्मद, शारिक मलिक, जीशान सलमानी, शानू मलिक, आसिफ मलिक और दानिश चौधरी का। आपने हमें मैसेज भेजा है धनौरा अमरोहा रोड ग्राम कुआखेड़ा से। सरायमीर स्ट्रीट नगीना से रईस अहमद राही, रविश अहमद राही, रोयेश अहमद राही, रिशान अहमद राही, रोशेद अहमद राही, रुशमान अहमद राही और समस्त राही परिवार इस गीत को सुनना चाहता है। ग्राम गदरौना से मदनगिरी, बिमलागिरी, बलरामगिरी, मधुगिरी, सोनियागिरी, गोविंदगिरी और सिमरनगिरी, वंशिकागिरी, रमनगिरी और दिव्यागिरी हमारे साथ व्हाट्सएप में

और श्रोताओं, आइए अब रुख करते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर। और ये गीत है, फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, शंकर जयकिशन का संगीत है और हसरत जयपुरी के बोल हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूख अली ख़ान, फैज़ी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा, बुलंदशहर से एम एस अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार। गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोट और तमन्ना कांगड़ा ने हमें मैसेज भेजा है। गांव खरकेड़ा चौबीसी से आपने हमें मैसेज भेजा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गांव उगाला, ज़िला अंबाला, हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्य। कार्यक्रम में एक और हमारे साथी जुड़े हैं, आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात, अदीब और कादिर चौधरी। आपने हमें ये मैसेज भेजा है शाही मार्केट स्योहरा ज़िला बिजनौर से। गुलाम रोड, हरगोविंद नगर,

नवशहर पंजाब से सुरिंदर संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू और प्रतीक्षा संधू ने हमें ये मैसेज भेजा है। राजेश वर्मा, वंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा, लाल कुर्ती, रुड़की कैंट से हमें मैसेज भेज रहे हैं। आबाद खान, नबील खान, आरिफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली गंज परीमहल काशगंज से और गंज डुंडवारा से हैं। इरफान कुरैशी, शमशुल कमर राही, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से ज़ुबैर अली खान, सबीहा ज़ुबैर, अंजुम खान हमारे साथ जुड़े हैं, नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवैद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशव अब्बासी और रशीद वारसी हमारे साथ जुड़े हैं मारहरा दरवाज़ा एटा से, और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुड़े हैं ज़ुबैर अली खान और सबीहा अंजुम खान। आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर ये अंतिम गीत। फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी के बोल।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश संपन्न करने के फैज़ुर रहमान को दीजिए इजाज़त। श्रोताओं, खुश रहिए, आबाद रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8% जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात्रि के 11:10 हुए हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। प्रातःकालीन सभा में कल सुबह 5:55 पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।